0: शक्ति।
1: श्रोताओं, भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हम आ गए हैं। सुमिता की ओर से सादर प्रणाम स्वीकार करें। आज है मंगलवार 26 मई। आशा करते हैं मंगलवार का दिन बहुत मंगलमय व्यतीत हो रहा होगा और ईश्वर की कृपा तो हर कोई प्राप्त करना चाहता है। तो चलिए इस भक्ति में शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत हम भी ईश्वर की शरण में जाते हैं अपनी प्रार्थनाओं को लेकर, मन में यही कामना लिए कि ईश्वर जो है हम सबका कल्याण सदैव करेंगे।

जी हाँ, कहते हैं ईश्वर तो आते ही है, लेकिन कभी कभार हम ही ईश्वर को पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन ईश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, जब किसी चीज़ की सहायता मांगते हैं, तो ईश्वर अपनी भक्तों की सहायता करने के लिए किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं। बस हमें उन्हें पहचानने की आवश्यकता होती है।

0: जी हाँ, ईश्वर जो है सदैव सबका कल्याण करते हैं, ईश्वर जो है सदैव सबका भला चाहते हैं, ईश्वर जो है सदैव हमारी भलाई के लिए कार्य करते हैं। बस हमें ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए, हमारे मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं अच्छाई के लिए कर रहे हैं, सच्चाई से कर रहे हैं, तभी जाकर जो है जीवन में हमारे मार्ग खुलते हैं, तभी जाकर जो है हम जो है मनुष्य जीवन को अच्छे से व्यतीत कर पाते हैं। क्योंकि ये जीवन हमें मिला है अच्छे कर्मों के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, अच्छी वाणी के लिए, अच्छे आचरण के लिए। और जब हम इन सभी चीज़ों का पालन करते हैं जीवन में, तो जीवन में बस कल्याण ही होता है और सबका शुभ ही होता है।
1: RM3 Radio.

चलिए श्रोताओं, भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम से आप जुड़े हुए हैं। अभी आप हनुमान चालीसा सुन रहे थे और भगवान हनुमान जी की कृपा तो भगवान राम से प्रार्थना करते हुए ही मिल जाती है। कहते हैं ना कि जहाँ पर भगवान राम का नाम लिया जाता है वहाँ पर हनुमान जी भी किसी न किसी रूप में उपस्थित हो जाते हैं। तो भगवान राम की पूजा से, उनकी प्रार्थना से हमें भगवान राम का तो आशीर्वाद मिलता ही है, साथ ही हनुमान जी की भी कृपा मिलती है। तो चलिए इसी के साथ इस अगले भक्ति गीत की ओर हम बढ़ते हैं। जी हाँ, इस अगले भक्ति गीत की ओर हम बढ़ते हैं और इस अगले भक्ति गीत के साथ जो है हमारा भक्ति में शक्ति कार्यक्रम भी समाप्त हो जाएगा। ईश्वर की कृपा आप पर सदा रहे ऐसी कामना हम करते हैं। और ईश्वर जो है अपने भक्तों को जो है कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं, ईश्वर जो है अपने भक्तों का साथ सदैव देते हैं। तो इसलिए हमें जो है ईश्वर पर सदैव ये जो विश्वास है इसे बनाए रखना चाहिए। जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना आए, में डटकर उनका सामना करना चाहिए और मन में यही विश्वास रखना चाहिए कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। और जब मन में ऐसी धारणाएं होती है ना तो जीवन में कभी भी कुछ भी गलत नहीं होता है, जीवन में कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होता है।

0: शक्ति।
1: और श्रोताओं, जैसे कि हमने कहा, इसी के साथ भक्ति में शक्ति यह कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा और 11:30 बजे जो है आप चाइनीज भाषा में कार्यक्रम सुन पाएंगे, जिनकी प्रस्तुति में हमारी आपकी भेंट जल्द होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को। ऐसे ही जो है रेडियो मनोरंजन पर आप हमारा साथ देते रहें और ईश्वर की अपार

0: कृपा जो है आप पर, आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे।
1: RM3 Radio.

0: 12 बज रहे हैं, सुनते हैं समाचार आस्था के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार, 12 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। आज राज्यसभा में इसी समय विपक्ष नेता जूली रुंगा का प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन बैंक ऑफ मॉरिशस द्वारा की रेपो रेट में की गई बढ़ोतरी पर आधारित है। 20 मई को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को 4.50% से बढ़ाकर 4.75% कर दिया था। वे प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि इस फैसले का असर परिवारों और अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टरों पर किस प्रकार पड़ रहा है। राज्यसभा में दूसरी पढ़त के दौरान प्रधानमंत्री द कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल पेश करेंगे। ये विधेयक संविधान की समीक्षा के लिए एक आयोग के गठन पर आधारित रहेगा। इस राज्यसभा की बैठक में ही आज ही कई अहम संसदीय प्रश्नों को लेकर सरकार से जवाब भी मांगे जाएंगे। सार्वजनिक कर्ज, सिल्वर बैंक प्रकरण, गंगा तालाब की पवित्रता, पुलिस जांच और कानून व्यवस्था से जुड़े सवाल सदन में उठाए जाने वाले हैं। इसके अलावा एमओएसएस की वित्तीय स्थिति, सेफ सिटी कैमरा, मेट्रो एक्सप्रेस विस्तार, सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर भी विभिन्न मंत्रियों से जवाब मांगे जाएंगे। वहीं शिक्षा, कृषि, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण और खेल क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दे भी आज की बैठक में चर्चा का केंद्र रहेंगे।

इस्लामी कैलेंडर के अनुसार आज यौमे अरफात का पाक दिन मनाया जा रहा है। हज के दौरान इस दिन को सबसे अहम माना जाता है। आज लाखों हाजी अरफात के मैदान में पहुंच रहे हैं, जहां वे इबादत कर रहे हैं और अल्लाह से रहमत, बरकत और माफ़ी की दुआ मांगेंगे। मान्यता है कि आज के दिन इसी स्थान पर हज़रत मोहम्मद साहब ने अपनी उम्मत को आखिरी पैगाम दिया था। भारत के कई

0: प्रदेश मध्य प्रदेश ओडिशा तेलंगाना और पंजाब समेत कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। कश्मीर स्ट्रीट लिस्पेरोंस ट्रिब्यूशे में अस्सी साल की डीएसओल की श्रीमती दिव्यंती जीबन पैदाइश नाम सीसाहा, उनकी अर्थी आज सुपहर के 3 बजे उन्हीं के मकान लिस्पेरोंस ट्रिब्यूशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पितों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: सुहाना सफर।
1: नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ पूनम, और इस समय अगर आप मेरे साथ हैं तो बस इतना समझ लीजिए अगले कुछ घंटे साथ गुजरने वाले हैं बहुत ही प्यारे से अच्छे गानों के साथ आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सुहाना सफ़र। और इस समय हो चुका है टाइम 12:08, मंगलवार का दिन और 26 मई का प्यारा सा दिन। अगर आपको भी कोई मैसेज करना, अपने फेवरेट सॉन्ग को सुनना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 5250600 पर, और अगर कॉल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं 4028070 पर। तब तक सुनते हैं आपके प्यारे प्यारे से सुहाना सफर के ये गाने।
2: RM3 रेडियो।

0: सुहाना सफर 12:20 हो चुके हैं और आप जुड़े हुए हैं अभी के प्रोग्राम सुहाना सफर के साथ। चलिए भाई, ये जो समय है ना, ये है सिर्फ थोड़ा सा रेस्ट करने का, क्योंकि सुबह से आप लोगों ने बहुत सारे घर के काम काज किए होंगे, पर आप थोड़ा टाइम आप अपने लिए निकाल रहे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, खाना खा रहे हैं या थोड़ा सा ड्राइव कर रहे हैं, तो बस इंजॉय कीजिए आपके गाने। तो चलते हैं 2-3 छोटे छोटे प्यारे से मैसेजेस की तरफ कि कौन किसके लिए क्या क्या मैसेजेस भेज रहा है। तो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं नंदलाल जी, जो कि एक प्यारा सा गाना सुनना चाहते हैं वाकफा से, तो हम बिल्कुल आपके लिए चलाएंगे। और सभी देश विदेश में जो लोग जुड़े हुए हैं इस समय, उन सब के लिए एक प्यारा सा गाना सुनना चाहते हैं। अमित जी जुड़े हुए हैं वाकफा से, उसके साथ ही हमारे साथ इंडिया से जुड़े हुए हैं कमलेश रानी, हिना जी, अर्जुन, राहुल और पूरी ढले फैमिली ये प्रोग्राम को सुन रहे हैं। साथ में ही ललित जी जुड़े हुए हैं यूएसए से, राधा जी जुड़ी हुई हैं ग्लेन पार्क से, हसमुख जी जुड़े हुए हैं ग्लेन पार्क से, और उसके साथ में बीना जी हैं और कथाबोन से, वो भी सभी लिसनर्स के लिए एक गाना सुनाना चाहती हैं और कह रही हैं कि बस सब अपना अपना ख्याल रखिए, बस इंजॉय कीजिए गाने और ये पल है आप सबका। तो सच बात है, ये अपने पलों को इंजॉय कीजिए, गाना आप सबके नाम मुकेश की आवाज़ में।
1: RM3 Radio.

0: सुहाना सफर।
1: दोस्तों कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सीधे दिल पर जाके लगते हैं, पुराने गाने होते हैं, कई बार सुने होते हैं, मिलियन टाइम सुने होते हैं, पर वो गाने जब बजते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे अभी तो एकदम अभी से पहली बार सुन रहे हैं। तो ये गाने जो होते हैं इनके अंदर बहुत ही प्यार और मोहब्बत से भरी हुई जो धुनें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए भैया दो तीन प्यारे से मैसेजेस ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय अहमद जी, जो कि अफेस के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहते हैं। उसके साथ में ही बीना जी भी है हमारे साथ, चेतना जी भी, गीता जी भी जुड़ी हुई हैं और एक प्यारा सा गाना चेतना मूवी से सुनना चाहते हैं। और बस इतना कहना चाहते हैं कि सब जो भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं ना, इन्जॉय कीजिए, क्योंकि आप लोग सुबह से लेके पूरे हफ्ते बहुत टायर्ड होते हैं और जब सुहाना सफ़र चलता है आपके पुराने गानों

0: जिसका आपको क्रेज है, जिसका आपको लगता है कि काश ये वाले गाने बज जाएं, तो हम आपके लिए गाने चला रहे हैं। एंजॉय कीजिए अपने गाने और ये सबसे स्पेशल जो गाना है बीना जी आपके लिए।
1: RM3 Radio.

0: सुहाना सफर।
1: 12:45 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ यानी कि पूनम के साथ आपके ही प्रोग्राम सुहाना सफ़र में। तो कहते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ठंडी ठंडी पानी पीते हैं या आइसक्रीम खाते हैं उनका गला ख़राब हो जाता है। तो आजकल थोड़ा सा मौसम मॉरिशस में थोड़ा सा ऐसा फ्लू का हो रहा है, तो प्लीज़ अगर आप ले सकें तो गर्म पानी ज़्यादा लीजिए, हनी डालिए, जिंजर टी बनाइए। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना हेल्थ के लिए तो अच्छी होती ही हैं पर आपके गले के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ में अगर आपको लगता है कि फीवर है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को एक बार दिखाना चाहिए। उस चीज़ों को ज़्यादा देर तक अवॉइड नहीं करना चाहिए। और अगर आप ज़्यादा 40 से अबव हैं तो कई बार लेडीज़ होती हैं या जेंट्स होते हैं बोलते हैं नहीं अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, कभी कभी आपको दिखा लेना चाहिए। तो चलिए भाई ये गाने आपके लिए हैं, प्रोग्राम आपका है, आपकी पसंद के गाने चलते हैं यहाँ पर और हम आपके बिना पसंद के कोई गाना नहीं चलाते क्योंकि सुहाना सफ़र यही है कि सफ़र में बस बैठो और ड्राइव करो और बस इंजॉय कीजिए अपने गाने। तो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं अब्दुल जी और सायरा बानो जी और एक प्यारा सा गाना सुनना चाहते हैं। ये जो गाना चलेगा उसके बाद वाला गाना होगा ना ये आप दोनों के लिए ही होगा। साथ में ज्योति जी जुड़ी हुई हैं, आशनी, रेखा, सुरेखा, AMD और मधुक फैमिली के लिए गाना सुनाना चाहती हैं। वीना जी नोबल फॉन्स से जुड़ी हुई हैं और बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, हम एक एक करके सबके लेते जाएंगे। अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5250600 पर, अगर कॉल करना चाहते हैं तो 4028070 पर।
2: RM3 Radio.

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: Continuous music.
2: RM3. Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: दीदी के साथ नमस्कार।
5: नमस्कार की निशा श्रोताओं को भी नमस्कार। बैंक ऑफ मॉरिशस पूरी तरह स्वतंत्र हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में विपक्ष नेता के PNQ के जवाब में ये बात कही। वे केंद्रीय बैंक द्वारा 20 मई को की रेट में 25 आधार अंकों की वृद्धि पर चर्चा कर रहे थे। प्रधानमंत्री के अनुसार ये फैसला इस संस्था की पुनः प्राप्त स्वतंत्रता को दर्शाता है, एक ऐसी स्वतंत्रता जो उनके मुताबिक पिछली सरकार के शासनकाल में नहीं थी। प्रधानमंत्री का कहना है कि इन्फ्लेशन दर पूर्वानुमान से ज़्यादा रहेगी, यानी 5.5%। डॉक्टर नवीन रामगुलाम के अनुसार इसके पीछे वैश्विक स्तर पर पाई जा रही अस्थिरता का कारण है। आजसू द्वारा चलाई गई एक वृहद कार्रवाई के दौरान आज गोंबे के कोंकाहल इलाके में सिंथेटिक ड्रग्स बरामद किए गए, जिनकी कीमत 22,000 रुपये के आसपास की बताई जाती है। अफसरों को एल्युमिनियम के 13 पार्सल्स मिले और एक प्लास्टिक की थैली में कुछ द्रव्य भी बरामद किए गए। ऐसा संदेह है कि ये पदार्थ सिंथेटिक कैनाबिनॉइड हैं। इस मामले में 58 वर्षीय एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया है, उसके साथ पूछताछ की जा रही है। मॉरिशस की टेक्सटाइल कंपनी वर्ल्ड नीट्स पिछले एक साल के दौरान कैपिटल की प्रवाह को लेकर गंभीर समस्याओं का सामना कर रही थी। अब इसे वॉलंटरी एडमिनिस्ट्रेशन के तहत रखा जा रहा है। पिछले जनवरी में एक सुधार योजना प्रस्तुत करने और हाल के महीनों में परिचालन जारी रखने के बावजूद कई आंतरिक और बाहरी कठिनाइयों के कारण ग्रुप के परिचालन में लगातार देरी हुई है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, जहां कल एक बयान में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया था कि अमेरिका और ईरान के बीच एक ठोस शांति संधि तय होने की उम्मीद की जा रही है, वहीं कल ही 40 दिनों के युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए अमेरिका ने दक्षिणी ईरान पर नए हमले किए। इस बार ईरान के मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया गया। अमेरिका का कहना है कि सेल्फ डिफेंस में उसकी ताकतों ने ये हमले किए। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो गया। दीजिए नमस्कार।
6: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

बहुत मुश्किल है अकेला लौट के घर को जाना, लौट के घर को जाना, मेरे दिल का कमरा खाली है। ए मिस कम कम, मेरे

0: खाना सफर, खाना सफर।
1: दोपहर के 1:08 हो चुके हैं और आप जानते हैं कि ये जैसे गाने होते हैं ना, जो मस्ती भरे गाने होते हैं, किशोर दा के ऊपर बहुत अच्छे लगते थे। और मेघना श्रीवास्तवा की आवाज़ में आप ये सुन रहे थे प्यारा सा गाना, भरा महीने लाइन में। भाई देखिए, जिसको लाइन मारनी होती है वो मारी लेते हैं, तो ये उस ज़माने का ऐसा ही प्यार होता होगा। पर आज का जो प्यार है ना, वो बड़ा अनोखा सा है, क्योंकि व्हाट्सअप हो गया, ज़िंदगी में सब चीज़ें इतनी ओपन हो गई हैं कि हमें समझ नहीं आता कि कौन सच्चा प्यार करता है, कौन झूठा प्यार करता है। मुझे लगता है जो मोहब्बत होती है वो किसी अनोखी तरीके से ही होती है, और बहुत ही यूनिक तरीके के उनके होते हैं। उसमें लड़कियां ज़्यादातर थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाती हैं और थोड़ा सा हमेशा कहती हैं अरे मुझे तुमसे प्यार नहीं है, पर कहीं ना कहीं दिल में कहीं ना कहीं प्यार होता है। तो भाई ऐसे ही प्यार में हमारे भी कोई उस ज़माने के कोई हैं, पर उनका नाम है हमारी एक बहुत ही प्यारी दोस्त, कहती हैं कि जब नंदा जी कहती हैं अब मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, पर जब वो मुझे पटाने की कोशिश करते थे ना, तो हमेशा एक ही गाना गाते थे एक तेरा साथ सौ जहाँ से प्यारा है। तो ये भी उस ज़माने का प्यार है। तो हम तो आपको कहते हैं, चाहे वो इस दुनिया में है या नहीं है, पर आपने उनको याद किया, यही सच्चा प्यार होता है। तो हम आपके लिए आपका गाना ज़रूर चलाएंगे, और आपके पूरे लक्ष्मण फैमिली के लिए, और बेटा और बेटी के लिए। उसके साथ में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं शारदा जी, और जो कि पूरे RM3 रेडियो फैमिली को और सुंदर फैमिली को एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं। ज्ञान बिहारी जी जुड़े हुए हैं, सुनील रानी, भामा संजीव और सभी RM3 लिसनर्स को एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहते हैं। बट एक एक करके हम गाने चलाएंगे आपकी पसंद के। आप हमें कॉल कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। पर इंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, कुछ खाइए पीजिए, ये नहीं कि भूखे पेट ही बस बैठे हुए हैं। अगर थोड़ा टाइम मिलता है फिर से कुछ निकाल के बिस्किट ही खा लो, तब तक इंजॉय कीजिए ये आपका गाना।
2: RM3 रेडियो।

सुहाना सफर। 1:26 हो चुके हैं मॉरिशस में, और ऐसे कहते हैं कि कुछ रिश्ते जो होते हैं ना बहुत ही सिंपल होते हैं, हमें कभी एहसास ही नहीं होता कि उन इंसानों से हमें कितना ही मोहब्बत और कितना प्यार होता है। बट कोई ऐसा टाइम आता है जब हमें, जैसे किसी का बर्थडे आता है, किसी का एनिवर्सरी आता है, तो वो एहसास निकल के बाहर आते हैं और कहते हैं अरे भाई हम उनसे बहुत प्यार करते हैं तो क्या आप उनके लिए गाना चला सकते हैं। तो भाई ऐसे ही 2-3 प्यारे प्यारे छोटे छोटे से मैसेजेस हैं, ले लेते हैं साथ में। तो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं विमला जी, और कह रही हैं 12 बजे कब बजते हैं उसका मैं इंतज़ार करती हूँ, और उसके बाद मेरे में ऐसी फुर्ती आती है और मैं सारे काम कर देती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता। तो मुझे लगता है मुझे सुहाना सफ़र प्रोग्राम से मोहब्बत हो गया। हाय, थैंक यू सो मच, ऐसा मोहब्बत ऐसा प्यार बनाए रखिए। साथ में हमारे साथ सुदेवी जी जुड़ी हुई हैं और अपने एक प्यारा से गाने की फरमाइश की, और पूरे परिवार को एक गाना सुनाना चाहती है, और सबको ये कहना चाहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाउ स्वीट ब्यूटीफुल मैसेज। उमा जी जुड़ी हुई हैं फोंडू साग से, जो उन्होंने उन्होंने गाना मांगा वो मेरे पास नहीं था, पर मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा प्यार यहाँ से ज़रूर मिल रहा होगा, बट आपका प्यार जो हम आप मैसेजेस से देते हैं या कॉल करके देते हैं मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। उषा जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, आज उनका बर्थडे है, और हम भी आपको कहेंगे विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे, हमेशा खुश रहें, बहुत अच्छे से खाएँ, बहुत अच्छे से पीजिए, और अपना जो बर्थडे है बहुत इंजॉय कीजिए। साथ में चांदनी जी का भी आज बर्थडे है, बेटी नेहा, पापा प्रकाश ऑस्ट्रेलिया से, लंदन से, सारे जने उनको विश कर रहे हैं, और बस उनको इतना कह रहे हैं जो उनका मैसेज है उस पर देख के फील होता है, उन्होंने सिर्फ ये कहा है अपनी मामा को आई लव यू, और सभी ने ये कहा है आई लव यू सो मच, यही प्यार होता है, ऐसे ही अपना

प्यार बनाए रखिए, इंजॉय कीजिए अपने गाने, और साथ में हम आपको यही एक बात कहेंगे कि अपना ख्याल रखने से ज़्यादा दूसरों का भी ख्याल रखिए। कभी मैसेज करके पूछ लिया कीजिए कि आप ठीक हैं। तो ये गाना आप सबके लिए। RM3 Radio.

0: सुहाना सफर।
1: 1:42 हो चुके हैं दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ पूनम और आपके ही फेवरेट प्रोग्राम सुहाना सफ़र के साथ हम जुड़े हुए हैं। और RM3 जो रेडियो है आपके लिए पूरे देश विदेश से आपके लिए

0: हर तरह की खबरें लाता है, आपके लिए गाने सुनाता है, आपको पसंद की जो चीज़ें हैं आपको बताता है कि आप ये करें और ये ना करें। तो यही चीज़ ज़िंदगी होती है, ऐसी चलती है। तो हम अगर आपको इतना ही कहेंगे, अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिला है तो थोड़ा सा ज़िंदगी को जी लीजिए, अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए, हमेशा काम मत करते रहिए, थोड़ा सा रिलैक्स भी कीजिए, थोड़ा सा आराम से ये भी सोचिए, कभी अपने बारे में सोचिए कि हाँ मुझे थोड़ा टाइम खुद के लिए चाहिए। तो ऐसे ही हमारे साथ जब आप जुड़े रहते हैं, चाहे मैसेजेस के थ्रू या कॉल के थ्रू, तो हमें भी लगता है कि आपने थोड़ा सा समय अपने लिए निकाला है और अपने लोगों के लिए कोई मैसेज भेज रहे हैं। तो चलिए, इस समय हमारे साथ जुड़े हैं बाबू अनंतवा जी, जिन्होंने बहुत बार आज कॉल किया और मैं उनका कॉल नहीं ले सकी, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी, आपका कॉल देखते ही मुझे एहसास होता है कि आपको इस प्रोग्राम से और हम सब से कितनी मोहब्बत है। थैंक यू सो मच। उसके साथ में सीता जी जुड़ी हुई हैं, जो कि अपने एक प्यारे से बेटे के लिए, यानी कि यशवीर के लिए, जो कि बंसी फैमिली से हैं, उनको विश करना चाहते हैं हैप्पी बर्थडे, और दादी दादा और पूरी फैमिली उनको विश करना चाहती हैं और उन्हें कहना चाहती हैं कि तुम्हारा ये डे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जब तुमको हमने बचपन में देखा था तुम बहुत क्यूट थे, बट ऐसे क्यूट बने रहो, और यही हम चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है और यही दुआ है कि हमेशा खुश रहो। सो नाइस। सुरेश शर्मा साजदा जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और निशाल को अपने बेटे को कहना चाहते हैं कि तुम मेरा कहते हैं ना कि प्राउड हो, मैं तुम्हें बहुत प्राउड फील करता हूँ जब भी तुम्हें अपने पास देखता हूँ और कहता हूँ कि तुम हाँ मेरे बेटे हो, मुझे खुशी मिलती है। चाहे तुम जितनी मर्जी गलतियाँ करो, चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो, पर तुम मेरे बेटे ही रहोगे। हाउ स्वीट ब्यूटीफुल मैसेजेस आप सबकी तरफ से। ये गाने इंजॉय कीजिए आपके लिए।
1: RM3 Radio.

0: सुहाना सफर। 1:55 हो चुके हैं दोस्तों और धीरे धीरे आज का सुहाना सफर यहीं तक गानों के साथ और आपके प्यार के साथ में बहुत ही अच्छा समय गुजरा। मैं थी आपके साथ पूनम और मेरे बाद आप सुन पाएंगे उड़ान की कहानी। तो बस ऐसे ही जुड़े रहिए RM3 रेडियो मनोरंजन के साथ में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और ये टाइम है सिर्फ आप सबका, तो इंजॉय कीजिएगा। और ये प्यारा सा आखिरी गाना मेरी तरफ से आप सबके नाम।
1: RM3 Radio.

0: टाइम चेक 2 PM। देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अदिति, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। बैंक ऑफ मॉरिशस अब पूरी तरह स्वतंत्र हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में विपक्ष नेता के PNQ के जवाब में ये बात कही। वे केंद्रीय बैंक द्वारा 20 मई को की रेट में 25 आधार अंकों की वृद्धि पर चर्चा कर रहे थे। प्रधानमंत्री के अनुसार ये फैसला इस संस्था की पुनः प्राप्त स्वतंत्रता को दर्शाता है, एक ऐसी स्वतंत्रता जो उनके मुताबिक पिछली सरकार के शासनकाल में नहीं थी। प्रधानमंत्री का कहना है कि इन्फ्लेशन दर पूर्वानुमान से ज्यादा रहेगी, यानी 5.5%। उनके अनुसार इसके पीछे वैश्विक स्तर पर पाई जा रही अस्थिरता का कारण है। बलाक्लावा में कल नेशनल साइबर ड्रिल 2026 का आयोजन किया गया। ये पहल सर्ट एमयू की रही। दुनिया में बढ़ती आधुनिकता के साथ साथ उच्च स्तर के साइबर हमले पेश आने लगे हैं। इस तरह के खतरे के खिलाफ प्रतिरक्षा मजबूत करने के मकसद से सार्वजनिक संस्थाएं इस अभ्यास के लिए जुटी, ताकि प्रतिक्रिया क्षमताएं तेज की जा सके और समन्वय ज़्यादा मजबूत हो। इसके तहत देश के रणनीतिक डिजिटल बुनियादी ढांचों की बेहतर सुरक्षा के लिए आवश्यक कदमों पर गौर किया गया। तलबिया कहते हुए आज मैदानी अरफात में सभी हाजी अपने रब के फरमान पर जमा हुए। हमारे 1506 हमवतन भी इनमें शामिल हैं। आज 9 जिल हिजा की तारीख पर यौम अरफात है। हज की अदायगी में ये सबसे अहम मरहला है। आसू द्वारा चलाई गई एक वृहद कार्रवाई के दौरान आज गौबे के कोंकागोल इलाके में सिंथेटिक ड्रग्स बरामद किए गए, जिनकी कीमत करीब 22,000 रुपये की बताई जाती है। अफसरों को एल्युमिनियम के 13 पार्सल्स मिले और एक प्लास्टिक की थैली में कुछ द्रव्य बरामद हुए। ऐसा संदेह है कि ये पदार्थ सिंथेटिक

कना बी इनोइड है। इस मामले में 58 वर्षीय एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया, उसके साथ पूछताछ चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, जहां कल एक बयान में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया था कि अमेरिका और ईरान के बीच एक ठोस शांति संधि तय होने की उम्मीद है, वहीं कल ही 40 दिनों के युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए अमेरिका ने दक्षिणी ईरान पर नए हमले किए। इस बार ईरान के

0: बनाया गया. अमेरिका का कहना है कि सेल्फ डिफेंस में उसकी ताकतों ने ये हमले किए. इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. आगे आ दीजिए. नमस्कार.
1: Center 95.5 North South 95.6 95.6 East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: की कहानी ईरान की कहानी
1: नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर रेडियो मनोरंजन पर मैं हूँ रत्ना। आ पहुंची हूँ एक और नई उड़ान की कहानी को लेकर। और हम आपसे क्या कहें, उड़ान की कहानी का ये जो सिलसिला है वो बहुत ही तेज़ी से उड़ान भर रहा है। धीरे धीरे करते हुए हमारे जो समाज की महिलाएं हैं, और ना केवल हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे सभी वर्ग के लोग इस कार्यक्रम को बेहद पसंद करते हैं। सभी श्रोताओं को बहुत धन्यवाद कहेंगे। और आज के इस कार्यक्रम को आप रेडियो मनोरंजन पर लाइव सुन पा रहे हैं, साथ ही साथ इसे फेसबुक पेज पर भी आप फॉलो कर पाएंगे। तो चलिए आज एक और सशक्त महिला की कहानी, उड़ान की कहानी। और ये उड़ान जो है वो भरना आसान नहीं होता, बस मन में वो जज्बात होने चाहिए, मन में वो विश्वास होना चाहिए, मन में वो श्रद्धा होनी चाहिए कि उड़ान भरेंगे तो भाई बहुत अच्छी वाली उड़ान। तो चलिए आज की ये उड़ान हम भरेंगे ज़रूर। पर उससे पहले हम बता दें आपको, आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक बहुत ही खूबसूरत महिला, और इन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं, उन पर आज हम बात करेंगे। पर उससे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती हैं, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। तो बस इसी जुर्रत के साथ हम भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आइए स्वागत करते हैं रूबी जी का। रूबी कपूर आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं। रूबी जी, आपका बहुत बहुत प्यार से स्वागत है।
2: थैंक यू सो मच। शुक्रिया रत्ना, इतने प्यार से इंट्रोडक्शन की है। एंड उड़ान तो हम सबको भरनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और आपने जो उड़ान भरी है भाई लाजवाब। हम आपको बताते चले, आज रूबी कपूर हमारे साथ हैं, और रूबी कपूर यहाँ पर मॉरिशस आई हैं अपने बुक लॉन्च के लिए, और उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। इस पर आज के इस कार्यक्रम में हम ज़रूर चर्चा करेंगे। पहले तो मैं रूबी से पूछना चाहूँगी। रूबी
2: जी, पूछो।
1: हाँ जी, आप मॉरिशस पहली बार आए हो?
2: नहीं, मेरी तो रू आई थिंक इज़ कनेक्टेड विथ मॉरिशस। हम आए थे पहले 1992 में।
1: हाँ जी,
2: बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड्स जॉब। और मैंने सोचा था कि बस एक साल, देन आई सेड बस दो साल, देन आई सेड तीन साल, करते करते वी स्टेड ऑलमोस्ट 17 साल यहाँ पे।
1: मतलब?
2: और इतना कुछ हुआ, इतना कुछ गिव बैक किया टू द कंट्री एंड व्हाट द कंट्री गेव मी इन रिटर्न। यू नो, इट वाज अ परफेक्ट मिश्रण ऑफ लेन देन। एंड 17 साल कहाँ बीत गए पता भी नहीं चला। एंड आज मैं वापस आई हूँ इतने सालों के बाद, एंड आई स्टिल फील अ ह्यूज सेंस ऑफ बिलोंगिंग, जैसे मैं यहाँ पैदा नहीं हुई थी,
1: ये यहाँ की ही है,
2: लेकिन मैं यहाँ की ही हूँ।
1: मतलब
2: हम सब एक हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी।
2: तो जहाँ भी मैं चली जाऊँ, गोल मोल होके मैं वापस यहाँ आऊंगी।
1: हाँ, तो मतलब एक तरह से आपको लगता है कि आप अपने ही घर में हैं।
2: Of course,
1: हाँ,
2: it's like a homecoming.
1: हाँ जी, हाँ जी,
2: you know?
1: हाँ, और बिल्कुल मैं भी यही समझती हूँ कि ये जो sense of belonging है, ये एक बहुत बड़ी connectivity है अपनों के साथ और जुड़ने के लिए। कई बार होता है ना कि भले हम भारत से हों, लेकिन जहाँ पर हम अपना मान कर चलते हैं, वहाँ फिर कोई अपना पराया नहीं होता।
2: बिल्कुल, और क्या पता ये, you know, अगले पिछले जन्मों की कहानियाँ हैं। हमें नहीं पता क्यों, कैसे, कब, कहाँ, but just enjoy the journey, go with the flow and love every minute of what you do, who you meet. It's like be in the present.
1: हाँ, अभी को जियो,
2: जिससे मिल रहे हो अभी को जियो, जिससे

0: मिल रहे हो, जो काम कर रहे हो, दिल खोल के करो.
1: सही.
0: डोंट थिंक आगे पीछे, अगर मगर मत सोचो. जस्ट लिव इन दैट मोमेंट, ब्रीद इन ऑल दोज मेमोरीज, फील एवरी मोमेंट. एंड क्योंकि एक बार वो चला जाता है ना,
1: फिर वो निकल जाता है, फिर वो वापस नहीं आता. और इसलिए कहते हैं ना कि जस्ट अभी जो आप कर रहे हो ना, यही आपको आगे चलकर मेमोरीज जो है,
0: मेमोरीज आल्सो व्हिच आर सो इम्पोर्टेंट. जिंदगी में मेमोरीज ही तो सब कुछ है.
1: सही बात.
0: तो लेट्स मेक गुड मेमोरीज फ्रॉम नाउ ऑन.
1: और बिल्कुल, उड़ान बीइंग अ पार्ट, उड़ान की कहानी का एक हिस्सा बनना, ये भी हमारे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है. तो मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी रूबी जी, आपने ये लेखन के क्षेत्र में, यानी जो राइटिंग आपने शुरू की, आपके मन में कैसे आइडिया आया कि मैं कुछ लिखूं?
0: पता नहीं, इट जस्ट अपने आप.
1: हाँ जी.
0: जिंदगी में ना कई चीजें अपने आप आ जाती हैं, डाउनलोड्स अपने आप आ जाते हैं. तो वन थिंग जस्ट लेड टू अनदर. जब मैं आई थी 92 में, उस वक्त ना केबल था, ना वाईफाई ना था, ना इंटरनेट, ना सेलफोन्स, कुछ भी नहीं था. पर एक एक करके जो भी मेरे सामने मौके आए, आई जस्ट ग्रास्प देम विद बोथ हैंड्स. पहले तो आई स्टार्टेड पेंटिंग ऑन माय विंडोज. हम पॉइंटर्स ही में रहते थे और बहुत शीशा था अराउंड. एंड बीइंग एन आर्टिस्ट, आई जस्ट स्टार्टेड पेंटिंग ऑन दोज लिटिल पैनल्स ऑफ ग्लास. माय फ्रेंड्स कॉम्प्लीमेंटेड मी, माय हस्बैंड सपोर्टेड मी एंड सेड और बड़े शीट्स ऑफ ग्लास पे पेंट करो. तो एक एक करके आई एंडेड अप हैविंग एन एग्जीबिशन ओवर हियर. Where I was blessed because the ex-president, Mr. Kasim Uddin, inaugurated the show. Aur uske baad there was no looking back. Uske baad phir TV ka mauka aaya, radio ka mauka aaya, became an MC for corporate events. I started writing for L'Express newspaper. To ek ek karke itni cheeze maine ki hai, my graph, my CV just expanded. Kab, kaise, kyun? मैं
1: कोई
0: आज
1: नहीं
0: तक नहीं जानती, लेकिन मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ. आई हैव एंजॉयड द जर्नी एंड टुडे आई एम राइटिंग बुक्स. यू नो, आई डोंट नो हाउ मेनी मोर आई विल राइट. मे बी इट्स द लास्ट वन, मे बी देयर विल बी वन मोर. वन मोर तो होगा, द ट्रिलॉजी टू दिस दिस सीरीज. And I'm just enjoying the journey.
1: बिल्कुल, आपके चेहरे पर वो चमक दिखाई दे रही है, आपके चेहरे की वो खुशी दिखाई दे रही है. और मैं समझती हूँ रूबी जी कि जब कोई इंसान किसी चीज़ को करने में वो खुशी महसूस करे,
0: बिल्कुल,
1: तो मैं समझती हूँ वो फिर काम नहीं लगता, बर्डन नहीं लगता नहीं. और फिर आप वो उसे पूरी तरह से
0: और करो तो करते. अच्छी तरह करो या ना करो,
1: बिल्कुल सही.
0: So either be passionate about it or don't do it at all. तो मैं तो पूरा एकजुट बन के आई जस्ट डाइव राइट इनटू इट और गिव इट माय बेस्ट शॉट.
1: तो रूबी जी, आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आपने रेडियो भी किया था, टीवी भी किया था.
0: yes.
1: तो थोड़ा उसके बारे में बताएं.
0: टीवी में देयर वाज अ प्रोग्राम कॉल्ड काउंटडाउन अबाउट द 10 टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक.
1: ओके. और ये एमबीसी पर चलता था?
0: हाँ जी.
1: ओके.
0: एंड आई मैं अपना ही स्क्रिप्ट लिखती थी, अपने ही कपड़े मैं अपने वार्डरोब से निकाल के पहनती थी, अपना ही होममेड मेकअप करती थी. और जमाना तो यू नो, वन डिडंट
1: इवन नो, सारी चीजें अवेलेबल
0: भी नहीं थी. वन डिडंट नो हाउ टू, बट कैसे ना कैसे हो ही गया. एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट, आई थिंक वेडनेसडे को आता था ये प्रोग्राम 8 बजे. एंड लिटरली मॉरिशस यूज़ टू स्टॉप, क्योंकि दैट वाज सच अ वंडरफुल, हैप्पी, चेयरफुल प्रोग्राम. एंड पुराने जमाने के लोग वो अब भी शायद याद करेंगे, कॉल्ड काउंटडाउन बाय रूबी कपूर. एंड बहुत मजा आया. इट वाज सो इंटरेस्टिंग, आई लर्न सो मच एंड आई डिडंट रियलाइज दैट आई वुड लव द कैमरा एज मच एज आई डिड. तो उसके बाद सनराइज रेडियो फ्रॉम द यूके वाज सेटिंग अप रेडियो स्टेशन ओवर हियर कॉल्ड टॉप एफएम. तो उस पे आई हैड अ वीकेंड चैट शो एंड आई वाज कॉल्ड मोनिका वर्मा. तो अगर कोई भी याद करे, वो रूबी कपूर और मोनिका वर्मा मैं ही हूँ.
1: ओहो, तो आज भाई साक्षात रूबी कपूर, मोनिका वर्मा, उर्फ मोनिका
0: वर्मा, अलग अलग रोल्स के.
1: बिल्कुल
0: हाँ जी.
1: तो मैं समझती हूँ हर एक स्टेज को आपने जिया है और हर एक वो मेमोरीज को आज आप जब पीछे पलट कर देखती है तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखा.
0: ऑफकोर्स. और मन में आता है कि मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया,
1: ओए होए,
0: मैंने वो कैसे किया.
1: हाँ, क्योंकि you know, ये कभी कोई प्लान में था नहीं.
0: कोई प्लान में, इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द ग्रैंड प्लान एट ऑल. बट जो आया आई एम्ब्रेस्ड इट. एंड आई वुड सबको मैं ये कहूंगी, कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट योर डोर ना, ले लो. ये मत कहो कि नहीं यार नहीं होगा, कैसे करूंगी, मैं तो सीखी नहीं हूं,
1: मुझे एक्सपीरियंस नहीं है,
0: कुछ गलत हो जाए, व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ व्हाट इफ व्हाट इफ, मत सोचो यार, डूब जाओ, ले लो, टेक द लीप ऑफ फेथ।
1: मैंने आज ही एक प्रोग्राम में कहा था कि काश काश को पकड़ के मत बैठो,
0: बिल्कुल नहीं,
1: जो भी आए
0: ले लो, भगवान की देन है, ले लो, एंड अगर तुम दिल से और प्यार से करोगे ना, उसमें कोई फेलियर नहीं है। आई मीन हु, कौन जज कर रहे है सक्सेस और फेलियर को? कभी हम सोचते कि इतना ग्रेट नहीं था, पर कोई बात नहीं ना, यू कैन लर्न फ्रॉम इट एंड यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। सो आई डोंट बिलीव इन एनी फेलियर्स, दे आर जस्ट चैलेंजेस which are meant
1: learning,
0: to teach us.
1: Learning opportunities.
0: It's a learning for a lifetime. आज तक हम कोई नहीं ये कह सकता कि I know everything. No, we do not know everything.
1: हो सकता है कि वो आपको कुछ सिखाने आया है.
0: कुछ सीखने आया है. वहाँ से आपकी direction बदल जाए, navigate करे, and then आप बिल्कुल कुछ और अलग चीज करने लग जाओ।
1: सो वी डोंट
0: नो कि हमारी वो पगडंडी किस डायरेक्शन में जा रही है। जस्ट कीप वॉकिंग।
1: और मैं समझती हूँ कि कई बार हमें कुछ चीजें लाइफ में मिलती है वो किसी और चीज से जोड़ने के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पर वो रास्ते अलग अलग होते हैं।
1: बिल्कुल सही।
0: सो जस्ट वॉक ऑन विच एवर रोड विच इज ओपनिंग अप फॉर यू एंड Be brave.
1: हाँ बिल्कुल, हिम्मत नहीं हारनी है। और उड़ान की कहानी वन ऑफ द, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी जितनी भी महिलाएं आती हैं हर एक की अलग कहानी होती है। कुछ किसी ने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए, किसी ने मतलब कई बार होता ना कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज, कई बार ये जो चैलेंजेस आती हैं ये एक तरह से हमें बहुत कुछ सीखने सिखाने।
0: हर इंसान हैज़ गॉन थ्रू चैलेंजेस, आप कोई अजीब नहीं हो या मैं कोई अजूबा नहीं हूं, कसम से, वी ऑल, हम सब कहीं ना कहीं विल गो थ्रू चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स एंड यू नो तकलीफें। कोई पहले गुजरेगा अर्ली लाइफ में, कोई लेटर,
1: हाँ,
0: कोई बीच में, ओके, पर एवरीबॉडी हैज टू वॉक दैट पाथ। ये हमारी स्कूलिंग है, हमने जन्म लिया है सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं, एक वजह के लिए, एक पर्पस के लिए, टू लर्न थिंग्स इन लाइफ, वेदर इट्स व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम दोज केजी क्लासेस, यू नो वो ABCD से हम शुरू करते हैं, तो पूरा एक जैसे एक सिलेबस होता है, लाइफ का एक सिलेबस है, एंड यू हैव टू कंप्लीट ऑल द चैप्टर्स टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी।
1: और जैसे कहते हैं ना कि जिंदगी हर एक का क्वेश्चन पेपर अलग तरीके से सेट करती
0: है, अलग तरीके
1: तो का, मतलब इसमें कोई कॉपी कर नहीं सकते, यानी अपने
0: नहीं, बिल्कुल कॉपी नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कौवा चले हंस की चाल,
1: सही बात,
0: तो अपनी चाल चलो।
1: बिल्कुल। तो रूबी जी वापस आते हैं और आज हम जरूर जानना चाहेंगे, वैसे आप मॉरिशस आई हैं बुक लॉन्च के लिए, तो आपकी जो नई बुक है उसके बारे में भी मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगी, पर पहली जो आपकी किताब थी लेट्स टॉक अबाउट लाइफ, तो इसके बारे में हमें जरूर बताएं थोड़ा सा।
0: लेट्स टॉक अबाउट लाइफ, जिंदगी के बारे में।
1: हाँ जी,
0: दिस इज़ अ बुक ऑन पॉजिटिव थिंकिंग, मोटिवेशनल है लोगों के लिए, और ये जर्नल फॉर्मेट में है।
1: ओके, और मैं पूछ सकती हूँ ये कब आपने लिखी थी?
0: द फर्स्ट एडिशन वॉज अ बायलिंगुअल, इंग्लिश और फ्रेंच में,
1: ओ वाओ,
0: इन 2005।
1: एंड
0: कैसे हुआ मुझे नहीं पता चला, आई जस्ट नो आई वॉज डूइंग टेलीविजन, आई वॉज डूइंग रेडियो, आई वॉज बींग MC फॉर कॉर्पोरेट इवेंट्स, फिर मैं लेक्स प्रेस के लिए लिखना शुरू किया एंड बहुत लोगों से मिल रही थी, जिंदगी के बारे में बात करते थे और मैं अपने नोट्स लिखती थी एंड मैं बड़ी इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन हूँ, तो जब भी मैं दुखी हूँ या वॉट एवर, अगर मन में कोई उधेड़ बुन हो रहा है तो मैं लिखती हूँ एंड वन डे आई रियलाइज्ड कि देयर इज सो मच मटेरियल दैट आई हैड एंड किसी ने मेरे को एक बार बोला कि यू नो आई लव योर आर्टिकल्स, एवरी टाइम आई वेंट आउट समबडी सेड आई लव योर आर्टिकल्स, आई कट इट आउट एंड आई गिव इट टू माई स्टाफ, आई गिव इट टू माई स्टूडेंट्स, मैं बहुत डिप्लोमेटिक फंक्शंस अटेंड करती थी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो एक बार मैंने मजाक से कह दिया कि डोंट वरी अबाउट कटिंग इट, यू नो एंड कटिंग द आर्टिकल, वील सॉर्ट समथिंग आउट, मैंने तो ऐसे ही जोश में बोल दिया, यू नो बिकॉज इट साउंडेड सो कूल,
1: और शुरू शुरू में आपको ऐसा मतलब किसी ने बोला,
0: इट वाज सो कूल यू नो टू से दैट कि डोंट वरी कुछ ना कुछ हम कर लेंगे, पर क्या पता वी वर गोइंग टू लीव द कंट्री एंड देन आई

0: wanted to give back. तो मैंने बोला क्या मैं कुछ करूं? I want to say thank you to Mauritius for giving me the platform and the opportunity. तो मैंने ना सारे अपने articles compile कर दिए.
1: जी.
0: And made it in the form of a book. पर मैंने फिर सोचा कि नहीं, इसको कुछ अलग करना चाहिए. And Mauritius में French is the main language, तो French and English. तो जो लोग French learn कर रहे हैं, जो अपनी English improve कर रहे हैं, फिर let's make it into a diary format. तो मैंने ना multiple layers add किए. So that it would cater to a wide audience. Whether it was the Indian, whether it was the English community or the Mauritians or Creoles or anybody, it would suit sabko. And to be positive, I realized that because of my positivity, I had reached where I did reach. So yeah, that's how this book came about. And that was the first edition in 2005.
1: और आपको फीडबैक क्या मिला इस किताब के बारे में? जैसे
0: देख, उस वक्त तो FB, Facebook और Instagram, LinkedIn कुछ भी नहीं था. तो I must admit, फिर life got so busy, बच्चे छोटे थे and all that, so you know we didn't have any means कि कैसे पता करें कि लोगों को पसंद आए, उन्होंने लिखा नहीं लिखा, what have you. फिर कुछ साल पहले another friend of mine said to me कि आजकल तो Amazon है, तो why don't you put your book on Amazon and दुनिया तक ये book जा सकती है. तो फिर मैंने redesign वो book की.
1: Okay.
0: This is the new design and this is purely in English.
1: Okay.
0: Okay. तो and I made it more contemporary design.
1: हाँ.
0: ये लो.
1: हाँ जी बिल्कुल.
0: As you can see, वो जर्नल फॉर्मेट में है.
1: बिल्कुल, यानी एक साइड में प्लेन पेज है, आप कुछ अपना भी उसमें डाल सकते हैं,
0: अपने थॉट्स. और ये इसमें 52 आर्टिकल्स हैं, तो दे आर लाइक प्रॉम्प्ट्स. कभी आपका मन कर रहा है लिखने को या जो भी आपके मन में गुजर रहा है एंड यू वॉन्ट टू पुट इट डाउन ऑन पेपर, पर कभी कभी तुम लिखना चाहते हो पर समझ नहीं आ रही कि मैं लिखूँ क्या, तो दिस गिव्स यू अ प्रॉम्प्ट. इट ट्रिगर्स योर ब्रेन, इट रिमाइंड्स यू ऑफ समथिंग एंड देन यू से ओ या, एंड देन अपनी कहानी आप लिखते हो. और कभी कभी इतनी कन्फ्यूजन होती है ना मन में, ओवरथिंकिंग एंड चैलेंजेस, एंजाइटी हो रही है. एक चीज मैं सबको बोलूंगी, आप लिखो जरूर.
1: हाँ.
0: क्योंकि जब आप लिखते हो रिपीटेडली, आप वही एक पैटर्न ढूंढोगे. पैटर्न में ढूंढोगे द प्लसेस एंड द माइनसेस, और आपको फिर आइडिया आएगा कि वेयर यू नीड टू इम्प्रूव एंड वॉट यू नीड टू चेंज इन योर लाइफ. सो वो जो जवाब आपको मिलेंगे
1: बिल्कुल सही.
0: अपने आप, आपको यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा, द जवाब विल कम टू यू. यू विल गेट दैट क्लैरिटी ओनली बिकॉज यू हैव टेकन द टाइम टू राइट.
1: बिल्कुल.
0: बट एक चीज जरूर है, यू हैव टू राइट विद कंप्लीट ऑनेस्टी.
1: बिल्कुल सही.
0: यू नो, उसमें जब आप लिख रहे हो, आप प्रिटेंड मत करो, कोई देख नहीं रहा, कोई कुछ कह नहीं रहा, कोई जज नहीं
1: honestly.
0: कर रहा. और हाँ, ऑनेस्टली, क्योंकि ये किताब अपनी पर्सनल सेल्फ हेल्प है, आपकी पर्सनल फ्रेंड है, कॉन्फिडेंट है. And it doesn't back chat. आपको जवाब नहीं देता है. It doesn't talk back at you. तो आपको जो मर्जी है आप लिखो, अपनी फीलिंग्स पोर करो, अपने टीयर्स, आपकी खुशियां, सब कुछ, और आपके जवाब हू बहू आ जाएंगे.
1: मतलब फिर एक तरह से आपके अंदर ये मैं समझती हूँ अपने आप को पहचानने का एक जरिया,
0: सेल्फ अवेयरनेस, एंड देन सेल्फ डिस्कवरी कम्स आफ्टर दैट. यू नो, पर लेकिन ऑनेस्टी बहुत जरूरी है.
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही.
0: बिकॉज अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो तो यू विल नॉट गेट द राइट आंसर्स. और आप नोटिस करेंगे, और ये बुक ऐसे की नहीं है कि शुरू से पढ़ो राइट टिल द एंड. यू कैन ओपन इट टू कोई भी पेज और आपको लगेगा यार, how did the book know that this is what I wanted to hear today? This is what I wanted to help me go through the day, to motivate myself. है ना? तो पर ये मैं कहती हूँ भगवान की देन है.
1: सही बात.
0: मुझे नहीं पता ये कैसे हो रहा है, but this is one of the most commonest feedbacks I get कि when I open a page, मुझे लगता है कि वो पेज मेरे लिए लिखा गया है.
1: नो, इट्स सो जनरस ऑफ यू, बिकॉज मैं हमेशा मानती हूँ कि एक तो ये जो तरीका है, आप किताब लिखती हैं, आपने अपने दिल की बात इसमें उतारी, और आपने जैसे कहा ना कि इतनी ऑनेस्टी है इसमें, इतनी ईमानदारी है, इतनी सच्चाई है कि अपने आप आपके शब्द लोगों को कनेक्ट करते हैं.
0: Yes.
1: तो मैं जैसे आपने हमने शुरुआत में कहा कि कोई भी काम करो, कुछ भी करो, दिल से करो, सच्चाई से करो, शिद्दत से करो, पूरी ईमानदारी से करो, फिर वो ऊपर वाला आपके लिए
0: फिर
1: रास्ते,
0: वो पूरी कायनात जुड़ जाती है ये आपको, तो हर चीज डिलीवर
1: करने के. और ये झूठ मूठ का, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये सच बात है.
0: चाहे मैं कहूँ, ये शाहरुख खान ने कहा था और और शाहरुख खान इज जैसे सब बोलते SRK, तो मैं भी वैसे अपने तरीके की

0: शाहरुख खान ही हूँ क्योंकि माय फर्स्ट नेम इज सुजाता एंड देन आई एम रूबी कपूर
1: यानी एसआरके
0: आई नो दिस इज रियली फनी एंड मुझे हंसी भी आती है पर मुझे मजा भी बहुत आता है. तो ये डायलॉग वैसे सिर्फ शाहरुख खान का नहीं है, ये मेरा भी है कि पूरी कायनात हैज एक्चुअली वर्क टूवर्ड्स मी टू take me to different levels and explore emotions, real authentic emotions, and that's why Shahid, I was capable of writing another book.
1: Wow, I am, I can, and I will. Okay, तो हम इसके बारे में भी जरूर जानना चाहेंगे, पर चलिए लेते हैं एक गीत का ब्रेक, आते हैं थोड़ी ही देर में उड़ान की कहानी आगे बढ़ाने के लिए.

0: की कहानी, उड़ान की कहानी।
1: जी हाँ, उड़ान की कहानी। और बिल्कुल कहते हैं ना, समाज में अगर शक्ति से कोई डटा हुआ है और शक्ति स्वरूपा नारी, बिल्कुल बहुत सारे उतार चढ़ाव आने के बावजूद नारी कई सारे चैलेंजेस को फेस करती हैं। और इसमें बिल्कुल मैं समझती हूँ हर एक नारी के पीछे उनका परिवार का सपोर्ट भी बहुत ही ज़रूरी होता है। और आज हमारे साथ रूबी कपूर यहाँ पर है। रूबी जी, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपके इस सफ़र में आपका साथ, आपका सहयोग अब तक किसने दिया?
2: That's a really nice question actually. और एक बार पहले भी किसी ने मुझे ये question पूछा था. और support तो बहुत है family का
1: जी।
2: पहली बात मेरी मम्मी की, she is no more, लेकिन वो always कहती थी कि you know रूबी कुछ कर दिखाएगी। And उस वक्त तो ऐसे ही thrill मिलते थे कि मम्मी सोच रहे हैं कि मैं सबसे heroine बनूंगी kind of thing. लेकिन अब वो नहीं रही, और जब चीज़ें होती हैं तो उनका ख्याल ज़रूर आता है कि उनकी बातें और उनकी शी न्यू विद इन हरसेल्फ। जैसे हम सब औरतें, हम सब इंसान जानते हैं हमारे दिल के अंदर क्या है। डू यू नो व्हाट आई एम सेइंग, इट्स योर गट इंस्टिंक्ट। तो वो एक माँ का गट इंस्टिंक्ट था। And
1: और कहते हैं ना, माँ कभी झूठ नहीं बोलती,
2: झूठ नहीं बोलती, you know, and here we are talking about सच्चाई and honesty. तो that was the first slight push, but a bigger push came from my husband and my family. My children of course are always there to support me, lekin mere husband bahut mujhe support karte hain. It's literally jaise again Shahrukh Khan ki film mein jaise kehte hain na, ja simran ja, jee le apni zindagi. To it's like ja Ruby ja, jee le apni zindagi, jee le
1: jo bhi matlab kar rahe ho. Aur ek tarah se unka ye vishwas aur
2: bahut utmost trust and belief that I can do it. I mean, आज मैं आई हूँ मॉरिशस इतने दिनों के लिए और समथिंग ही कुडन मेक इट, बट कोई बात नहीं। ही सेड आई नो यू विल डू अ डैम गुड जॉब, इन फैक्ट तुम इंस्टेड ऑफ मी हैंगिंग अराउंड यू तुम अपने आप बेटर जॉब कर लोगी, यू नो। तो जब किसी का इतना विश्वास होता है तुम पे और इतनी बिलीफ होती है, you don't want to let them down.
1: Bilkul.
2: You don't want to let yourself down, but you don't want to let them down as well. And finally, I will say myself. अपनी एक सेल्फ बिलीफ होती है, अपनी एक आइडेंटिटी होती है। तो हम ऑलवेज अपने आप को क्रेडिट देना भूल जाते हैं।
1: सही बात।
2: तो एज मच एज मैं अपनी मम को क्रेडिट दूँ, मेरे हस्बैंड को बहुत क्रेडिट मैं देती हूँ, लेकिन एंड ऑफ द डे इट इज खुद को।
1: हम अगर
2: खुद को बहुत निग्लेक्ट करते हैं, इनफ सेल्फ लव नहीं देते, इनफ कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं बोलते। तो आज मैं कहूँगी कि मैंने बहुत मुश्किलों के बाद सीखा है कि नहीं, आई शुड गिव माई सेल्फ क्रेडिट फॉर इट, कि तरद्दत मैंने की है, आई हैव क्रॉस चैलेंजेस, आई हैव यू नो मेरे भी उतार चढ़ाव बतेरे रहे हैं, यू नो सुख दुख तो इज पार्ट ऑफ लाइफ, बट डिस्पाइट इट ऑल कि इफ आई कैन स्टैंड टॉल टूडे एंड सिट हियर चैटिंग विथ यू, तो थोड़ा तो मुझे भी क्रेडिट मिलना चाहिए ना, पैट ऑन द बैक मिलना चाहिए।
1: एक टाइम था जब हम कहते थे ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, पर आज के समय में हम

0: ये भी कह सकते हैं कि एक महिला को भी सक्सेसफुल होने के लिए एक पति का या पिता का या भाई का या पार्टनर का या दोस्त का वो सहारा बहुत
1: जरूरी है. आई हैव हैड दैट सहारा सपोर्ट फ्रॉम माय हस्बैंड, नॉट ओनली एज अ हस्बैंड, आई थिंक मोर एज अ फ्रेंड. हस्बैंड की तरह तो आई एम नॉट श्योर हाउ ही डज, बट एज अ फ्रेंड ही डज अ ब्रिलियंट जॉब इन सपोर्टिंग मी एंड एनकरेजिंग मी. सो या, हियर आई एम.
0: और मैं समझती हूँ अगर आपको कहीं ना कहीं आपके भाई में या आपके पति में या पिता में वो दोस्त मिलता है तो आपको
1: नथिंग लाइक इट.
0: उसके अलावा आपको कोई बाहर के दोस्त की उतनी आवश्यकता नहीं होती. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दोस्ती ना करें, पर मैं यही कहूँगी कि आपके फैमिली का जो सपोर्ट है, अगर वो आपको आपके बुराइयों में, आपके अच्छाइयों में आपको सही राह दिखाते हैं, तो मैं समझती हूँ दैट इज द बेस्ट.
1: एंड ऑल्सो मैं तो कहती हूँ कि रिलेशनशिप्स में जैसे सब आजकल कहते हैं लव मैरिज है, ये मैरिज है, आपकी कैसे हुई, मैं तो कहती हूँ कि मेरी तो फ्रेंडशिप की शादी हुई. दोस्ती की हमारी शादी है. हमने सोचा था कि यू नो उस वक्त सब कहते हैं ओ आई लव यू एंड ऑल बिकॉज दैट्स हाउ इट वर्क्स, यू नो तुम कहते हो, पर एक्चुअली सच्चाई में वो लव बव सब बाद में आता है, पहले दोस्ती आती है.
0: सही बात.
1: एंड आज तक वही दोस्ती इज टेकिंग अस प्लेसेस.
0: बिल्कुल. और मैं रूबी जी जरूर पूछना चाहूंगी कि जब आप बुक्स लिखती हैं एट द सेम टाइम आपका अपना एक करियर है, तो आप घर को और करियर को मैनेज कैसे करती हैं?
1: कर लेती हूँ. Somehow or the other,
0: हो जाता है.
1: जब आपको कुछ, I'm an artist as well, so I paint a lot. Lately I haven't done it क्योंकि I've got busy with this book. लेकिन जब आपको दिल से कुछ करना होता है ना, जिसमें खुशी मिलती है, उसके लिए तुम वक्त निकाल ही लेते हो.
0: निकल ही जाता है, टाइम निकल ही जाता है.
1: निकल जाता है, निकाल लेते हो, जैसे भी आप समझो. तो जैसे अगर घर में आई डू ऑल द कुकिंग एंड आई एंजॉय इट, तो यू नो यू ऑटोमेटिकली प्लान इन योर माइंड कि मुझे ये आज करना है, एंड देन यू वर्क अराउंड इट. अपना एक टाइम टेबल आप बना लेते हो एंड देन यू फॉलो इट थ्रू. तो the नियत should be there.
0: बिल्कुल.
1: अगर आपकी नियत सही है that I have to do this, I'd like to do this,
0: फिर अपने आप टाइम निकाल
1: निकल ही जाता है.
0: सही बात. और मैं बिल्कुल इस पर आऊंगी, आई एम, आई कैन, आई विल, इतने पावरफुल तीन ऐसे शब्द. और मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि इस किताब के लिए आपको आइडिया कैसे आया?
1: रत्ना, यू विल बी अमेज्ड. बिल्कुल आप सरप्राइज हो जाओगे कि ये एक्चुअली किताब मैंने 10 साल पहले लिखी थी. मेरी मम्मी, शी वॉज गोइंग थ्रू मल्टीपल ऑपरेशन, स्पाइन, बैक, यू नो अपनी नी ऑपरेशन, फलाना टिमकाना. तो मैं बॉम्बे बहुत जाती थी उनकी देखभाल करने के लिए. हर रोज़ रात को ना मैं कुछ ना कुछ लिख के अपनी बेस्ट फ्रेंड जो कैनेडा में है उसे मैं भेज देती थी. टाइम डिफरेंस की वजह से रात को मैं भेजती थी, सुबह उसका जवाब आ जाता था. एंड It just occupied me in a very positive manner. फिर मैंने एक डमी कॉपी बना के ऐसे ही रख दी थी. पिछले साल मैंने सोचा कि अरे यार, मैंने उस डमी कॉपी में लिखा क्या था, जरा पढ़ू तो. एंड व्हेन आई रेड इट, इट्स 10 years later. ओके, व्हेन आई ओपन्ड इट, आई सेड ओह माय गॉड, दिस इज अनदर बुक इन द मेकिंग. एंड
0: मतलब
1: of course,
0: आपने इतने सालों में लिखते गए कि आपको रियलाइज नहीं हुआ कि एक पूरी किताब जितना आपने मैटर लिखा है.
1: बिल्कुल. ऑल द कॉन्टेंट वॉज देयर. हाँ, जरूर है कि 10 सालों में बहुत चीजें बदल गई हैं, पर्सपेक्टिव्स बदल गए हैं, लेकिन एज यू से ना, वो एक ढांचा रेडी था.
0: बिल्कुल.
1: एंड दैट ढांचे को मेरे को अभी मॉडर्नाइज करना था और डिफरेंट पर्सपेक्टिव में पेश करना था,
0: उसको मोल्ड करना था.
1: बिल्कुल. तो वो मैंने किया. आई स्पेंड द होल ऑफ लास्ट ईयर डूइंग दैट, गोइंग ओवर इट, बट आई हैड द स्केलेटन इन प्लेस, सो दैट हेल्प मी अ लॉट. एंड क्या पता था 10 साल पहले, मैंने ये तो नहीं सोचा था कि ये मैंने किताब लिखनी है या ये टाइटल होगा. बट इट जस्ट हैपेंड एट द राइट टाइम. सो आई देयरफॉर बिलीव इन द यूनिवर्स अ लॉट कि जब कुछ होना होता है ना, वो अपने टाइम पे अनरावल हो जाता है.
0: कई बार हम लोग लड़ते हैं, जूझते हैं समय से, पर उसका सही समय नहीं होता. इसीलिए और मैं समझती हूँ कि आपने जो ये तैयार किया था, कहीं ना कहीं आपने कहता ना कि खेती में आपने बीज बोना शुरू कर दिया था,
1: पर मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ. हाँ, क्यों कर रही हूँ.
0: बिल्कुल.
1: I was just doing it.
0: हाँ,
1: पर अब मुझे जवाब मिला कि ओ, प्लानिंग तब से शुरू हो गई थी, जवाब कंप्लीट आज

0: मिला है और आज के जो क्वेश्चंस है इसका जवाब कब मिलेगा ये तो भगवान ही जानता है। सो आई एम रेडी टू वेट फॉर इट बिकॉज आई हैव लर्न्ड।
1: कई बार कुछ सरप्राइजेस कहते हैं
0: बहुत अच्छे होते हैं,
1: बिल्कुल कायना पर छोड़ देनी चाहिए, यूनिवर्स पर छोड़ देनी चाहिए।
0: दैट्स राइट सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई
1: डिड। कई बार हम बहुत लड़ाइयां करते हैं टाइम से, हमें लगता है कि हम फ्यूचर देख लें, हमें लगता है कि हम फ्यूचर को तैयार कर लें अभी से,
0: बट
1: हम खुद नहीं जानते कि फ्यूचर में होने क्या वाला है।
0: हम लोग ना ये इंस्टेंट कॉफी की जनरेशन बन गए हैं, हर चीज इंस्टेंट चाहिए।
1: हाँ।
0: तो मैंने सीखा है कि इंस्टेंट कुछ भी नहीं होता।
1: ट्रू
0: लेट इट सेवर, जैसे वो कहते हैं ना जब चाय बनाओ यू हैव टू लेट इट सीप
1: इन
0: अच्छी तरह। हाँ। यू नो ऐसे डिप डिप वाली में जो मजा नहीं है,
1: बिल्कुल उबलने दो, खुशबू उसमें डेवलप होने दो, तब जाके
0: लेट इट मैरिनेट।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: चाहे खाना पकाओ चाहे चाय बनाओ। सो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। एंड एक्चुअली रत्ना इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग क्योंकि मैंने तो सोचा था कि मैं बोलूंगी अभी लेट्स टॉक अबाउट लाइफ अगेन लाइक पार्ट टू, बट पिछले साल अगेन यू नो एक हादसा हुआ, मेरा हाथ टूट गया, रिस्ट टूट गई एंड आई वाज यू नो जैसे नहा नहीं सको, कंघी नहीं कर सको, कुछ भी नहीं, तो मेरी फैमिली ऑफकोर्स वॉज हेल्पिंग मी। तो I had all the time in the world now to rework this book and come up with the title and design the cover. तो उस time आजकल सोशल मीडिया से ना यू कॉन्स्टेंटली आर हियरिंग पीपल टॉकिंग अबाउट एफर्मेशंस और मंत्रास और मैनिफेस्टेशन एंड वगैरह वगैरह,
1: हजारों रील्स हैं, मतलब एक दुकान पूरी खुल गई है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और फिर मैं सोचती थी कि यार ये क्या क्या मैं बोलूंगी, दिन भर पूरा दिन ही बीत जाएगा यू नो ये मैनिफेस्टेशंस करना, ये एफर्मेशंस करना। एंड I was then reworking the title because my daughter said to me कि नहीं नहीं मम्मा आपको कुछ और सोचना चाहिए। And मुझे irritation भी हुई कि कैद के ये चली गई है अब सोचना मुझे पड़ेगा।
1: हाँ जी।
0: तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि तू इतना अपना दिमाग मत लड़ा, द आंसर्स विल कम टू यू। एंड श्योर इनफ द आंसर केम टू मी। ये सारी जो मिश्रण थी, जो एक कह गई, जो एफर्मेशन मैनिफेस्टेशंस की बातें मैं पढ़ती थी, यू नो ये सब मेरे दिमाग में, इट वाज लाइक वन बिग हैप्पी खिचड़ी। एंड देन वन डे इट केम टू मी एंड आई सेड हे आई एम I can and I will। और एक बार आप ये कहो, like let's say every morning you say it to yourself, you know शीशे में देख,
1: एक मंत्रा की तरह,
0: like a mantra, every morning look at yourself in the mirror, look at yourself in the eyes with all honesty and say I am, I can and I will। So it's a nice way to start your day, powerful way to start your day। It becomes an affirmation, it becomes a mantra, it becomes your go-to।
1: बिल्कुल।
0: तो इसकी मतलब मैं भी कभी कभी हैरान हो जाती हूँ ये कैसे हुआ यार।
1: नहीं आप बोलो तो इसमें ही एक तरह का आपको वो जोश नजर आता है, वो पावर नजर आता है कि आई एम आई कैन एंड आई विल, यानी मैं करके दिखाऊंगी।
0: हाँ, और आई एम तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। आई कैन तुम्हारी कैपेबिलिटी, तुम्हारी कॉन्फिडेंस उभर के आती है। एंड आई विल इज द डिसीजन दैट यू टेक कि ये मैं करके रहूंगी।
1: बिल्कुल। और एक तरह से मतलब आपने शुरू कर दिया तो पीछे पलट के अब नहीं देखना।
0: बिल्कुल,
1: तो
0: बिल्कुल।
1: एक तरह से देखा जाए। और मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि क्या ये हम कह सकते हैं कि लेट्स टॉक अबाउट लाइफ का ये पार्ट टू हो सकता है ये किताब?
0: इट इज अ पार्ट टू, इट इज डेफिनेटली अ पार्ट टू, जो शुरू हुआ था लाइक कॉन्वर्सेशंस। लेट मी अश्योर यू कि मैं कोई ज्ञानी बाबू वाली बातें नहीं लिख रही, मोटिवेशनल क्लीशेज नहीं लिख रही। I'm just having a conversation, गपशप।
1: हाँ,
0: समझ
1: जैसे
0: लो,
1: बहुत हल्की फुल्की सी बातें हैं,
0: but बहुत important बातें हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो make it comfortable, make it easy, क्योंकि कई बार लोग सेल्फ हेल्प बुक्स लिखते हैं ना, इतनी भारी और हैवी ड्यूटी होती है कि आप पढ़ते हो पूरा पेज और बोलते हो कि यार इसने बोला क्या है, लिखा
1: मतलब
0: क्या है, समझ में नहीं आई। एंड देन यू गॉट टू गो एंड री रीड द पेज। नाउ मेरे आर्टिकल्स काफी शॉर्ट एंड स्वीट हैं, टू द पॉइंट, क्योंकि सब लोग बहुत इंटेलिजेंट है आजकल, एवरीबडी नोज एवरीथिंग। All we need is reminders. तो जब आप वो छोटा सा आर्टिकल पढ़ते हो ना, it only nudges you, it reminds you, जब आप कहोगे कि यार एक्चुअली ये तो मुझे पता है, मैं भूल क्यों जाती हूँ, इसके ऊपर मुझे अमल और करना चाहिए। सो यस, सो
1: बिकॉज जैसे आप बता रहे हो मैं भी समझती हूँ, हालांकि मैं I'll be very honest, I'm not a very fond of reading, मैं बहुत ज़्यादा रीड नहीं कर सकती, क्योंकि कई सारे मैं समझती हूँ समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि वो बहुत एक दो तीन चार पेज मतलब बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता है। और मैं भी कई बार ऐसी बुक्स लेना पसंद करती हूँ

0: जिसमें वन पेज वन एंड हाफ पेज इंटरेस्टिंग हो पर कुछ ऐसा हो जो याद रहे.
1: बिल्कुल.
0: मतलब
1: तो वही ना, आजकल सब में इतना अटेंशन डेफिसिट है, सब एवरीथिंग इज फटाफट फटाफट, किसी को टाइम नहीं है, भागते जो रहे जिंदगी में, लोग भाग ही भाग रहे हैं, यू नो, बिटवीन देयर वर्क, बिटवीन देयर फैमिलीज, बिटवीन देयर सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड व्हाट नॉट. तो देयरफॉर दे आर शॉर्ट एंड स्वीट टू ग्रैब योर अटेंशन अ लिटिल बिट एंड देन यू कैन गेट ऑन विथ योर लाइफ, क्योंकि वो फिर जाके ना
0: और मैं ये भी पूछना चाहूंगी रूबी जी, आप यहाँ पर आई हैं मॉरिशस बुक लॉन्च के लिए, तो आपने मतलब आपको कई सारे आइडियाज आ रहे थे बुक लॉन्च के लिए, आप कहीं पर भी बुक लॉन्च कर सकते थे, पर आपने मॉरिशस को ही मतलब
1: क्यों चुना?
0: हाँ जी,
1: एक्चुअली मैं ये बुक लॉन्च अपने कंट्री, आई एम करंटली लिविंग इन दोहा कतार, तो मैंने सोचा था वे मैं वहाँ करूँगी, पर अनफॉर्चुनेटली एज यू नो द जियो पोलिटिकल रीजन्स, तो थोड़ा उसमें एक स्टॉल आ गया. एंड मैं अपने एक दोस्त से गप्पे मार रही थी मॉरिशस में, आई स्टिल हैव सम वेरी वेरी डियर फ्रेंड्स एंड कनेक्शंस, तो उसने बोला तू मॉरिशस आ जा, you know, you haven't been here in a long time, so why don't you come and do your launch here? तो जैसे you know, दोस्त यार बात करते कि हाँ actually मुझे आना चाहिए, चल मैं आती हूँ. And then one thing just led to another and the universe again worked in my favor and made everything happen. It was magical.
0: तो चलिए एक गीत का ब्रेक लेते हैं और अभी थोड़ी ही देर में हाजिर होते हैं उड़ान की कहानी और उनकी जो नई बुक लॉन्च होने वाली है उसके बारे में अभी थोड़ी ही देर में जानते हैं.

0: की कहानी,
1: उड़ान की कहानी।
0: जी हाँ, रेडियो मनोरंजन पर उड़ान की कहानी। और हम आपको ये भी बताते चले, इस वक्त इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। हमारे तकनीक पर हमारे साथ हैं शिव, और हमारे साथ प्रोडक्शन असिस्टेंट उरुसा, साथ ही साथ प्रोड्यूसर रितेश मोहाबिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितने भी दर्शक इस वक्त फेसबुक पर हमें फॉलो कर रहे हैं, जितने भी श्रोता इस वक्त रेडियो पर सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपके सपोर्ट के बिना इस कार्यक्रम को इस स्तर पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। और हम जब नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी चाहे मॉरिशस की हो या भारत की हो या दुनिया के किसी भी कोने की हो, बस कहते हैं ना कि नारी का सपोर्ट समाज को आगे ले जाने के लिए उनका जितना भी सहयोग है वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। और आज रूबी जी बस एक छोटे से, आप सोच सकते हैं कि उन्होंने अपनी अंदर की जो छुपी हुई कला है उसको बाहर निकाला और आज वो इस स्तर पर आ पहुंची हैं। और वो उन ऊपर वाले पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखती हैं और आज वे अपनी तीसरी बुक लॉन्च करने जा रही हैं और इसी सिलसिले में मॉरिशस आई हुई हैं। तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी रूबी जी, आपकी जो तीसरी किताब आप लॉन्च करने जा रही हैं उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए।
2: पहले मैं आपको बताऊँगी कि मेरी थर्ड बुक नहीं है।
0: ओके,
2: इट इज माई सेकेंड बुक।
0: हाँ जी, जिनको आप,
2: दिस माई सेकेंड बुक।
0: ओके,
2: और ये लेट्स टॉक अबाउट लाइफ वॉज द सेकेंड एडिशन।
0: अच्छा,
2: द फर्स्ट वन वॉज इन इंग्लिश एंड फ्रेंच एंड द सेकेंड वन इज इन इंग्लिश।
0: ओके,
2: सो दिस ऑफिशियली इज अ सेकेंड बुक। लेट्स टॉक, आई एम, आई कैन, आई विल।
0: एक्चुअली इसका आप
2: फर्स्ट एडिशन।
0: हाँ जी, हाँ जी,
2: हाँ। And but there will be a third one in the
0: of
2: future.
0: Ki
2: ek ye trilogy ban jaye.
0: Bilkul.
2: And mere book mein I've given an email address. Aur main chahti hu everyone who reads this book, sabke andar ek kahani rehti hai. To main chahti hu ki sab log likhe aur mere email ID pe apni kahaniyan bheje. Of their life story, their I am, I can story, what they managed to do in this life, what they created for themselves, wo wali kahaniyan mujhe bheje, because for the third book I want all of us to be involved. We will.
0: Mm-hmm.
2: We did it.
0: Mm-hmm.
2: You know, kyunki sabko mauka nahi milta ki kitab likhe ya उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता।
0: कई बार ऐसा भी होता है कि फाइनेंशियली वो भी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, या कई बार ऐसा भी होता है कि
2: जो भी
0: मौके नहीं मिले,
2: जो भी मौके नहीं मिले आप कह सकते हो। तो you know, so I want to give the mauka to everybody to be part of my dream team and say ji ha, so write to me and let's be all part of this third trilogy. I haven't titled it, I haven't even started work on it, but wo bhi jab right time aayega wo bhi ho jayega and will fall into place.
0: Bilkul,
2: I look forward to all of you writing to
0: bilkul,
2: me.
0: Bilkul, kehte na tathastu, jo sochte ho wo ho jaye.
2: Toh aur definitely roz subah bolti hu,
0: haan ji bilkul,
2: I will have my third book.
0: haan ji bilkul. Aur main zarur puchna chahungi Ruby ji, hamare jitne bhi darshak, jitni bhi mahilaen, jitne bhi log hame is waqt sun rahe hain, dekh rahe hain, unke liye आप क्या करना चाहेंगे? और आपके लिए महिला सशक्तिकरण, इट्स अ वेरी पावरफुल वर्ड, वुमेन एम्पावरमेंट, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? आपके लिए वुमेन एम्पावरमेंट क्या है?
2: वुमेन एम्पावरमेंट, फर्स्टली तो मैं कहूंगी बी यू, whether you're a woman or a man, child, anything, just learn to be you and अपनी एक आइडेंटिटी डेवलप करो।
0: बिल्कुल, ओरिजिनल रहो,
2: रियल रहो, ऑथेंटिक रहो,

0: you know, because you can do whatever you wish in this world.
1: True.
0: But shuruvat karo.
1: Mm-hmm.
0: Begin.
1: Mm-hmm.
0: Or if you have begun and stopped, then you can restart.
1: Mm-hmm.
0: You know, kyunki zindagi mein ghar grihasthi to bahut important you know, other careers are also very important. But apart from just being a working woman or doing something for your family, ek third section bhi hai, wo apne liye kuch karo. Do something purely for yourself, no matter what it is, drawing, writing, painting, singing, socializing, matlab jo tumhe khushi deta hai, what gives you true happiness. Chahe aap public figure na bano, it doesn't, everybody doesn't have to become famous, everybody doesn't have to be a celebrity. In your quiet way, you can be powerful.
1: Bilkul.
0: And always raise your voice for the right causes.
1: Mm-hmm.
0: Aapko Bhagwan ne ek voice di hai, ek soch di hai. So stand up for what you believe in. Mm-hmm. Daro mat.
1: Mm-hmm.
0: You know, meri mom always mujhe kehti thi, daro mat, be strong.
1: Mm-hmm.
0: Aur mujhe wo loves bilkul samajh nahi aata tha ke kyun mummy meko always bolti hai be strong. Shayad because main bahut rondu si cheez hoon.
1: Mm-hmm.
0: Har baat pe mere aansu nikal aate hain. You know, khushi mein, gami mein, I'm one rondu.
1: Mm-hmm.
0: To wo kehti thi, be strong. And after her passing, mujhe realize hua ke what she really, really meant. To aaj main sabko bolungi ke just be strong and go and do whatever you wish to, whatever your heart desires, because life is very short.
1: If
0: you don't do it, then when will you
1: do it? When will you do it? That's the right thing. And when today's generation says, YOLO, you only live once.
0: Yani
1: aapko zindagi pata nahi dobara milegi ya nahi milegi, isliye kehte na.
0: And I would add to add that YOLO, if you live once well, then you don't have to bother coming back and living again.
1: Bilkul sahi. Jo bhi karna, ek hi life mili hai, par jo kaho karo, dhang se karo, sachi niyat ke saath karo.
0: Bilkul.
1: Aur bilkul khushiyan baantte chalo, connect ho logon ke saath, aur bas yahi hai zindagi. Aur aaj ki udaan, bilkul humne bhari udaan. इस उड़ान में हमारे साथ रही रूबी जी, और रूबी जी की उड़ान को हमने बहुत ही करीबी से देखा, बहुत अच्छा लगा. और आने वाले दिनों में भी जैसे रूबी जी कह रही हैं कि जिंदगी पता नहीं कहाँ तक ले जाए, पर जो भी सपने हैं पूरे करने की कोशिश में वे लगी हुई हैं. हमारी ओर से उनको बहुत सारी बेस्ट विशेज इस ब्यूटिफुल इवेंट के लिए जो आज शाम को होने वाली है. और बेशक हम कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ जुड़े हुए रहें, और आपकी जो दी गई किताबें हैं उनको हम पढ़ें. हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम भी कुछ शेयर करें आपसे.
0: आई लुक फॉरवर्ड टू दैट. और मैं बोलूँगी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू रत्ना, थैंक यू मॉरिशस, क्योंकि मॉरिशस ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है. व्हेन आई केम टू मॉरिशस वेरी मेनी इयर्स अगो, जब मैं यहाँ रहती थी तब भी प्लेटफॉर्म दिया था, और आज भी मुझे प्लेटफॉर्म दे रहा है. एंड आई एम एवर सो ग्रेटफुल फॉर इट. थैंक यू टू द पीपल ऑफ मॉरिशस, थैंक यू टू दिस ब्यूटिफुल कंट्री. एंड आई'ड लव टू से कि बड़ी बड़ी बातों में कुछ नहीं पड़ा, इट्स समटाइम्स द स्मॉल थिंग्स दैट मैटर, एंड द स्मॉल थिंग्स आर लव, काइंडनेस, कंपैशन. अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आप अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करेंगे, यू विल रियली गो फार, यू विल टच पीपल्स लाइव्स, यू विल मेक एन इम्पैक्ट. और जीने के लिए एक पर्पस होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए. तो आप भी अपने लिए एक पर्पस ढूंढो, एक मिशन ढूंढो, और प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ते रहो.
1: बिल्कुल, प्यार बांटते चलो, जैसे गाया गया है किशोर कुमार की आवाज में. बस यही करना है. ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये जो छोटी छोटी
0: रह जाती है,
1: यही रह जाती है. जिंदगी खत्म हो जाती है, पर ये जो बातें हैं, यादें हैं, यही रह जाती है.
0: दिस इज अ लेगेसी,
1: आई नो,
0: एंड वी ऑल नीड टू लीव अ लिटिल बिट ऑफ आवरसेल्व्स बिहाइंड.
1: सो आज हमारे साथ से जुड़ी रूबी जी, ये सफ़र हसीन रहा, बहुत ही मज़ेदार रहा, और ऐसी ही उड़ान हम भरते हैं हर मंगलवार को. तो ज़रूर अगले सप्ताह फिर एक उड़ान भरेंगे, और फिर बिल्कुल आई एम, आई कैन, आई विल, और लेट्स टॉक अबाउट लाइफ.
0: एंड दीज बुक्स आर अवेलेबल एट बुक कॉर्ट एंड अ कपल ऑफ बुक स्टोर्स मॉरिशस में. ज़रूर गो चेक इट आउट. देयर इज अ बुक साइनिंग अभी सैटरडे को, संडे को मदर्स डे है, तो आके मुझे मिलो बगाटेल में बिटवीन 1 and 3.
1: तो चलिए इसी के साथ रूबी जी, आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस, एंड हमारे सभी लिसनर्स, सभी फॉलोअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी टेक्निकल टीम का बहुत बहुत धन्यवाद. इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार, शुभ दिन आपको.

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अदिति, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। आज सऊदी अरब में हज का दिन है, सभी हाजी आज मैदान अरफात में जमा होकर इबादतें और दुआएं कर रहे हैं। इनमें 1506 मॉरिशन हाजी भी शामिल हैं जो इस्लाम का पांचवा फर्ज अदा कर रहे हैं। यौम अरफात हज की अदायगी में सबसे अहम मरहला माना जाता है, जिसके मुकम्मल होने के बाद ही वहाँ गए हुए लोग हाजी कहलाए जाते हैं। अमेरिकी दूतावास ने राजीव गांधी साइंस सेंटर के सहयोग से पिछले हफ्ते अंतरिक्ष नवाचार और उभरती हुई नई टेक्नोलॉजियों पर आधारित फ्रीडम 250 नामक प्रोग्राम का आयोजन किया। कई गोष्ठियां लगाई गईं और चर्चाएं चली। इनके माध्यम से इस मुद्दे पर गौर किया गया कि किस प्रकार विज्ञान और टेक्नोलॉजी शिक्षा को रूपांतरित कर सकते हैं और नौजवानों को भविष्य के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में करियर के लिए तैयार कर सकते हैं। बालाक्लावा में कल नेशनल साइबर ड्रिल 2026 का आयोजन किया गया। ये पहल सर्ट एमयू की रही। दुनिया में बढ़ती आधुनिकता के साथ साथ उच्च स्तर के साइबर हमले भी पेश आने लगे हैं। इस तरह के खतरे के खिलाफ प्रतिरक्षा मजबूत करने के मकसद से सार्वजनिक संस्थाएं इस अभ्यास के लिए जुटी ताकि प्रतिक्रिया क्षमताएँ तेज की जा सके और समन्वय ज़्यादा मजबूत हो। इसके तहत देश के रणनीतिक डिजिटल बुनियादी ढांचों की बेहतर सुरक्षा के लिए आवश्यक कदमों पर गौर किया गया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बेल्जियम में एक स्कूल मिनी बस और एक ट्रेन के बीच हुई टक्कर में 4 लोगों की मौत हुई है। इनमें स्कूल के 2 बच्चे और 2 वयस्क शामिल हैं। हादसे के वक्त स्कूल बस छात्रों को एक विशेष एजुकेशनल टूर पर ले जा रही थी। उधर उत्तरी भारत के कई इलाकों में भयानक गर्मी की लहर चली है। कई शहरों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। आने वाले दिनों के लिए पारा 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो गया, दीजिए नमस्कार।
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

मंगलवार 26 मई आज की चर्चा इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमेशा की तरह हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ चुके हैं। आपको बता दें आज की चर्चा जो कार्यक्रम है इस समय आप लाइव इसे सुन पा रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर, साथ ही इसे आप देख पा रहे हैं रेडियो मॉरिशस के फेसबुक पेज पर और इसका सीधा प्रसारण हो रहा है MBC के चैनल 3 पर। आपको यह भी याद दिला दें ये जो प्रोग्राम है इसका रीब्रॉडकास्ट आप सुन पाएंगे आज ही दोपहर के 3 बजे रेडियो मनोरंजन पर, साथ ही इसे आप दोबारा देख पाएंगे आज ही सुपहर के 4 बजे से MBC के चैनल 3 पर। तो आइए आज की चर्चा इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं और आज जो आज की चर्चा कार्यक्रम है ये पॉलिटेक्निक्स के सौजन्य से चलाया जा रहा है। और शिक्षा की बात करें तो शिक्षा अपने आप में एक ऐसा फाउंडेशन है, एक ऐसी नींव है जो आने वाले कल के लिए हर एक स्टूडेंट्स को तैयार करती है। और हमारे जो स्टूडेंट्स है कहते हैं हमारे देश का भविष्य होते हैं और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हर तरीके से हर एक संस्था जो होती है, खासकर जो शिक्षा से जुड़ी होती है, वो अपना योगदान देती है। तो आज हमारे बीच टेक्निक्स मॉरिशस से उपस्थित है मिसेस संजना तोताराम जो एक्टिंग प्रोग्राम लीडर है, साथ ही बीट क्लस्टर। तो मिसेस संजना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।

0: धन्यवाद सरिता।
1: और हमारे साथ मिसेस आरती राय खेदनी जी भी जुड़ी है, जो स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिसर है। आपका भी स्वागत है आरती जी। और आज के इस प्रोग्राम में खासकर पॉलिटेक्निक्स के जो कोर्सेज है, नर्सिंग और इंजीनियरिंग पर हमारा जो है फोकस रहने वाला है। लेकिन उससे पहले जो है हम हमारे दोनों मेहमानों से थोड़ा सा जानना चाहेंगे पॉलिटेक्निक्स के बारे में, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन से कोर्सेज जो है आप लोग प्रोवाइड करते हैं, तो थोड़ा सा जानकारी इस पर दीजिए।
2: ज़रूर, धन्यवाद सुचिता जी आज हमें मौका देने के लिए टू कम एंड टॉक अबाउट पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस और कोर्सेज की जानकारी देने के लिए। तो सबसे पहले बात करें तो पॉलिटेक्निक्स का निर्माण 2017 में हुआ था। और हमने जब ये पॉलिटेक्निक स्टार्ट किया था उस समय फर्स्ट क्लस्टर जो बोलेंगे वो नर्सिंग था, और उसमें 72 स्टूडेंट्स से हमारा स्टार्ट हुआ था। और आज के डेट में काफ़ी वो संख्या बढ़ चुकी है। और इसके अलावा हमारे पास अभी कोर्सेज में की बात करें तो नर्सिंग के अलावा हमारे पास आईटी में कोर्सेज है, देन इंजीनियरिंग में है जिसके बारे में मेरी कलीग बात करने वाली है आगे जाकर, और वी आल्सो हैव टूरिज्म, बिजनेस एंड फाइनेंस, और उसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स जो कि सॉफ्ट स्किल्स और लैंग्वेज क्लस्टर से जाना जाता है। तो ऐसे हुआ। और फिर कैंपसेस की बात करें तो हम मॉरिशस में चारों तरफ हमारे कैंपसेस हैं, लाइक नर्सिंग और बेल्ट नॉर्मली पॉम्पलेमूस में उपस्थित है, और इबेन रिजवी में हमारे आईटी और फाइनेंस क्लस्टर्स हैं, एंड टूरिज्म बिकॉज हर एक स्पेशलाइज्ड कोर्सेज के लिए हर एक कैंपस डेडिकेटेड है। तो हाँ, और इसके अलावा रॉड्रिक्स में भी हम उपस्थित हैं।
1: ओके, संजना जी अगर थोड़ा सा इन जानकारी आप जोड़ना चाहे पॉलिटेक्निक्स के बारे में।
0: हाँ, तो पॉलिटेक्निक्स हमारी जो एक एजुकेशनल संस्था है
1: जी।
0: वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टर्शियरी एजुकेशन साइंस एंड रिसर्च के संरक्षण के नीचे है
1: जी।
0: और वो जो टीवेट एजुकेशन को प्रोत्साहित करता है, विल से बेटर हायर टीवेट, जो तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण क्षेत्र कहते हैं, इसको प्रोत्साहित करता है।
1: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि हमने हमारे श्रोता और दर्शकों के बताया कि आज जो पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस के जो कोर्सेज है, खासकर हमारा जो फोकस है वो नर्सिंग और इंजीनियरिंग पर रहेगा। और नर्सिंग की बात करें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र से ये जुड़ा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर है, और ये एक ऐसा सेक्टर है जो काफ़ी इन डिमांड है। बहुत से लोग जो है नर्सिंग से जुड़ते हैं इन द लॉन्ग रन अपने करियर को और भी बेहतर बनाने के लिए। और चलिए आपसे हम जानना चाहेंगे कि नर्सिंग आज मॉरिशस में एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर क्यों है।
2: आप देखो तो नर्सिंग आज के डेट में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। स्पेशली हम आए दिन न्यूज़ में सुनते हैं, ये चर्चाएं होती हैं कि मॉरिशस में एजिंग पॉपुलेशन का इशू है। इट इज़ नॉट एन इशू बट ये हर एक कंट्री एक फैक्ट है। तो ऑब्वियसली एजिंग पॉपुलेशन होगा तो उसका देखभाल करने के लिए वी विल नीड पीपल। तो इसमें नर्सिंग एक अहम भूमिका निभाती है। जो भी हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, हेल्थ केयर असिस्टेंट्स, नर्सिंग ऑफिसर्स, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। और इसके अलावा ना ही सिर्फ एजिंग पॉपुलेशन और मरीज़ों की देखभाल करने के लिए, बल्कि हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स और हेल्थ केयर असिस्टेंट्स प्राइवेट क्लिनिक्स और इवन पब्लिक हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी योगदान देते हैं।
1: जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और नर्सिंग की अगर हम बात करें तो नर्सेस जो है सिर्फ हॉस्पिटल, क्लिनिक, हेल्थ सेंटर्स तक सीमित नहीं है। आजकल नर्सेस की ज़रूरत तो लोग घर पर भी, जो लोग बीमार रहते हैं उनको भी जो है देखने के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ती है, खासकर जो ट्रेंड और प्रोफेशनल नर्सेज होते हैं। क्योंकि कभी कभार आपने कहा जैसे कि एजिंग पॉपुलेशन है, तो घर पर कोई वृद्ध है, कोई एल्डरली पर्सन है, कोई बीमार है, और अगर बाकी घर के लोग काम कर रहे हैं तो कोई चाहिए आपको ऐसे लोगों को देख रेख करने के लिए, तो ऐसे में नर्सिंग अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, तो अगर कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट जो है नर्सिंग के लिए जुड़ना चाहता है, तो क्या बेसिक क्राइटेरिया है और किस तरह के जो है उसका बेसिक एजुकेशन होना चाहिए, तो थोड़ा सा इस पर जानकारी

0: जानकारी दें हमें।
1: जरूर। तो बेसिकली एससी लेवल जो हम स्कूल सर्टिफिकेट बोलते हैं उसमें हम कोर्सेस हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो पहले मैं बात करना चाहूँगी हेल्थ केयर असिस्टिंग के बारे में। तो जिसमें नॉर्मल क्राइटेरिया होता है 3 credits एंड 2 pass या फिर 1 credit 5 pass ओके। और फिर यही हेल्थ केयर असिस्टेंट जब हम करियर पाथवे भी है एक हमारे पास, जैसे हेल्थ केयर असिस्टिंग अगर कंप्लीट करते हैं तो फिर वो छात्र डिप्लोमा इन नर्सिंग के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। तो लाइक दिस दे कैन प्रॉस्पर। और डिप्लोमा इन नर्सिंग की बात करें तो मिनिमम क्राइटेरिया 5 credits होना चाहिए, इंक्लूडिंग 1 science subject फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर मैथ्स भी चलेगा। और या और इसके अलावा इवन आउटसाइड लाइक कोई ऐसे छात्र है जो जिनके पास हेल्थ केयर असिस्टिंग लेवल 4 certificate ऑलरेडी है तो फिर वो डिप्लोमा इन नर्सिंग के लिए भी एनरोल कर सकते हैं।
0: ओके okay, अगर हम नर्सिंग के कोर्सेज की बात करें तो सिर्फ नर्सिंग एज अ कोर्स आप प्रोवाइड करती है या उसके अलग अलग ये है स्टेप्स है या अलग अलग मतलब कि जैसे आपने कहा कि हेल्थ केयर असिस्टेंट है तो इस तरह के किस कौन कौन से लेवल्स हैं

0: सकते हैं।
1: ओके, अगर आप नर्सिंग के कोर्सेज की बात करें तो सिर्फ नर्सिंग एज अ कोर्स आप प्रोवाइड करती है या उसके अलग अलग ये है स्टेप्स है या अलग अलग मतलब कि जैसे आपने कहा कि हेल्थ केयर असिस्टेंट है तो इस तरह के किस कौन कौन से लेवल्स है?
0: स्पेशलाइज कोर्सेज के लिए छात्रों को जनरल नर्सिंग करना पहले जरूरी है ताकि टू हैव लाइक नॉलेज इन ऑल द फील्ड एंड देन दे कैन प्रोसीड विद स्पेशलाइज्ड कोर्सेज।
1: तो जितने भी आपने कोर्सेज की बात की अगर आप एक एक करके बता पाए हमें कि उन कोर्सेज की ड्यूरेशन क्या है, उनका जो है कितने दिनों तक चलता है या कब तक चलता है, किस तरह से जो है ये प्रोसीजर होता है?
0: सो हेल्थ केयर असिस्टिंग की बात करें तो एक साल इसका ड्यूरेशन है।
1: ओके, मतलब कि शुरू करते हैं वो लोग हेल्थ केयर असिस्टिंग से?
0: या ओके, और फिर डिप्लोमा इन नर्सिंग का ड्यूरेशन होता है 3 साल।
1: ओके,
0: और बाकी सारे स्पेशलाइज कोर्सेज जैसे कार्डियक केयर या फिर मेंटल हेल्थ मिडवाइफरी ये सब 1 से 1.5 साल का ड्यूरेशन होता है।
1: ओके, उसके अलावा हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो जितने भी कोर्सेज आप नर्सिंग इस सेक्टर से रिलेटेड देती है तो इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद उनके करियर ऑप्शंस कैसे होते हैं, किस तरह से जो है उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है या फिर जो है जाकर उन्हें काम करने का मौका या इंटर्नशिप जैसे हम कह सकते हैं ना कि हर कोर्स के बाद लोगों को जाकर काम करने का एक अवसर दिया जाता है, एक मौका दिया जाता है ताकि अपने स्किल्स को वो एनहांस कर पाए, तो किस तरह से जो है आप लोग उन्हें ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं?
0: ओके, बात करें पॉलिटेक्निक्स में ओवरऑल हमारे सारे कोर्सेज, आई थिंक हमारे पहले वाले कार्यक्रम में भी हमारे ऑफिसर इंचार्ज और सिप्टी मैनेजर जब आए थे उन लोगों ने इस बात का जिक्र किया था कि हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और ख़ास करके अगर आप नर्सिंग की बात करें सुजिता जी, तो क्या है कि इसमें जब तक प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होगा बच्चे सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि थियोरी में आप सीख सकते हैं कि कैसे ब्लड निकालना है, ब्लड सैंपल्स लेना है, आप पढ़ सकते हो, लेकिन जब तक आप जाके लाइव पेशेंट्स पे ना निकालो तो वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो ये इस पे हम काफ़ी ध्यान देते हैं। तो जैसे कोई भी करिकुलम जब डेवलप होता है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ डिप्लोमा इन नर्सिंग की, तो डिप्लोमा इन नर्सिंग में ऐसे डिज़ाइन किया गया है वो करिकुलम कि छात्र हमारे कैंपस में रहते हैं 3 महीने, फिर 3 महीने प्लेसमेंट करते हैं। दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल आई एम गिविंग। और इसके अलावा हमारे पास स्किल्स लैब है, सिमुलेशन रूम्स, जो कि हूबहू एक हॉस्पिटल की तरह होता है, एक डेमो रूम आप बोलो तो जिसमें CPR कैसे करते हैं, ब्लड मॉनिटर लाइक ब्लड प्रेशर मॉनिटर कैसे करते हैं। और फिर जब वो प्लेसमेंट पे जाते हैं तो प्लेसमेंट सिर्फ एक हॉस्पिटल में नहीं, एक तो वो रीजनल हॉस्पिटल में जाते ही जाते हैं, उसके अलावा दे ऑल्सो गो इन लाइक स्पेशलाइज यूनिट्स, जैसे हम कैंसर हॉस्पिटल हो गया, आई हॉस्पिटल हो गया, ENT हो गया, या इवन ब्रॉन्सिक्वा सो फॉर मेंटल हेल्थ। तो बाय द टाइम दे कंप्लीट दे आर like they have done everything in general,
1: so, fully trained professional ban jate
0: exactly hai. और फिर इसके बाद अभी मैं एक आपको आंकड़ा देना चाहूँगी, जैसे अभी तक पॉलिटेक्निक्स ने लगभग 500 नर्सेस डिप्लोमा इन नर्सिंग और नेशनल डिप्लोमा इन नर्सिंग ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। तो ये सारे छात्र या तो किसी प्राइवेट क्लिनिक में, कुछ है जो पब्लिक हॉस्पिटल्स में, या कुछ ऐसे हैं जो बाहर भी जा चुके हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ ना ही सिर्फ मॉरिशस में है बट ये बाहर भी है।
1: Exactly.
0: और इसके अलावा उनके पास ऑप्शन होता है या तो वो बिकॉज पढ़ाई का कोई उम्र नहीं होता, जितना आप पढ़ाई करो, ये हम अक्सर जब काउंसलिंग सेशंस लेते हैं स्टूडेंट्स के साथ हम उनको अक्सर समझाते हैं कि जितना आप पढ़ाई करोगे उतना आपके करियर में वो ऐड होगा। तो ये कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ बच्चे जैसे वो जैसे जॉब करते हैं उसके बाद फिर आते हैं वापस कोई स्पेशलाइज कोर्स कर लेते हैं अपग्रेड करने के लिए, या तो ये है अपॉर्चुनिटी।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी इन सभी जानकारियों के लिए। अब हम आते हैं संजना जी की ओर, जो एक्टिंग प्रोग्राम लीडर है बिल्ट क्लस्टर, इज इट सो? चलिए हम आपसे जानना चाहेंगे पहले तो ये बिल्ट क्लस्टर क्या है, और आपने कहा कि आप इंजीनियरिंग पर जानकारी देना चाहेंगी, तो थोड़ा सा बताएं कि पॉलिटेक्निक्स इंजीनियरिंग के सेक्टर में किस तरह से अपना योगदान दे रहा है।
2: जी,

0: जी ये बिल्ट का मतलब है बिल्ट एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट क्लस्टर.
1: ओके
0: सो ये सब साथ में मिलाकर इंजीनियरिंग प्रीवियसली इट वाज नोन एज इंजीनियरिंग क्लस्टर बट देन वी मूव बिकॉज वी हैव निश प्रोग्राम्स व्हाट वी आर डेवलपिंग. सो बेल्ट क्लस्टर के अंतर्गत स्पेशलाइज्ड विशेषीकृत कार्यक्रम उपलब्ध है जैसे कि आर्किटेक्चर लॉजिस्टिक्स और इंजीनियरिंग के से जुड़ी क्षेत्र जैसे एविएशन इलेक्ट्रिक व्हीकल क्लाइमेट चेंज और साइट सर्वेइंग. ये हमारे प्रोग्राम्स है और भी है जो आने वाले हैं जैसे कि समुद्र क्षेत्र के मैरिटाइम सेक्टर में आने वाला है जो अभी डेवलप हो रहा है. और हमारे जो प्रोग्राम है वो सर्टिफिकेट लेवल पे है डिप्लोमा लेवल पे है और इसके बाद स्टूडेंट्स दे कैन प्रोग्रेस टू टॉप अप डिग्रीज एज वेल इन अदर यूनिवर्सिटीज और इवन लोकली और इंटरनेशनली.
1: ओके तो जैसे आपने कहा कि अगर हम बेल्ट क्लस्टर की बात करें ये इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर और लॉजिस्टिक्स से जुड़ा हुआ है और जिन भी कोर्सेज के आपने नाम दिए हम चाहेंगे थोड़ा थोड़ा डिटेल्स आप उन कोर्सेज के बारे में बताएं कि उनके जो है रिक्वायरमेंट्स क्या है एनरोल होने का तरीका क्या है और कौन से स्टूडेंट्स जो है एलिजिबल है इसके लिए.
0: जैसे कि मेरी कलीग आरती ने बताया हमारे एंट्री रिक्वायरमेंट्स मोस्टली दे आर फ्रॉम एससी स्टूडेंट्स एंड दे शुड बी हैविंग लाइक either free credits or 5 credits depending on the program that they are they wish to enroll in. Like if I'll take for the aviation it is like 5 credits in, and you have specific criteria for certain programs where you have mathematics and physics which are required as among the credits.
1: Okay.
0: एंड देन सर्टिफिकेट के लिए फ्री पासेस एट एससी लेवल और जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा के लिए एलिजिबल नहीं है वो लोग हमारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एनरोल होकर कंप्लीट करके 1 year ड्यूरेशन इज 1 year फिर वो लोग दे कैन एम्बार्क ऑन दी डिप्लोमा प्रोग्राम्स.
1: ओके यानी कि जो भी स्टूडेंट है अगर वो कुछ क्राइटेरिया की कमी है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है जिसमें वो एनरोल होकर अपने आप को जो है उस लेवल तक ला सकते हैं ताकि वो आगे के कोर्सेज में एनरोल
0: हो पाए. हाँ
1: जी कुछ और जानकारी देना चाहेंगे आप इन सभी कोर्सेज के बारे में जो आप हमें बता रहे हैं.
0: वैसे तो ये प्रोग्राम almost all the programs are through the FTES, the free tertiary education scheme. But then there are also programs which are not under FTES, like for the aviation one, it is not under FTES, it is payable.
1: Okay.
0: Yeah.
1: चलिए हम हमारे सभी श्रोता और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज जो पॉलिटेक्निक्स के द्वारा जो है ये कार्यक्रम उनके सौजन्य से चलाया जा रहा है और ख़ासकर आज हम नर्सिंग और इंजीनियरिंग इस कोर्स पर चर्चा कर रहे हैं. अगर आप भी इसके बारे में कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें बेशक 4028085 पर कॉल कर सकते हैं. अभी के लिए एक गाने के साथ प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं.

0: आज की चर्चा प्रोग्राम एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं और सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज शिक्षा से जुड़े इस विषय को लेकर हम आए हैं। पॉलिटेक्निक्स के अलग अलग कोर्सेज पर हम चर्चा कर रहे हैं और खासकर हमारा आज का जो फोकस है वो है इनके द्वारा दी जा रहे नर्सिंग और इंजीनियरिंग प्रोग्राम पर हमारा जो है फोकस है। और अब हमारा जो अगला सवाल है वो मिसेज संजना तुताराम जी आपसे है, खासकर इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जो है आप हमें ज़्यादा जानकारी दे रही है, किस तरह के कोर्सेज जो है पॉलिटेक्निक्स प्रोवाइड करता है। तो जितने भी कोर्सेज ये प्रोग्राम्स की आपने बात की है, तो ये प्रोग्राम मॉरिशस के इंडस्ट्री के नीड से, ज़रूरतों से किस तरह से कनेक्टेड है, किस तरह से लिंक्ड है? क्योंकि अगर एक बच्चा आपकी ओर आ रहा है, एक स्टूडेंट आ रहा है किसी कोर्स से रिलेटेड, तो ऑब्वियसली वो ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखेगा ना कि कल को वो इस कोर्स को पूरा करेगा तो उसके सामने किस तरह के जो है अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे, वो करियर में किस तरह से आगे जा सकता है।
1: हाँ, तो सुमिता जी, पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस का ढांचा जो मॉडल कहते हैं पूरी तरह से उद्योग संचालित, इंडस्ट्री ड्रिवन है। इस संस्था को इस उद्देश्य से आकृत किया गया है कि शिक्षा और लेबर मार्केट के बीच के जो स्किल्स गैप

0: है उसको ब्रिज किया जा सके
1: जी।
0: और हमारे जो इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं, जो उद्योग के भागीदार, वो लोग हमारे साथ वेरी क्लोजली काम करते हैं
1: जी।
0: जैसे कि प्रोग्राम डिज़ाइन से लेकर डिलीवरी और असेसमेंट तक
1: जी।
0: और वे लोग शामिल होते हैं
1: जी।
0: इसलिए पाठ्यक्रम सिर्फ वर्तमान के ज़रूरतें नहीं बल्कि मॉरिशस के आने वाली आर्थिक क्षेत्रों को भी टारगेट करता है
1: जी। और बहुत ही अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा कहीं ना कहीं फ्यूचर से रिलेटेड होता है, और ऐसे सेक्टर्स आजकल तो बहुत सारे नए नए सेक्टर्स भी जो है आ रहे हैं, नए नए फील्ड्स में भी जो है बच्चे जो है स्टूडेंट्स जो है इन सभी प्रोग्रामों के बारे में जानना चाहते हैं, जानकारी हासिल करना चाहते हैं। और आपने जिन जिन इंडस्ट्रीज़ की बात की, आजकल ये एक एमर्जिंग इंडस्ट्री है जहाँ पर हर कोई जो है अपनी किस्मत को आजमाना चाहता है। तो आपके जो लर्निंग पैटर्न्स वो ज्यादातर क्लासरूम बेस्ड होते हैं या प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, किस तरह से आप जो है इस पर कार्य करती हैं?
0: बहुत सही प्रश्न किया आपने स्मिता जी। यहाँ हमारे लर्निंग मॉडल जो है वो मेनली प्रैक्टिस बेस्ड है।
1: ओके
0: ओके, यानी लर्निंग बाय डूइंग।
1: ओके
0: ओके, सो स्टूडेंट्स को केवल क्लासरूम की थ्योरी नहीं लेकिन स्किल्स लैबोरेटरीज, जैसे कि मेरे कोलीग ने बोला, हमारे स्किल्स लैबोरेटरीज है, वर्कशॉप्स है, इंडस्ट्री प्लेसमेंट्स है, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स है, और बहुत सारे ऐसे माध्यम है, और वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन दिस फील्ड, बिकॉज ये इनके जरिए ये रियल प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है स्टूडेंट्स
1: जी। और ये आज के अभी के समय में बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपने भी कहा आरती जी, कि सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है, प्रैक्टिकल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप किताबों से जितना भी पढ़ ले, जब तक उसे प्रैक्टिकली आप जो है प्रयोग में नहीं लाएंगे तब तक आपको नहीं पता कि बच्चे ने कितना सीखा है या कितना जाना है। सो ये अपने आप में बहुत ही ज़रूरी होता है कि हैंड ऑन लर्निंग भी जो है ज़रूरी है। और ग्रेजुएट्स के लिए किस किस तरह के जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है आप प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एक बच्चे ने अगर एक स्टूडेंट ने अगर एक कोर्स पूरा कर लिया है तो उसके बाद क्या?
0: हाँ, पॉलिटेक्निक्स के ग्रेजुएट्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज अपने अपने क्षेत्रों में बहुत मजबूत है। लगभग 98% ग्रेजुएशन से छात्र ग्रेजुएशन से पहले ही एम्प्लॉयड हो जाते हैं।
1: ओके,
0: और ये एक मजबूत प्रमाणित परिणाम है। You can verify. This is 98% students. Arti will agree with me.
1: Definitely.
0: That before the graduation, students are already taken on board for employment.
1: Yeah, because ऐसा होता है कि जब वो last year में होते हैं तो उनको internship के लिए भेजा जाता है companies में, और उनके performance के level पर जो है company उन्हें already hire कर लेती है।
0: Exactly, exactly.
1: और ऐसे एक बच्चा, एक student जो है वो भी फिर अपने future को लेकर थोड़ा सा ये हो जाता है, relax हो जाता है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने graduation कर लिया, अब क्या, मतलब कि अब जाकर नौकरी ढूंढना या इंटर्नशिप करना, कहीं पार्ट टाइम जॉब करना, एक हेक्टिक होता है, एक फैमिली का प्रेशर भी होता है, पीयर प्रेशर होता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जैसे ही हमारे बच्चे ने एक कोर्स पूरा कर लिया है एटलीस्ट कहीं ना कहीं उसे एक अच्छे सेक्टर में, एक अच्छे कंपनी में नौकरी मिले। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि जब आप ये सारे कोर्सेज की बात करें इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो हम चाहेंगे एक एक कोर्सेज के नाम आप फिर से बताएं, ताकि जितने सुनने वाले और देखने वाले देख रहे हैं, ताकि वो इसको जो है अच्छे से ये कर पाए कि किस तरह के कोर्सेज आप है, उन कोर्सेज के नाम और ड्यूरेशन अगर पॉसिबल हो तो।
0: हाँ, तो इंजीनियरिंग में हमारे पास डिप्लोमाज है। डिप्लोमाज में यू हैव डिप्लोमा इन सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स एंड ग्लोबल सप्लाई चेन ऑपरेशंस, यू हैव डिप्लोमा इन पोर्ट ऑपरेशंस, यू हैव डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विद रेफरेंस टू द इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड vehicles.
1: Okay.
0: You have diploma in engineering technology with mainly focusing on the aircraft engine maintenance.
1: Okay.
0: And we have also the diploma in site surveying, diploma in climate change.
1: Okay.
0: And we have diploma in architectural design.
1: Okay.
0: We have diploma in interior architecture, which is done in collaboration, interior architecture and architectural studies.
1: Mm-hmm.
0: These two are done in collaboration with the UCSR University, which is in Malaysia.
1: Mm-hmm.
0: So we have not only programs which are PML awards.

0: But we have also programs which are done in collaboration with partner universities abroad.
1: Okay.
0: Yeah. Mm. And we have also certificate programs.
1: Okay.
0: Certificate in logistics, certificate in architecture, certificate in engineering technology. These are mainly the certificate programs that we offer for in engineering cluster. और एक बात है जो मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारे जब मैं बोल रही थी कि हमारे छात्र ग्रेजुएशन के पहले ही they are taken for jobs.
1: Yeah.
0: So what is the reason behind this? It is that हमारे प्रोग्राम जो है whichever program it is, especially the diploma programs, we don't wait till the last semester to send the students on internship.
1: Okay.
0: They are set, the programs are, the diplomas of a duration of 3 years, certificates are 1 year, Artine Batayata. And it all depends on which program we are talking about, but mostly the programs, diplomas are of a duration of 3 years. So at the end of each second semester, the students are sent on internship at Polytechnics Mauritius. It is ye anivarya hai. They are bound to go on internship and it is counted as a module which is evaluated and assessed.
1: Okay.
0: So the students are already having the feel of the job market, how it is. So year one, semester two, they go. Year two, semester four, they go for a duration of around 6 weeks. But then in third year, last semester, it is a longer duration, 6 months.
1: Okay.
0: And all these, we call them the internship, the work integrated learning. These are assessed and the students are evaluated and the employers, most of the time, I think Arti didn't mention, I want to put some light on that, that we have rapid interviews when employers come on campuses and they talk to students and they conduct rapid interviews. And they are given the opportunity, they select the students to come and do internship in their organizations.
1: Okay, thank you so much. ये सारी जानकारियों के लिए जी
2: सर्टिफिकेट के लिए मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी.
1: जी बिल्कुल.
2: जैसे आपने सुना होगा फाउंडेशन कोर्सेज बोलते हैं. तो जब जो छात्र अपने SCE में स्कूल सर्टिफिकेट में क्रेडिट नहीं हासिल कर पाते, हमारे टाइम लाइक अगर बात करें जब हम यूनिवर्सिटी कर रहे थे या जब हम SC और HSC कर रहे थे, ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे.
1: हमें पूरा साल जो है रिपीट करना
2: एग्जैक्टली. बट आज के डेट में हम इस चीज़ को लेके थैंकफुल होना चाहेंगे, लाइक गवर्नमेंट ने हमें ये मौका दिया कि हम उन छात्रों की सहायता कर सके. तो कुछ लोग जो SC में क्रेडिट नहीं हासिल कर पाते, उनको HSC करने नहीं दिया जाता, तब फिर वो फाउंडेशन करते हैं हमारे यहाँ, जो कि सर्टिफिकेट इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हो गया या इवन इन IT या सर्टिफिकेट इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशंस या सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, और उसके द्वारा फिर सर्टिफिकेट के बाद वो डिप्लोमा करते हैं.
1: जी मतलब कि ये बच्चों के लिए बहुत जो है ईजी हो जाता है, क्योंकि हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता है ना, सभी एक लेवल पर नहीं होते हैं.
2: Exactly.
1: ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं, कभी थोड़े से वीक हो जाते हैं, और अन्य प्रेशर्स भी होते हैं जो उनके एजुकेशन को अफेक्ट करता है. तो कहीं ना कहीं ये जो फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं उन्हें हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए, जहाँ पर उनका एक पूरा साल वेस्ट नहीं होता है और वो आगे के बारे में सोच सकते हैं. चलिए अब हम आएंगे आरती जी आप पर, खासकर आप नर्सिंग से रिलेटेड हमें जो है जानकारियाँ दे रही है. तो स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल एक्सपोजर को लेकर आपने काफ़ी जानकारी दी. तो जिन हेल्थ सेंटर्स, हेल्थ सेक्टर्स की आपने बात की, तो क्या सिर्फ गवर्नमेंट रिलेटेड सेंटर और इंस्टीट्यूशन में ही आपके बच्चे इंटर्नशिप के लिए जाते हैं या फिर जो है प्रैक्टिकल्स करने जाते हैं, या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट संस्थाओं से भी जो है आप लोग कनेक्टेड हैं?
2: नहीं, हम लोग प्राइवेट संस्थाओं से भी कनेक्टेड हैं, क्योंकि जैसे कि संचना ने बताया कि ये एक इंडस्ट्री ड्रिवन प्रोग्राम्स होते हैं हमारे. तो इंडस्ट्री ड्रिवन की बात करें तो हमारे पार्टनर्स प्राइवेट एसोसिएशन भी है, प्राइवेट क्लिनिक्स एसोसिएशन. तो हमारे पास शॉर्ट कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो वो शॉर्ट कोर्सेज हम इंडस्ट्री के डिमांड के हिसाब से बनाते हैं. तो अगर जैसे मैं नर्सिंग में बात करूँ, तो अगर इंडस्ट्री पार्टनर आता है, हमें बोलता है कि हमें ये प्रोग्राम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए चाहिए, तो हम वो भी डिज़ाइन करके फिर उसको प्रोवाइड करते हैं.

0: कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर की बात करें तो हर रोज कुछ ना कुछ नया जो है इन्वेंशन हो रहा है, काफी सारी नई बीमारियां भी आ जाती है जिनको टैकल करना होता है. तो ऐसे में अगर जो शिक्षा संस्थाएं ऐसे इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर काम करे तो उन्हें भी अपने एम्प्लॉयज को अपग्रेड करने का एक अलग मौका मिलता है, क्योंकि अब नई चीज आ गई है या नई कोई बीमारी आ गई तो उसके बारे में जानना भी जरूरी है ताकि आप प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइड कर पाए.
1: एग्जैक्टली. और इसके अलावा प्राइवेट क्लिनिक्स में एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, जैसे नर्सिंग में हमारे पास ना ही सिर्फ नर्सिंग, इवन इन अदर क्लस्टर्स आईटी टूरिज्म बेल्ट वी हैव इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो अफ्रीकन कंट्रीज से आते हैं या इवन इंडिया या दूसरे देशों से आते हैं. तो समटाइम्स दे लाइक टू डू प्लेसमेंट इन प्राइवेट, तो उनको प्राइवेट में भी भेजा जाता है. तो ये ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि एक टाइम वो प्राइवेट, क्योंकि सारे एक्सपर्टीज उनको सिर्फ एक हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा, तो दे गो इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स. तो ये भी एक चीज़ है जो हम फॉलो करते हैं.
0: ओके. और अभी हम बात करें मतलब कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग की या अपने आप को अपग्रेड करने के, बहुत सारे कॉर्पोरेट या प्राइवेट सेक्टर्स या गवर्नमेंट सेक्टर्स ही बात करें, वो चाहते हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ जो है नया नई चीज़ें जो है सीखते रहे और अपने आप को अपग्रेड करते रहे. तो ऐसे में आई कैन सी दैट पॉलीटेक्निक्स अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जहाँ पर आप सिर्फ नए स्टूडेंट्स को नहीं तैयार कर रहे हैं, जो ऑलरेडी प्लेस्ड है, वेल एस्टैब्लिश है अपने करियर में, अगर उनको भी अपग्रेड का एक मौका मिल मतलब कि अगर चाहते हैं वो, तो आप लोग ऐसे सारे कोर्सेस लेकर आ रहे हैं.
1: अपग्रेड की बात करें तो नर्सिंग में एक प्रोग्राम है जिसको हम लोग बोलते हैं CPD. जो भी हमारे नर्सेज होंगे उनको इसकी जानकारी होगी. तो इट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट. उनको क्रेडिट मिलता है. तो हमारे आप देखोगे लाइक पॉलिटेक्निक्स वी आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. तो फेसबुक पेज पे अक्सर हमारे एड्स देखोगे जिसमें हम ये जानकारी देते हैं कि CPD सेशन होने वाला है हर एक स्पेशलाइज टॉपिक को लेके. तो दिस इज़ वॉट यू आर जस्ट मैंशनिंग अपग्रेडिंग. तो ऐसे ही अपग्रेड कर सकते हैं नर्सेस. तो इसके लिए भी मैं वी वुड लाइक टू वेलकम दैम. अगर हमारे पास कोई भी CPD सेशंस हो रही हैं, दे कैन कम, दे कैन फॉलो द कोर्स.
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद. अगर हम मॉरिशस के बढ़ते हेल्थ केयर डिमांड की बात करें तो पॉलिटेक्निक्स इसमें क्या रोल प्ले करता है?
1: अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हमने अभी तक 500 स्टूडेंट्स जो है जो डिप्लोमा इन नर्सिंग और नेशनल डिप्लोमा इन नर्सिंग कर चुके हैं. दे आर रजिस्टर्ड नर्सेस. और ये सारे के सारे मेरे साथ तो ऐसा होता है, अगर मैं किसी प्राइवेट क्लिनिक पे जाऊँ तो मैं देखूँगी ओके ये मेरा स्टूडेंट लाइक हमारा स्टूडेंट वहाँ पे अभी जॉब कर रहा है. एंड वी रियली फील प्राउड अबाउट इट. और नॉट ओनली इन प्राइवेट, बट या सम ऑफ देम आर प्लेस्ड इन पब्लिक ऑल्सो और इवन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में. और जैसे कि हमने पहले बात किया अबाउट एजिंग पॉपुलेशन, तो आजकल आप देखोगे कि ओल्ड एज होम्स ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है एंड विथ वेरी 5-star फैसिलिटीज़, राइट? सो दे ऑल्सो नीड नर्सिंग ऑफिसर ओवर देयर. और ना ही नर्सिंग ऑफिसर, इवन हेल्थ केयर. तो इस तरीके से वो अपना योगदान देते हैं. और इसके अलावा अभी पॉलिटेक्निक्स में लगभग 400 बच्चे ऐसे हैं, दे आर फॉलोइंग द कोर्स एंड इवन डिप्लोमा इन हेल्थ केयर असिस्टिंग के छात्र ग्रेजुएट भी हो चुके हैं और वो भी इसी प्राइवेट क्लिनिक्स में या ऐसे होम्स में वेल प्लेस्ड हैं. और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी. अभी 2 दिन पहले मुझे मेरी बात हो रही थी हमारे एक्टिंग प्रोग्राम लीडर से और हमारा एक मीटिंग था जिसमें ही वॉज डिस्कसिंग अबाउट आवर स्टूडेंट्स. हमें एक फीडबैक मिला हमारे रीजनल लाइक नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर से कि ये जो स्टूडेंट्स होते हैं जब प्लेसमेंट में जाते हैं ऑब्वियसली वो सीखने जाते हैं, लेकिन कभी कभी आप ऐसा हम अक्सर सुनते हैं कि हॉस्पिटल्स में नर्सेज की कमी है, जहाँ कभी कभी बर्नआउट इश्यूज की वजह से, ओवर टाइम की वजह से. ये उनकी गलती नहीं है. वी आर ऑल ह्यूमंस, दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, राइट? तो उनको उस समय हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं, सहायता करते हैं, नॉट ओनली इन जस्ट ट्रांसफरिंग पेशेंट्स फ्रॉम वन वार्ड टू अनदर, बट इवन इन जनरल बेसिक नर्सिंग केयर. एंड इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि दे आर

0: लर्निंग एंड देन ऑब्वियसली उसके बाद फिर जब वो एक रजिस्टर्ड नर्स होंगे तो दे विल बी रियली गुड.
1: और ये कहीं ना कहीं इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल जहाँ पर हम प्रैक्टिकल्स की बात कर रहे हैं.
0: Exactly.
1: मतलब कि सिर्फ हम क्लासरूम में बैठकर पढ़ नहीं रहे हैं, मतलब जाकर उससे जो है हमें सीखने का जो है मौका भी मिल रहा है फेस टू फेस. क्योंकि कहीं ना कहीं नर्सिंग की अगर बात करें तो सिर्फ पेशेंट का केयर तक नहीं सीमित है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है ना, बातचीत का तरीका कैसा है, किस तरह से आप सामने वाले पेशेंट को समझ पा रहे. क्योंकि एक पेशेंट की बात करें तो ऑलरेडी वो फिजिकली स्ट्रेस तो है ही, बीमारी के चलते मेंटली भी वो उसे अफेक्ट करता है. तो ऐसे स्टूडेंट्स का, नर्सिंग स्टूडेंट्स का अपने आप को मेंटली और फिजिकली उस तरह से स्ट्रांग होना, इट प्लेज अ वेरी बिग रोल. एक अच्छा कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है. फिर चाहे हम नर्सिंग के सेक्टर की बात करें या इंजीनियरिंग के सेक्टर, आजकल तो कम्युनिकेशन तो एक बेसिक है जो रिलेशनशिप में भी बड़ा ही काम आता है. और आप चाहे किसी भी सेक्टर में क्यों ना चले जाए. चलिए हम अगला सवाल संजना जी से पूछना चाहेंगे. अगर हम इंजीनियरिंग के सेक्टर की बात करें तो क्या स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल करियर परस्यू करने का भी मौका मिलता है आपके द्वारा कोर्स जब वो कर रहे होते हैं या उसके बाद?
2: हाँ बिल्कुल. पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस के डिप्लोमा प्रोग्राम्स अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बेंचमार्क किया जाता है.
1: okay.
2: और जैसे स्टूडेंट्स को जो बैचलर टॉप अप और आगे की पढ़ाई विदेश में परस्यू कर सकती है.
1: okay.
2: और जो स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल स्किल्स है, इंडस्ट्री एक्सपोजर और आधुनिक प्रौद्योगिकियों की ट्रेनिंग की वजह से छात्र ग्लोबल जॉब मार्केट में आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं.
1: जी बिल्कुल. और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे जो है अपने करियर को जो है एक अलग दिशा देना चाहते हैं और कभी कभार उनको लगता है कि शायद जो कुछ वो ढूंढ रहे हैं उन्हें चार दीवारियों में रहकर नहीं मिलता है. तो वो लोग जो है चीज़ों को एक्सप्लोर करना, आजकल के बच्चे जो है मीडिया के चलते बहुत सारी चीज़ों से जो है मतलब फेस टू फेस होते हैं और वो सारी चीज़ें वो एक्सपीरियंस भी करना चाहते हैं. तो आई बिलीव इस तरह से वो बाहर जाने का मौका भी ढूंढते हैं. मतलब कि बेसिकली उन्होंने अपनी पढ़ाई यहाँ कर ली, कुछ साल काम यहाँ कर लिया, तो फिर अपने आप को अपने करियर को एक नई ऊंचाई देने के लिए दे लाइक टू गो आउटसाइड एंड एक्सप्लोर. तो इस तरह से पॉलिटेक्निक्स जो है आई बिलीव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और जहाँ पर आपने कहा कि आप जो है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से भी कोलैबोरेट करते हैं, मतलब कि सिर्फ जो है मॉरिशस के यूनिवर्सिटीज तक ही आप सीमित नहीं है, तो आप बताना चाहेंगे कौन कौन सी अन्य ऐसी ग्लोबल यूनिवर्सिटीज है जिसके साथ जो है पॉलिटेक्निक्स का कोलैबोरेशन है?
2: हर एक क्लस्टर का डिफरेंट यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन है. जैसे कि हमारे यहाँ इंजीनियरिंग में वी हैव UCSI यूनिवर्सिटी इन मलेशिया, वी हैव UNIKL यूनिवर्सिटी इन मलेशिया, एंड वी हैव ऑल्सो फॉर ITU यू हैव UNIMAI और शायद
0: किंगस्टन
2: यूनिवर्सिटी है. ऐसे और भी यूनिवर्सिटीज है जो डिफरेंट क्लस्टर्स के अंतर्गत आती है.
1: अगर हम टेक्निकल स्किल की बात करें और साथ में कम्युनिकेशन की हमने बात की और इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े, तो एम्प्लॉयर्स जो है आजकल कौन कौन से स्किल्स ढूंढते हैं और किस तरह से आप उन पर काम करती हैं?
2: बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने. आज के एम्प्लॉयर्स जो है वो सिर्फ टेक्निकल स्किल्स पर विशेष नहीं करते
1: हैं,
2: बल्कि स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट स्किल्स पर भी फोकस करती है.
1: जी.
2: और इसलिए हमारे स्टूडेंट्स को कम्युनिकेशन, टीम वर्क, अडाप्टेबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, लीडरशिप और प्रोफेशनलिज्म जैसे स्किल्स भी डेवलप कराना पड़ता है.
1: क्योंकि एक मतलब कि सभी का एक ओवरऑल होना बहुत ज़रूरी है ना, जैसे ऑलराउंडर कहते हैं ना. सिर्फ आप इंजीनियरिंग है और सिर्फ उसी सब्जेक्ट पर फोकस रहेंगे और बाकी अन्य विषयों पर आपको उतनी जानकारी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आप अपने करियर में पीछे रह जाएंगे. सो एक ओवरऑल ग्रोथ या फिर जैसे कहें ना कि हर एक चीज़ की थोड़ी थोड़ी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है. चलिए ऐसा करते हैं, एक और गाने के साथ हम प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं, फिर इस चर्चा को हम जारी रखेंगे.

0: इस कार्यक्रम से आप जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज पॉलिटेक्निक से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे साथ हैं, और ख़ासकर नर्सिंग और इंजीनियरिंग के जो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर वो हमें ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। तो हम आरती जी आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम नर्सिंग प्रोग्राम की बात करते हैं तो ये किस तरह से ट्रेडिशनल लर्निंग से अलग है?
1: ओके, इट्स अ गुड क्वेश्चन। वेल, पहले हमने इसके बारे में थोड़ा सा हिंट दिया था अबाउट प्रैक्टिकल एक्सपोजर, तो उस पर हम काफ़ी फोकस करते हैं प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे, तो जिससे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हॉस्पिटल्स में जाके सीख सके विथ द एग्जिस्टिंग नर्सिंग ऑफिसर्स, एंड ऑल थैंक्स टू देम फॉर देयर पेशेंस। एंड उसके अलावा अगर बात करें तो हमारे पास एक कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं पॉलीकास। ओके, सो पॉलीकास इज़ लाइक क्रिएटिविटी, पॉली इट्स फ्रॉम पॉलीटेक्निक्स, एंड कास इज क्रिएटिविटी, एक्शन एंड सर्विस। तो हर एक सेमेस्टर में स्टूडेंट्स को एक कंपोनेंट ये मस्ट है, उनको करना होता है। और नर्सिंग की बात करें तो हर साल हम ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, और इट इज़ स्टूडेंट

0: led. So we focus a lot on student-led activities. अगर आप कभी हमारी किसी भी activities को follow करो तो MC से लेके उसकी सारी management, it is all done by our students. तो ताकि वो train हो सके पहले से ही, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले communication skills के बारे में बात किया, जो कि बहुत ही important है. उनको फिर जब वो कुछ organize करते हैं खुद से तो काफ़ी ज़्यादा सहायता देता है फॉर फ्यूचर. तो और नर्सिंग एक ऐसा फील्ड है जो यू नो, जब हमारे यहाँ पे ओपन डेज होते हैं, अगर कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता तो हो सकता है वो आईटी चूज़ कर सके, हो सकता है वो टूरिज्म भी चूज़ कर सके, लेकिन नर्सिंग के बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में ऑलरेडी बैठ चुका है, आप उसको जल्दी चेंज नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम विद इन, दैट फीलिंग ऑफ सर्विंग पीपल.
1: इट इज़ अ नोबल.
0: एग्जैक्टली, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट सर्विस व्हाट आवर नर्सिंग पीपल एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स डू. तो जब वो आते हैं उनके अंदर वो ऑलरेडी पेशेंस, वो केयर टुवर्ड्स अदर्स इज देयर. तो जब वो हमारे यहाँ पे सर्विस करते हैं, जैसे ये ब्लड डोनेशन हो गया, या फिर इवन समटाइम्स वी ऑर्गेनाइज बीच क्लीन अप्स या फूड पैक डोनेशंस किसी जैसे क्योंकि मैं स्टूडेंट अफेयर्स आई एम टुवर्ड्स नर्सिंग, तो अक्सर हम ओल्ड एज होम में जाते हैं, वहाँ पे फूड डोनेशन करते हैं और स्टूडेंट्स जाके उन पेशेंट्स के साथ थोड़ा समय बिताते हैं, उनके साथ बात करते हैं. तो ये सारी चीज़ें उनको और भी ज़्यादा अच्छा एक नर्स बनाने में काम आता है, हेल्प करता है. और इसके अलावा जैसे कि हम थोड़ी देर पहले एक कंपोनेंट के बारे में संजना बात कर रही थी, इट इज़ अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, तो वो हम उसको पॉली कोर बोलते हैं, जो कि हमारे सॉफ्ट स्किल्स लेक्चरर्स उनको ट्रेन करते हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू लर्न थिंग्स इन बुक्स, लेकिन जब तक आप कम्युनिकेशन स्किल्स और हाउ टू वर्क इन टीम, क्योंकि मैं अक्सर एग्जांपल देती हूँ कि इन क्लास मे बी यू डोंट लाइक समबडी, तुम उस जगह को छोड़ के दूसरे जगह जाके बैठ जाओगे, बट वेन यू आर गोइंग इन अ वर्क एनवायरमेंट वहाँ पे आप क्या करोगे,
1: अडॉप्ट करना बहुत
0: जरूरी है, यू विल हैव टू अडॉप्ट. तो ये सारे स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स हम सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को.
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद. हम आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे संजना जी, आजकल एआई का बहुत ही बोलबाला है, तो फ्यूचर के लिए एआई और ऑटोमेशन के लिए किस तरह से जो है तैयारी करते हैं आप, और हमारे पास समय भी बहुत कम है. चलिए बताइए.
2: आपको कुछ इस पे लाइट शेड करूँगी. तो गवर्नमेंट के पॉलिसी के हिसाब से कृत्रिम बुद्धि, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, को एजुकेशन के हर स्तर पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है. और पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस में भी स्टूडेंट्स को एआई और डिजिटल टूल्स के यूज़ पर उनको यूज़ करने के लिए प्रोत्साहित किए जाते हैं, मगर जिम्मेदारी से.
1: ओके,
2: लाइक वी डोंट से वी डोंट आस्क आवर स्टूडेंट्स जस्ट टू कॉपी एंड पेस्ट. ओके, मगर दे हैव टू सीखना चाहिए उनको एआई कैसे, हाउ टू यूज अ टूल प्रॉपरली.
1: थैंक यू सो मच संजना जी. तो चलिए, हम धन्यवाद करेंगे मिसेस संजना तोताराम जी आपको, और मिसेस आरती राय खेदनी जी, आप दोनों पॉलिटेक्निक से जुड़ी, साथ ही पॉलिटेक्निक्स का भी धन्यवाद. जो कोर्सेज आप चला रहे हैं इस पर आपने इतनी सारी जानकारियाँ दी, उम्मीद करते हैं हमारे जितने श्रोता और दर्शक हमारे साथ जुड़े आज के इस प्रोग्राम से ज़रूर आप लाभ उठाएंगे. जाते जाते हम धन्यवाद देना चाहेंगे टेक्निक और हमारे जो है प्रोडक्शन टीम को, रितेश है, यूसुफ है, हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट बानो, आप सभी का धन्यवाद.
3: आइए सुनते हैं अभी के लिए संक्षिप्त समाचार आपके साथ अदिति. नमस्कार आपको.
4: नमस्कार मनीषमा, श्रोताओं को भी नमस्कार. राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बताया कि केंद्रीय बैंक द्वारा 83 बिलियन रुपए की छपाई को लेकर पूर्व वित्त मंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों के मामले में बैंक ऑफ मॉरिशस ने सेंट्रल सीआईडी में शिकायत दर्ज करवाई है. पीएम क्यूटी सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ने डॉक्टर गंगानंदन पदायाची के बयानों को निराधार और दुर्भावनापूर्व कहा. अमेरिकी दूतावास ने राजीव गांधी साइंस सेंटर के सहयोग से पिछले हफ्ते अंतरिक्ष नवाचार और उभरती हुई नई टेक्नोलॉजियों पर आधारित फ्रीडम 250 नामक प्रोग्राम का

0: आयोजन किया, कई गोष्ठियां लगाई गई और चर्चाएं चली। इनके माध्यम से इस मुद्दे पर गौर किया गया कि किस प्रकार विज्ञान और टेक्नोलॉजी शिक्षा को रूपांतरित कर सकते हैं और नौजवानों को भविष्य के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में करियर के लिए तैयार कर सकते हैं। आज सऊदी अरब में हज का दिन है। सभी हाजी आज मैदान अरफात में जमा होकर इबादतें और दुआएं कर रहे हैं। इनमें 1506 मर्शन हाजी भी शामिल हैं जो इस्लाम का पांचवा फर्ज अदा कर रहे हैं। यौम अरफात हज की अदायगी में सबसे अहम मरहला माना जाता है, जिसके मुकम्मल होने के बाद ही वहां गए हुए लोग हाजी कहलाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, उत्तरी भारत के कई इलाकों में भयानक गर्मी की लहर चली है। कई शहरों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों के लिए पारा 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुआ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: You're listening to RM3 Radio Man.

0: के सितारे।
1: तो जी हाँ दोस्तों, आपका प्यार भरा स्वागत, आदाब और प्यार भरा सलाम हमारे सभी सुनने वालों के नाम। आज का हमारा ये जो शो है वो है महफिलों के नाम, जज्बातों के नाम और उस आवाज़ के नाम जिसको हमने सिर्फ सुना नहीं बल्कि इस आवाज़ को हमने महसूस किया है। तो चलिए दोस्तों, मैं हूँ परी आपके साथ और सुन रहे हैं प्रोग्राम आपके सितारे। स्पेशल टू आवर्स का ये म्यूजिकल सफ़र किंग ऑफ गज़ल्स द वन एंड ओनली जगजीत सिंह के नाम। जी हाँ दोस्तों, जगजीत सिंह, उनकी अगर हम बात करें तो उनकी आवाज़ में एक सुकून था, एक तहजीब थी और एक खामोशी जो दिल के शोर को भी समझ लेती थी। तो चलिए बस एक चाय का कप लीजिए, सिट बैक रिलैक्स एंड इस दो घंटे के सफर को आप एंजॉय करें, क्योंकि लेकर आए हैं उनके कुछ एवरग्रीन हिट्स, उनके कुछ ब्यूटीफुल बॉलीवुड सॉन्ग्स एंड उनकी कुछ खूबसूरत गजलें आपके लिए। साथ रहेगा आपका और मेरा यानी कि परी का टिल 6 PM ऑन द वेव्स ऑफ RM3 रेडियो मनोरंजन। साथ ही यहाँ पर जगजीत सिंह के बहुत सारे फैंस हैं, लेकिन एक फैन ऐसे हैं जो हमेशा उनके गानों को सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सो दिस वन गोज आउट स्पेशली फॉर यू, मिस्टर गोविंद रघुनंदन वाकवा से हमारा साथ दे रहे हैं एंड स्पेशल दो घंटों का ये सफ़र इसे हम डेडिकेट कर रहे हैं आपके नाम। साथ ही फॉर ऑल द फैंस ऑफ जगजीत सिंह, कुछ खूबसूरत प्यारे गाने उनके गाए हुए उनकी मैजिकल वॉइस में पेश कर रहे हैं आपके नाम। So especially for you, Mr. Govind Raghunandan, for your beautiful wife, Veda, and for all Raghunandan family of Vakwa.

तो ये था एक लाइव परफॉर्मेंस जगजीत सिंह, उनकी मैजिकल जादुई आवाज़। जब भी उनकी आवाज़ को सुनते हैं तो उनकी आवाज़ में वो ठहराव है जो हमारे दिल के अंदर के शोर को बिल्कुल खामोश कर देता है। और ये जो लाइनें थी जहाँ पर उन्होंने कहा कि जग ने छीना मुझसे, मुझे जो भी लगा प्यारा, ये गाना बिल्कुल उनके लिए कुछ कई मायनों में सच हो गया। जहाँ पर उन्होंने अपने यंग बेटे को खो दिया एक एक्सीडेंट में, और उसी एक्सीडेंट के बाद उनकी वाइफ चित्रा सिंह, जो हमेशा उनके साथ गज़लें गाया करती थी, उन्होंने सिंगिंग को बिल्कुल छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अब कभी गाना नहीं गा पाऊँगी। और ये शायद उनकी ज़िंदगी का बहुत ही कठिन दौर था जहाँ पर उन्होंने एक जवान बेटे को खो दिया। लेकिन उसके बाद भी उस आवाज़ को हम आज भी नमन करते हैं, सल्यूट करते हैं, क्योंकि आवाज़ ही कुछ ऐसी है। अब इस बात के बाद जो गाना हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो गाना ऐसा है जो कई की आंखों को नम करने वाला है। एक गाना ऐसा जो आपको याद दिलाएगा उनकी, जो शायद आपके साथ नहीं लेकिन आपके दिल के बहुत करीब है। अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, एक गाना ऐसा जो हमेशा आँखों को उदास, दिल को उदास, आँखों को नम कर देता है। जगजीत सिंह की आवाज में गाया हुआ ये गाना फिल्म है दुश्मन। चलिए दोस्तों, लेकर आए हैं जगजीत सिंह के कुछ बहुत ही प्यारे गाने आपके लिए। प्रोग्राम है आपके सितारे, मैं हूं परी आपके साथ शाम के 6 बजे तक ऑन रेडियो मनोरंजन।

0: कहते हैं ना कि कुछ आवाजें वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बस और गहरी हो जाती है। जगजीत जी की आवाज भी कुछ ऐसी ही है, बारिश की तरह हर दफा नया एहसास छोड़ जाती है। और इस गाने को सुनने के बाद अगर आपकी आंखें नम हुई है या दिल में किसी की याद आई है, loads of love to everyone जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं on Radio Manoranjan। Special special प्यार हमारी प्यारी सी विजया जी आपके लिए, जो कहती हैं इस गाने को सुनने के बाद अपने पापा को बहुत याद कर रही हैं। Actually गाना ही ऐसा है जो हर किसी के दिल के कोने में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। सभी हमारे listeners जो हमारा साथ दे रहे हैं, आपके सितारे हमारा ये प्रोग्राम आज लेकर आए हैं जगजीत सिंह के गाए हुए कुछ एवरग्रीन सॉन्ग्स, एवरग्रीन गजल्स।
1: You're listening to RM3 Radio Man.

0: आपके सितारे।
1: तो चलिए दोस्तों 4:26 हो रहे हैं, साथ दे रहे हैं आप, तो अपने मैसेजेस डेडिकेशंस आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं 5250620052506200 पर। मैं यानी कि परी कर रही हूं आपका इंतजार, लेकर आई हूं प्रोग्राम आपके सितारे, जहां पर आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एक ऐसी आवाज जिसने हमें दिए हैं बहुत सारे प्यारे गाने और बहुत सारी खूबसूरत गजलें। तो यहाँ पर विजया जी हमारा साथ दे रही हैं और चिट्ठी ना कोई संदेश गाने को सुनने के बाद यहाँ पर आपने भी अपने दिल का हाल शेयर किया है, कह रही हैं कि इट हैज़ बीन 11 इयर्स जहाँ पर आपने अपने पापा को गुड बाय कहा और कहती हैं दैट फैमिली में आप लास्ट डॉटर थी और आपके पापा काफ़ी खुश थे जब आपकी शादी हुई, लेकिन आपकी जो बेटी हुई उन्हें वो नहीं देख पाए एंड आप अपने पापा विजय को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं एंड आई एम श्योर दैट अभी तो एंजल बनकर आपके बिल्कुल आसपास है। एंड विजया जी एक्चुअली सो ट्रू, ये गाना ही ऐसा है कि जिसे सुनने के बाद इफ़ यू आर मिसिंग समवन, इफ़ यू हैव लॉस्ट समवन, तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और एक्चुअली असल में हुआ भी ये, जहाँ पर हमने एक किस्सा शेयर किया, एक बात शेयर की जहाँ पर उन्होंने अपने जवान बेटे को गंवाया और वैसे वो काफ़ी स्ट्रांग रहे, लेकिन जब इस गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी, रिकॉर्डिंग के टाइम जगजीत सिंह खुद टूट गए और कई बार उनकी आंखें नम हो गई इस गाने को गाते वक्त। तो चलिए दोस्तों आज के लिए हम कुछ ऐसे ही प्यारे गाने, दिल को छूने वाले गाने आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप है फैन जगजीत सिंह के तो बस हमारे साथ जुड़ जाएं और रेडियो मनोरंजन साथ देने के लिए शुक्रिया। मैसेजेस डेडिकेशंस 5250620052506200 पर आपका इंतजार।

0: के सितारे।
1: क्या बात है जगजीत सिंह और उनकी बेटर हाफ चित्रा सिंह, उनकी आवाज में ये खूबसूरत सा गाना आप सभी के नाम। जी हाँ दोस्तों, लेकर आए हैं जगजीत सिंह स्पेशल आज आपके लिए हमारे प्रोग्राम आपके सितारे में। मैं हूँ परी आपके साथ शाम के 6 बजे तक। तो जी हाँ दोस्तों, जगजीत सिंह ने गज़लों को सिर्फ गानों तक ही नहीं बल्कि दिल के कोनों तक पहुंचा दिया और उनके गानों को सुनकर लगता है कि वो जो पुरानी डायरी के पन्ने होते हैं बस वो पलटने लगे हों। और जगजीत सिंह के गज़लों की बात करें तो उन्होंने गज़लों को सिर्फ महफिलों तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने गज़ल को आम लोगों के दिलों तक पहुंचाया। सिंपल लव्स, गहरी बातें और आवाज़ में इतनी नरमी कि दर्द भी खूबसूरत लगने लगे। तो आज के हमारे ये जो 2 घंटे हैं वो डेडिकेटेड है इसी आवाज़ के नाम, जहाँ पर इतनी सारी खूबसूरत यादें जुड़ी हुई हैं, बी इट हिज गज़ल्स या फिर उनके गाए हुए कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स। सब कुछ खास एंड स्पेशल आपके लिए। और एक बार फिर जगजीत सिंह, चित्रा सिंह की आवाज़ें और एक यादगार गाना उनके सभी फैंस और हमारे सभी लिसनर्स के नाम।

सबसे खूबसूरत सा गाना पिक्चराइज्ड ऑन फारूक शेख एंड दीप्ति नवर, साथ साथ फिल्म का ये गाना और आवाज़ है जगजीत सिंह और उनकी बेटर हाफ चित्रा सिंह की। जी हाँ दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम आपके सितारे ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। आज की महफिल सजी है जगजीत सिंह के नाम, एक ऐसी आवाज जो तन्हा रातों की सबसे खूबसूरत हमसफर बन जाती है। उनकी गजलों में इश्क भी था और इंतजार भी, जुदाई भी थी और जिंदगी को समझने की एक अजब सी सिंप्लिसिटी भी। जो अगला गाना है वो ऐसा गाना है जो आपको अपने बचपन की ओर ले जाता है, जहाँ पर जिंदगी इतनी सिंपल, इतनी सादी थी, इतनी सादगी थी, जो छोटी छोटी खुशियाँ हमें इतना खुश कर जाती थी, ना कोई स्ट्रेस हुआ कर...

करता था ना कोई चिंता ना कोई फिक्र बस बचपन और उसकी ये खास यादें सो एक खूबसूरत सा ये नेक्स्ट ट्रैक इसे हम आपके नाम डेडिकेट करना चाहते हैं सभी लिसनर्स जो हमारा साथ दे रहे हैं मैं हूं परी आपके साथ शाम के 6 बजे तक सुन रहे हैं आप RM3 रेडियो मनोरंजन

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: कहते हैं ना दोस्तों, मुस्कुराते हुए चेहरों के पीछे कई गम छुपे होते हैं। और बस आकाश कोई ऐसा पूछने वाला हो कि अगर आप इतना मुस्कुरा रही हैं, कौन सा गम है जिसे छुपा रहे हैं। जगजीत सिंह की आवाज में गाया हुआ ये गाना अर्थ फिल्म से लिया हुआ। आप सभी के नाम प्रकाशवती जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप कहती हैं कि जगजीत सिंह की आवाज़ और उनके गाए हुए हर एक गीत को मैं पसंद करती हूँ। सभी के लिए हमारा साथ दे रही हैं ऑल द वे फ्रॉम बेल्जियम। ये गाना डेडिकेट कर रहे हैं आपके नाम। एक्चुअली हमारा ये प्रोग्राम ही डेडिकेट कर रहे हैं आपके लिए। एंड इक्वली गोज आउट जो जितने भी फैंस हैं जगजीत सिंह।

तो इस लाजवाब गीत के बाद एक बार फिर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। आपके सितारे प्रोग्राम में लेकर आए हैं जगजीत सिंह के गाए हुए कुछ बहुत ही प्यारे ट्रैक्स। वैसे दोस्तों, जगजीत सिंह के गाने को सुनते वक्त एक प्रॉब्लम भी होती है। जो भी काम आप कर रहे हैं, वो काम करते करते आप बस बैठ जाते हैं, 5 मिनट के लिए सोचने लगते हैं कि काश जिंदगी इनकी गजलों की तरह खूबसूरत होती, काश कोई पूछने वाला भी होता कि इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या है गम जिसको छुपा रहे हो। होता है ना दोस्तों की जिंदगी में बस एक ऐसा हम सफ़र मिल जाए, या फिर कोई एक ऐसी आवाज़ जिन्हें सुनते सुनते हम जिंदगी के सारे गम भूल जाए। तो बस अभी के लिए कोशिश यही है कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम थोड़ा सा ठहराव लेकर आए हमारे इन प्यारे गीतों के साथ। तो मैं हूं परी आपके साथ और आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरिता जी का ट्रिबोन से हमारा साथ दे रही हैं, कहती हैं बीमार हूं फिर भी शो को एंजॉय कर रही हूं। जगजीत सिंह की गजलें बहुत ज़्यादा पसंद है और एक खूबसूरत सा जो अगला गीत है उसे हम आपके नाम चला रहे हैं। तो बस दोस्तों, हमारे इस म्यूजिकल कारवां में आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। और तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो इस गाने को सुनने के बाद, हमारी प्यारी सी विजया जी, आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई है ऐसा लग रहा है। तो ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। और गोविंद रघुनंदन जी, आप भी वाकवा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक गीत को सुन रही हैं, बिकॉज जब भी मौका मिलता है आप जगजीत सिंह के गानों को सुनना बहुत पसंद करते हैं। तो आज के लिए तो हमने पूरे 2 घंटे आपके नाम डेडिकेट किए हैं, यानी कि जितने भी फैंस हैं जगजीत सिंह के, ये स्पेशल 2 आवर्स आपके नाम, आपके सितारे प्रोग्राम डेडिकेटेड टू वन एंड ओनली जगजीत सिंह। तो चलिए सरिता जी, इस गीत को हम चला रहे हैं आपके नाम, साथ ही विजया जी साथ दे रहे हैं आप भी, ये गाना आपके लिए। प्रकाशपति जी, साथ देने के लिए शुक्रिया। दिस वन गोज आउट फॉर यू एंड गोज आउट फॉर मिस्टर गोविंद रघुनंदन ऑफ वाकवा।

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. सो रेडियो मनोरंजन अभी से लेकर शाम के 6 बजे तक जगजीत सिंह के गाए हुए कुछ पॉपुलर ट्रैक्स आपके लिए हम लेकर आए हैं. उनके बॉलीवुड सॉन्ग्स, उनकी कुछ प्यारे गजलें, आप सभी के नाम, उनके सभी फैंस जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बस आपके इस सफर को हम खास बनाना चाहते हैं. मैं हूं परी आपके साथ ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मनोरंजन.

0: के सितारे।
1: तो चलिए दोस्तों, शाम के 5:01 हो रहे हैं और आपका स्वागत करते हैं इस आवर में, जहां पर अभी से लेकर शाम के 6 तक चलने वाले हैं जगजीत सिंह के गाने, चाइल्डहुड मेमोरीज, पुराने दोस्त, बारिश, कैसेट प्लेयर्स और बैकग्राउंड में जगजीत सिंह की आवाज़। कुछ मेमोरीज जो हैं वो ट्रूली हैव अ साउंड ट्रैक, और वो साउंड ट्रैक बिल्कुल ऐसा ही होता होगा जैसे जगजीत सिंह के गाए हुए गीत। तो जी हाँ दोस्तों, आपके लिए कुछ ऐसी ही प्यारी प्यारी यादें हम यहाँ पर ताज़ा कर रहे हैं और आप भी हमारे जुड़े हुए हैं। कहते हैं ना कि वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, और वक्त आपको कितने सारे डिफरेंट चैप्टर्स दिखाता है। कभी लाइफ में एक दौर वो था जहां पर आपकी लाइफ में ना कोई फिक्र थी, ना कोई टेंशन, बस बचपन में वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी जो खुशी देकर जाता था। उसके बाद आती है जवानी, जहां पर आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कितना कुछ करने के लिए, जहां पर अपने देश को छोड़कर शायद आपको दूसरे देश भी जाना पड़ता है। और कभी कभार ऐसे गाने जब हम सुनते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो अटैचमेंट है, वो जो एक कनेक्शन है, अभी भी बना हुआ है। सो एक और खूबसूरत सा गीत जगजीत सिंह की आवाज में, उनका साथ देती हुई चित्रा सिंह, उनकी बेटर हाफ। ये गाना उनके सभी फैंस और हमारे सभी लिसनर्स के नाम, परी का साथ है ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन।

0: के सितारे।
1: और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जगजीत सिंह स्पेशल लेकर आए हैं आपके लिए प्रोग्राम आपके सितारे ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। मैं हूँ परी आपके साथ। दोस्तों आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5250620025250620 पर। कहते हैं ना, कुछ सिंगर्स पॉपुलैरिटी कमाते हैं तो कुछ दुआएं, और जगजीत सिंह उन रेयर सिंगर्स में से हैं जिन्होंने पॉपुलैरिटी और दुआएं दोनों ही अपने नाम की। उनकी आवाज़ में एक अजब सी सादगी है, और जैसे जैसे वक्त यहाँ पर आगे बढ़ते जा रहा है, लगता है कि बस इनकी आवाज़ से हमें प्यार होते जा रहा है। कुछ प्यारे गीतों के साथ हम बने हैं आपके हम सफ़र। और कहते हैं ना दोस्तों कि कभी कभी हम ठीक होते हैं, लेकिन जगजीत सिंह की आवाज़

आवाज को सुनकर थोड़े से इमोशनल हम हो ही जाते हैं, क्योंकि उनके हर एक गाने में इतना प्यार था, इतने इमोशंस थे। और जैसे ये जो गजलें हैं, ये जो गीत हैं, उसके जो लिरिक्स हैं, वो सीधा दिल को चीर जाते हैं। उनकी आवाज़ में एक अजब सी तहजीब है, जिसको दिल टूटने के बाद भी अगर कोई प्यार से मनाता हो, वो वाली फीलिंग आती है। और दोस्तों, यहाँ पर देखते ही देखते हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम ही बचा है। शाम के 6 बजे तक ये सफ़र यहाँ पर जारी रहने वाला है। गाने उनके बेहिसाब है, लेकिन यहाँ पर चुनकर लाए हैं कुछ एवरग्रीन हिट्स। साथ ही यहाँ पर विजया जी खुश हो गई हैं कोई फरियाद सुनकर, और साथ ही यहाँ पर जितने भी हमारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे हमने कहा, मैसेजेस डेडिकेशन हो रहे हैं ऑन 5250-6200-5250-6200। और प्रकाशवती जी कहती हैं कि बेल्जियम में बहुत ज़्यादा गर्मी है, इट्स ऑलरेडी 30 degrees, एंड कहते हैं दैट काम काज काफ़ी कुछ चल रहा है, लेकिन जगजीत सिंह चित्रा जी की आवाज़ें सुनकर मूड जो है वो ऑल सेट हो गया है। तो सिर्फ मॉरिशस में नहीं, मॉरिशस से बाहर ऑल द वे बेल्जियम में हमारे साथ कनेक्टेड हैं आप प्रकाशवती जी। सो यहाँ मॉरिशस से हम भी भेज रहे हैं आपके लिए बहुत सारा प्यार। और अगला गाना फॉर ऑल द फैंस ऑफ जगजीत सिंह।

0: बहुत खूबसूरत हैं आंखें तुम्हारी, बना दीजिए इनको किस्मत हमारी।
1: उसे और क्या चाहिए जिंदगी में, जिसे मिल गई है मोहब्बत तुम्हारी।
2: RM3 Radio.

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: तो जी हाँ, आशा भोसले और जगजीत सिंह की आवाज़ों में ये था एक खूबसूरत सा इंडी पॉप, बीट बॉलीवुड सॉन्ग्स, बीट गज़ल या फिर इंडी पॉप, हर जगह अपनी आवाज़ से उन्होंने हर एक गीत को महकाया। यहाँ पर ऐसे ही कुछ महकते हुए गीत जगजीत सिंह की आवाज़ में लेकर आए हैं आपके लिए। एक बार फिर जगजीत सिंह, चित्रा सिंह की आवाज़ें, एक खूबसूरत रोमांटिक गाना हमारे सभी दोस्तों के नाम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑन रेडियो मनोरंजन।

तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये जो सफ़र है अब धीरे धीरे अपने अंतिम दौर की तरफ बढ़ते जा रहा है और दो घंटों का ये सफ़र हमने डेडिकेट किया एक ऐसी आवाज़ के नाम जिसने हमें अनगिनत इमोशंस दिए। सो उम्मीद करते हैं जगजीत सिंह की ये महफिल को यहाँ पर आपने पसंद किया। मैं हूँ परी आपके साथ और सुन रहे हैं आप, सुन रहे थे प्रोग्राम आपके सितारे। सो बस जाते जाते यही कहेंगे कि जगजीत सिंह की आवाज़ बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे खामोश रातों में शबनम की जो बूंदें हैं वो बरस रही हो। और जो अगला गीत है, कहते हैं कि जिंदगी की एक हकीकत गम भी है। जगजीत सिंह की आवाज में डूबिए तो पता चले कि ये असलियत क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ऐसे ही कुछ प्यारे गाने आज हमने आपके लिए पेश किए और उम्मीद करते हैं हमारे इस म्यूजिकल सफर को आपने पसंद किया। थैंक यू सो मच विजया जी, आपका साथ यहाँ पर रहा और बहुत सारे हमारे लिसनर्स जो हमारे साथ जुड़े रहे। उम्मीद करते हैं दैट ऐसे ही खूबसूरत सफर में एक बार फिर आप हमारे हम सफर जरूर बनेंगे। अभी के लिए वक्त हो चला है कि परी आपसे ले अलविदा और मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए जुड़े रहे आप RM3 रेडियो मनोरंजन के साथ। थोड़ी ही देर में बढ़ने वाले हैं समाचार बुलेटिन की ओर, उसके बाद नई सोच प्रोग्राम और कुछ और प्यारे गीत होंगे आपके नाम ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मनोरंजन। मुझे यानी कि परे को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी जल्द। तब तक के लिए ये खूबसूरत सी गजल आप सभी के नाम इक्वली गोज आउट फॉर ऑल द फैंस ऑफ जगजीत सिंह।

शाम के ठीक 6 बज रहे हैं। नमस्कार, समकालीन समाचारों में आपका स्वागत है। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। बैंक ऑफ मॉरिशस द्वारा हाल में की रेट बढ़ाकर 4.45% करने का फैसला नियमित रूप से बढ़ रही इन्फ्लेशन के कारण लिया गया है। ये बात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में विपक्ष नेता के PNQ के जवाब में कही। राष्ट्रसभा में ही आज प्रधानमंत्री ने बताया कि केंद्रीय बैंक द्वारा 83 बिलियन रुपए की छपाई को लेकर पूर्व वित्त मंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों के मामले में बैंक ऑफ मॉरिशस ने सेंट्रल CID में एक शिकायत दर्ज करवाई है। पिछले शुक्रवार को मौदालबिया सरकारी पाठशाला में फुट एंड माउथ डिजीज के कुछ मामलों का पता चलने पर स्कूल बंद किया गया था। वहां जरूरी डिसइंफेक्शन कार्रवाई चलाई गई, जिसके बाद कल सुचारू रूप से कक्षाएं जारी रखी गई। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तरी भारत के कई इलाकों में भयानक गर्मी की लहर चली। आने वाले दिनों के लिए पारा 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज टी ब्रेक के बाद राष्ट्रीय सभा में अपने फैसले में सभा की स्पीकर शेरिन ओमेरोदी जीफा ने सदस्यों को संसदीय प्रश्न तैयार करते समय स्थायी आदेशों का कड़ाई से पालन करने की याद दिलाई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी प्रश्न में तर्क, राय, संकेत, प्रेस के उदाहरण या आपत्तिजनक व्यंग्यात्मक या काल्पनिक अभिव्यक्तियां नहीं होनी चाहिए। ये स्पष्टीकरण सांसद रोना बेरोंजे द्वारा श्रम मंत्री गजाउद्दीन से पूछे गए एक प्रश्न के बाद आया। आज राष्ट्रीय सभा में प्रधानमंत्री द्वारा द कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल पेश किया जा रहा है। इस विधेयक का उद्देश्य मॉरिशस गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति को एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन नियुक्त करने का अधिकार देना है, जो मौलिक अधिकारों के संरक्षण तथा लोकतंत्र और संस्थानों को मजबूत करने जैसे संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने और उन पर अपनी सिफारिशें देने के लिए उत्तरदायी होगा। बैंक ऑफ मॉरिशस द्वारा हाल में की रेट बढ़ाकर 4.75% करने का फैसला नियमित रूप से बढ़ रहे इन्फ्लेशन के कारण लिया गया है। ये बात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में विपक्ष नेता के PNQ के जवाब में कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूर्व सरकार द्वारा 2019 से 2024 के बीच बाजार में 97 बिलियन रुपए की रकम डाले जाने और MIC की फाइनेंसिंग के लिए 81 बिलियन रुपये खर्च किए जाने के कारण उस अवधि के दौरान मॉरिशन रुपए के भाव में 46% की गिरावट आई थी। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के प्रभावों को ध्यान में रखा गया है। प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था और परिवारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अत्यधिक इन्फ्लेशन से बचने के लिए सावधान रहने के महत्व पर बल दिया। राष्ट्रीय सभा में आज प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बताया कि केंद्रीय बैंक द्वारा 83 बिलियन रुपए की छपाई को लेकर पूर्व वित्त मंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों के मामले में बैंक ऑफ मॉरिशस ने सेंट्रल CID में शिकायत दर्ज करवाई है। PMQD सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ने डॉक्टर रंगनादन पदायाची के बयानों को निराधार और दुर्भावनापूर्ण कहा। वित्त मंत्रालय और GRA अवैध सट्टेबाजी से निपटने के लिए एक व्यापक ढांचे पर अध्ययन करने और सिफारिशें देने के लिए एक सलाहकार की सेवाएं लेने पर विचार कर रहे हैं। ये बात आज राष्ट्रीय सभा में प्रधानमंत्री के जवाब में सामने आई। डॉक्टर नवीन राम गुलाम सांसद रोशन जमन के उस सवाल का जवाब दे रहे थे जो बेटिंग टैक्स से संबंधित था। उन्होंने जानना चाहा था कि क्या टैक्स हटाने पर अवैध सट्टेबाजी और पब्लिक रेवेन्यू पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है या ऐसा करने का विचार है। जवाब में प्रधानमंत्री ने अन्य

बातों के अलावा घुड़दौड़ पर 2014 की पैरी रिपोर्ट का जिक्र किया और याद दिलाया कि सरकार ने घुड़दौड़ के मामले पर काम करने के लिए सन 2024 के आखिर से एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था, जिसके कारण जीआरए एक्ट में संशोधन किए गए। पीएमक्यूटी सत्र के दौरान ही डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने गंगा तालाब की पवित्रता

0: develop an appropriate guidelines to establish a comprehensive framework for the management, protection and preservation of the sanctity of Ganga Talao. The House will appreciate that Mauritius, being a secular state, access to a spiritual sanctuary cannot be restricted. At the same time, it is imperative that all visitors comply with established practices, that is, regarding behavior, dress code, etc., in order to preserve the sanctity as well as uphold the cultural and religious significance of such sites. In this respect, I'm informed by the Ministry of Tourism that it is collaborating with the Ministry of Arts and Culture on sensitization campaigns for both local and international visitors to these spiritual sites.
1: आज सऊदी अरब में हज का दिन है. सभी हाजी आज मैदान अरफात में जमा होकर इबादतें और दुआएं कर रहे हैं. इनमें 1506 मॉरिशियन हाजी भी शामिल हैं जो इस्लाम का पांचवा फर्ज अदा कर रहे हैं. यौम अरफात हज की अदायगी में सबसे अहम मरहला माना जाता है, जिसके मुकम्मल होने के बाद ही वहां गए हुए लोग हाजी कहलाए जाते हैं. ये विशेष रिपोर्ट सुमेरा अकबर अली के साथ.
2: सभी लबों पर तलबिया है, इन लफ्जों से मुराद है मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ. 50 डिग्री सेल्सियस की तपती गर्मी के बावजूद हजारों किलोमीटर तय करके आखिरकार ये ईमान वाले पहुंचे मैदानी अरफात में, वो भी रब्बे जलील के फरमान पर. 2 मिलियन से जायद हाजियों में हमारे 1506 हमवतन हैं जिन्होंने इस्लामी कैलेंडर के 9 जिलहिज्जा के दिन यहाँ हाजिरी दी है. इसे यौम अरफात कहा जाता है. यही हज का अहम तरीन मरहला है. कोहे अरफात पर ही खुदा के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपनी उम्मत के लिए आखिरी खुतबा दिया था. आज 1400 से ज्यादा सालों के बाद भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आए मुसलमान उनके सिखाए हुए रास्तों पर चलकर दीन इस्लाम के लिए अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं. सभी हाजियों ने इबादतों, दुआए मग़फ़िरत और शुक्र में एक एक लम्हा गुजारा. हुज्जाज के लिए ये पल हमेशा नायाब रहेंगे.
3: Depuis bien longtemps, on attend pour gagner sa invitation là, mais Allah il accepte nos doigts et nous passer un beau moment ici sans Arafat, Peinahaj.
4: Alhamdulillah, tout le monde rite passe bien et nous avons encore un rite qui nous restait pour faire et nous avons l'espoir qu'Allah accepte nos Hajj.
5: Il y a une place que Allah subhanahu wa ta'ala lui fait son rahmat, son bénédiction manifestée le ban Hajj.
6: C'est un feeling extraordinaire qui surmonte toutes difficultés qu'il a et pas capable d'écrire ce feeling qu'il a dans le cœur là quand il fait Hajj pour Allah et pour son love only pour Zisli et nous reçoit sa salam, sa blessing.
7: Ça, c'est un grand sens qui nous gagne. Allah fin appel nous non, malgré tout ben difficulté, tout ben salaire qui est non ici, c'est un autre feeling, nous pas senti non rien. Alhamdulillah, Allah fait nous donne nous encore plus courage, donne encore les autres dimoun l'occasion pour venir faire Hajj, inshallah, et Allah fait nous Hajj kaboul, inshallah.
8: Merci bien nous Arafat, pour dimoun tout doux qu'il est là pour dire.
9: Moi, mon maman et mon Michel nous aussi arrive là, et aujourd'hui nous bien émus qui nous peut rester. Témoin ça joue là.
10: C'est l'aboutissement d'un sacrifice pour Bandimoun, d'une la vie, d'attente. Et nous devons, au niveau du ICC, pour faire tout ce qui est possible pour qu'en termes de logistique, les pèlerins passent un jour dans les meilleures conditions possibles.
11: Aujourd'hui, nous là, nous devons faire que tout déroule dans l'ordre, de satisfaction des pèlerins mauriciens.
2: अब गुरूब आफ्ताब के बाद सभी हुज्जाज मुज़दलिफ़ा शहर जा रहे हैं. रईस ज़ादे हों या मुलाजमीन हों, सब एक दूसरे के बगल में आज खुले आसमान में वहाँ शब गुजारेंगे. सबको हज मुबारक हो.
1: थोड़ी देर पहले हम इस पर चर्चा कर रहे थे. बैंक ऑफ मॉरिशस द्वारा हाल में की रेट बढ़ाकर 4.75% करने का फैसला नियमित रूप से बढ़ रहे इन्फ्लेशन के कारण लिया गया है. ये बात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में विपक्ष नेता की PNQ के जवाब में कही. माधवी जगन्नाथ, यशना मिश्रा.
12: In regard to the death

0: decision taken by the Monetary Policy Committee.
1: हाल में बैंक ऑफ मॉरिशस द्वारा रेपो रेट में की गई बढ़ोतरी इस मंगलवार राष्ट्रसभा में प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का केंद्र रही। प्रधानमंत्री ने जवाब में कहा कि यह फैसला 2019 से 2024 के बीच पूर्व शासन द्वारा अर्थव्यवस्था में कई बिलियन रुपए डाले जाने से उत्पन्न लगातार महंगाई तथा मध्य पूर्व संघर्ष के प्रभावों के कारण लिया गया।
0: The bank transferred a total amount of 97 billion rupees. To the government during the period 2019.
1: बैंक ने कुल 97 बिलियन रुपए 2019 से 2024 के बीच सरकार को ट्रांसफर किया। इसके अतिरिक्त 3.5 बिलियन रुपए नेशनल प्रॉपर्टी फंड को 2019 से पहले दिए गए। इसके साथ ही मॉरिशस इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन को फाइनेंस करने के लिए 81 बिलियन रुपए प्रिंट किया गया। इन सभी से लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ी, जिससे इन्फ्लेशन दर बहुत ज्यादा बढ़ गया और रुपए का मोल कम हुआ। 2014 से 2024 के बीच US डॉलर की तुलना में रुपए का मोल 46% से कम हुआ।
0: Depreciated by 46% against the US dollars. 0.5 billion remittances.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इन्फ्लेशन दर, अंतर्राष्ट्रीय ईंधन कीमतों, फ्रेट और परिवहन कीमतों में बढ़ोतरी और एक्सचेंज रेट के दबाव को ध्यान में रखा है। दामों में स्थिरता बनाए रखने और इन्फ्लेशन को और ज्यादा बढ़ने से रोकने के वास्ते ये जरूरी था कि रेट को 25 बेसिक अंकों से बढ़ाने का निर्णय हाल की भू राजनीतिक स्थिति का मैक्रो इकोनॉमी पर प्रभाव को ध्यान में रखकर लिया गया। जहां तक की रेट में बढ़ोतरी का परिवारों पर प्रभाव है, प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उनकी वित्तीय स्थिति पर निर्भर है।
0: For a moment that a household has a loan of say 500,000 rupees.
1: मान लें कि एक घर में 5 लाख का कर्ज है। 25 बेसिक अंकों की बढ़ोतरी बैंक के सूद दर पर दिखेगा। 1,250 रुपए पर आनम की बढ़ोतरी। कर्जदार व्यवसायों के लिए भी यही रेट है।
0: In the amount of interest rate repayments, the same increase would be applicable to corporates who have loans.
1: अर्थव्यवस्था पर रेपो रेट बढ़ाने के प्रभाव के बारे में डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने स्पष्ट किया कि इससे मुद्रा स्फीति के दबाव को कम करने, मॉरिशस की मुद्रा रुपए को समर्थित करने और अनियंत्रित महंगाई को रोकने में मदद मिलेगी। हमें अर्थनीति पर इन्फ्लेशन के प्रभावों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अर्जेंटीना, जिम्बाब्वे आदि में इन्फ्लेशन रेट 1000% प्रति मास से ज्यादा दर्ज हो चुका है। जोलेजों ने कॉन्ट्रीब्यूशन सोशियल जेनेरालिजे को लेकर अतिरिक्त प्रश्न पूछे।
0: विल द हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर रिकंसीडर द फेज विथड्रॉवल ऑफ सीएसजी लिंक अलाउंसेस एंड इंस्टेड रीइंस्टेट और रिकैलिब्रेट These supports, particularly for those households not on the social register of Mauritius.
2: If I could laugh, I would laugh because they introduced. Yes. You introduced it. Now you want us to take it out immediately. But why did you introduce it in the first place? And allow things to go back to what it was before? No. The answer is no.
3: How much is inflation estimated to fall now? With this increase in repo rate, if we can have the estimate to see if that is going to have any impact at all on the economy.
0: What is more important, Madam Speaker, is not the inflation rate, the expectation of inflation rate. That is what drives an economy, what people expect the inflation rate to be. We have to wait and see.
4: राष्ट्रसभा में आज प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बताया कि केंद्रीय बैंक द्वारा 83 बिलियन रुपए की छपाई को लेकर पूर्व वित्त मंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों के मामले में बैंक ऑफ मॉरिशस ने सेंट्रल सीआईडी में शिकायत दर्ज करवाई है। मीगान पुना पनाकेन करुणा लालू।
5: यस ऑनरेबल इटवारिया।
6: सांसद इटवारिया के प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दिसंबर 2014 में सार्वजनिक ऋण देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 58.8% था, जबकि पूर्व सरकार के कार्यकाल में ये दिसंबर 2024 तक बढ़कर 87.7% तक पहुंच गया, यानी इसमें 370 बिलियन रुपए की वृद्धि हुई। बजट 2025-2026 के अनुमानों के अनुसार जून के अंत तक सार्वजनिक ऋण 679.7 बिलियन रुपए तक

0: पहुंच सकता है। हालांकि डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि कई कारणों से ये अनुमान से अधिक हो सकता है। इनमें शागुस आर्किपेलागो संधि के अनुमोदन में देरी, मध्य पूर्व का संघर्ष तथा सरकारी आय में कमी जैसे कारण शामिल हैं। सरकार बजट घाटे को कम करने तथा सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण को अधिक टिकाऊ और स्थिर मार्ग पर लाने के लिए ठोस राजकोषीय सुधारों और बेहतर सुशासन के माध्यम से दृढ़तापूर्वक प्रतिबद्ध हैं। इसी संदर्भ में जैसा कि सरकारी कार्यक्रम और 2025-2026 के बजट भाषण में घोषित किया गया था, एक फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट प्रस्तुत किया जाएगा जिसका उद्देश्य नियम आधारित मजबूत राजकोषीय ढांचा स्थापित करना, सार्वजनिक वित्त में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना तथा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन की सुदृढ़ प्रथाओं को और मजबूत करना है ताकि पूर्ववर्ती सरकार के समय पाई गई संकट स्थिति को रोका जा सके। एक अतिरिक्त प्रश्न के जवाब में प्रधानमंत्री ने आईएमएफ के साथ हालिया परामर्श बैठकों का भी उल्लेख किया। आईएमएफ ने आर्टिकल 4 रिपोर्ट आम की है, वे हमारे द्वारा उठाए गए कदमों से बहुत संतुष्ट हैं ताकि कर्ज को बढ़ने से रोका जा सके। सांसद रामदास के प्रश्न पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार के दौरान बैंका मॉरिशस ने कुल 181.5 बिलियन रुपये की मुद्रा छापी थी। इसका एक हिस्सा सरकार को दिया गया जबकि दूसरा एमआईसी को वित्त पोषित करने में इस्तेमाल किया गया। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने यह भी कहा कि पूर्व वित्त मंत्री द्वारा बैंक ऑफ मॉरिशस पर 83 बिलियन रुपए छापने के आरोप झूठे और दुर्भावनापूर्ण हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय बैंक ने इन आरोपों का खंडन करने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें एक सार्वजनिक नोटिस भी शामिल हैं। मुझे बैंक ऑफ मॉरिशस द्वारा ये भी अवगत कराया गया कि अपनी कानूनी टीम से परामर्श करने के बाद उसने 16 मई 2026 को पूर्व वित्त मंत्री द्वारा प्रसारित इस अत्यंत गंभीर झूठी और दुर्भावनापूर्ण जानकारी के संबंध में सेंट्रल सीआईडी के समक्ष एक बयान दर्ज कराया है। एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में हमारी प्रतिष्ठा एक महत्वपूर्ण संपत्ति है जो निवेशकों के विश्वास को मजबूत करती है और आर्थिक स्थिरता को बनाए रखती है। केवल राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से पूर्व वित्त मंत्री द्वारा जनता के मन में संदेह उत्पन्न करना अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है। हम किसी भी निराधार आरोप या भ्रामक जानकारी को सहन नहीं कर सकते और न ही करेंगे जो हमारी संस्थाओं और वित्तीय प्रणाली में विश्वास को कमजोर कर सकती है। सिल्वर बैंक के संबंध में प्रधानमंत्री ने बताया कि बैंक ऑफ मॉरिशस ने बैंक को लाइसेंस दिए जाने की प्रक्रिया की जांच के लिए पहले ही एक स्वतंत्र फर्म को फोरेंसिक ऑडिट करने का जिम्मा सौंप दिया है। साथ ही बैंक ऑफ मॉरिशस ने अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सहायता भी ली है।
1: पिछले शुक्रवार को मौदालबिया सरकारी पाठशाला में फुट एंड माउथ डिजीज के कुछ मामलों का पता चलने पर स्कूल बंद किया गया था। वहां जरूरी डिसइंफेक्शन कार्यवाही चलाई गई जिसके बाद कल वहां सुचारू रूप से कक्षाएं जारी रखी गईं। एक ऐसा महाद्वीप जो पूरी तरह से बदलाव की दौर से गुजर रहा है और एकता, प्रगति तथा सहयोग की ओर अग्रसर है। 1963 में की गई अफ्रीकन यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की याद में कल 25 मई को अफ्रीका दिवस मनाया गया। इस संदर्भ में स्टेट हाउस में एक औपचारिक समारोह लगाया गया। ये मौका रहा अफ्रीकी महाद्वीप के अंतर्गत सॉलिडारिटी और सहयोग बढ़ाने की मांग सामने रखने का। बालाक्लावा में कल नेशनल साइबर ड्रिल 2026 का आयोजन किया गया। ये पहल सर्ट एमयू की रही। दुनिया में बढ़ती आधुनिकता के साथ साथ उच्च स्तर के साइबर हमले भी पेश आने लगे हैं। इस तरह के खतरों के खिलाफ प्रतिरक्षा मजबूत करने के मकसद से सार्वजनिक संस्थाएं इस अभ्यास के लिए जुटी ताकि प्रतिक्रिया क्षमताएं तेज की जा सके और समन्वय ज़्यादा मजबूत हो। इसके तहत देश के रणनीतिक डिजिटल बुनियादी ढांचों की बेहतर सुरक्षा के लिए आवश्यक कदमों पर गौर किया।

0: आ गया। अमेरिकी दूतावास ने राजीव गांधी साइंस सेंटर के सहयोग से पिछले हफ्ते अंतरिक्ष नवाचार और उभरती हुई नई टेक्नोलॉजियों पर आधारित फ्रीडम 2050 नामक प्रोग्राम का आयोजन किया। कई गतिविधियां लगाई गईं और चर्चाएं चली। इसके माध्यम से इस मुद्दे पर गौर किया गया कि किस प्रकार विज्ञान और टेक्नोलॉजी शिक्षा को रूपांतरित कर सकते हैं और नौजवानों को भविष्य के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में करियर के लिए तैयार कर सकते हैं। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, जहां कल एक बयान में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया था कि अमेरिका और ईरान के बीच एक ठोस शांति संधि तय होने की उम्मीद है, वहीं कल ही 40 दिनों के युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए अमेरिका ने दक्षिणी ईरान पर नए हमले किए। उधर बेल्जियम में एक स्कूल मिनी बस और एक ट्रेन के बीच हुई टक्कर में 4 लोगों की मौत हुई, जबकि उत्तरी भारत के कई इलाकों में भयानक गर्मी की लहर चली है। कई शहरों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। विस्तार विधि मासी बोरन के साथ।
1: सोमवार को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सैन्य तनाव उस समय अचानक बढ़ गया जब अमेरिका ने ईरानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के 2 जहाजों को डुबो दिया, जिनके बारे में उसका कहना था कि वे बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही थी। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमरीकी विमानों पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागी, जिसके बाद अमरीका ने बंदर अब्बास के पास मिसाइल लॉन्चर्स पर जवाबी हमले किए। इजरायली वायुसेना ने सोमवार देर रात लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें देश की पूर्वी बेगा घाटी भी शामिल है। ये कार्रवाई इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के उस बयान के बाद हुई है, जिसमें उन्होंने लेबनानी चरमपंथी गुट के खिलाफ हमलों को और तेज करने का संकल्प लिया था। पश्चिमी यूरोप में मंगलवार को भी अत्यधिक गर्मी का प्रकोप जारी रहने की संभावना है, जिससे ठीक एक दिन पहले फ्रांस और ब्रिटेन दोनों में मई महीने का अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया था। इस भीषण गर्मी की वजह उत्तरी अफ्रीका से उठी गर्म हवाओं का एक तथाकथित हीट डोम है, जो पश्चिमी यूरोप के ऊपर स्थिर हो गया है। इसके कारण तापमान उस स्तर पर पहुँच गया है जो आमतौर पर केवल कड़कड़ाती गर्मियों के बीच में ही देखने को मिलता है। उत्तरी और मध्य भारत में भीषण लू का प्रकोप जारी है, जिसके चलते भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जबकि राजस्थान के कुछ हिस्सों में पारा 50 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को भी पार कर गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में भारी से बहुत भारी बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। इस सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण पूर्वोत्तर में अचानक बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है, जबकि दक्षिणी तटों और आंतरिक इलाकों में स्थानीय स्तर पर भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी सोमवार को टोरंटो पहुंची, जो संभवतः दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण खेल आयोजन का प्रतीक है और जो दुनिया भर के लोगों को अपने पसंदीदा दल का उत्साहवर्धन करने के लिए एक साथ जुटने के लिए प्रेरित करता है। ट्रॉफी के अनावरण के ऐतिहासिक पल को अपने कैमरों में कैद करने के लिए वहां मौजूद सैकड़ों दर्शकों ने अपने सेलफोन निकाले।
0: आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत हमारे इलाके पर हल्की और सामान्य हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज रात और कल सुबह आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। कल दोपहर बाद खासकर पूर्वी और सेंट्रल प्लेटू वाले कुछ इलाकों पर बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी। हवा पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिणी समंदर में 2 मीटर तक की लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 20 से 23, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:36 पर सूर्योदय, शाम को 5:38 पर सूर्यास्त होगा।

0: देश विदेश की खबरों के साथ ये मुख्य समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। इसको आप तक पहुंचाने में शिव हमारे साथ रहे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: श्लोक समाचार सुनिए। स्टीवेंसन स्ट्रीट सुयाक में, स्टीवेंसन स्ट्रीट सुयाक में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड श्री ज्ञानदेव गुरखान, श्री ज्ञानदेव गुरखान जो देव प्रोफेसर नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के एक बजे, इनकी अर्थी कल दिन के एक बजे इनके मकान स्टीवेंसन स्ट्रीट सुयाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुयाक की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। पेरिस फ्रांस में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड श्री महेश दुकारन, श्री महेश दुकारन जो पहले मोसेल मकुंज उपलैंड दीपा पाए रहते थे, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनका अंतिम संस्कार गुरुवार 28 मई को दिन के 1:30 बजे फ्रांस में ही किया जाएगा। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: Nee so, nee so, nee so, nee so.

आप सभी को अजय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। ये है आप ही लोगों का मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मनोरंजन। सभी का हम स्वागत करते हैं और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर और हमारे टिकटॉक पेज पर भी। नई सोच कार्यक्रम अभी से कर रात के 7 बजे तक कुछ भावगीत लाए हैं इस प्रोग्राम के दौरान और फिलोसॉफिकल सॉन्ग्स जिसे हम कहते हैं वही हम चलाएंगे। कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे गम हैं। जी हाँ, हर किसी के ज़िंदगी में गम तो आते जाते रहते हैं, पर बहादुर इंसान वो है जो गमों का सामना करते हुए हमेशा आगे बढ़ता रहता है। और हम तो जानते हैं कि आप लोग बहादुर लोग हैं, हैं कि नहीं। सो अगर आपके जीवन में कुछ गम आए हैं तो वो गम दूर भी हो जाएंगे। धैर्य से काम लीजिएगा, बारिश के बाद सूरज भी चमकेगा और दुख के बाद जीवन में सुख भी आएगा।

पता नहीं कुछ लोग क्यों दूसरों का मजाक उड़ाते रहते हैं, दूसरों की बुराई करते रहते हैं। दूसरों की बुराई, दूसरों की निंदा करना बहुत बड़ा पाप है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो लोग दूसरों का हंसी मजाक बनाते हैं वो जिंदगी में सफल नहीं होते। फिर भी लोग ऐसा करते रहते हैं। कुछ लोगों को बड़ा मज़ा आता है दूसरों का मजाक उड़ाने में, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर भगवान ने आपको संसार में भेजा है, सो रिस्पेक्ट वन एंड ऑल, डोंट मेक ए लॉफिंग स्टॉक ऑफ एनीवन। क्योंकि अगर आप दूसरों का मजाक उड़ा रही है, कल दूसरे लोग अगर आपका मजाक उड़ाएंगे तो आपको कैसा लगेगा, ज़रा सोचिएगा इस पर।

जिंदगी प्यार का गीत है और हर किसी को ये गीत गाना पड़ता है, गाना आए या ना आए पर गाना तो पड़ता है। जी हाँ, जिंदगी को प्यार का गीत समझना चाहिए तब जिंदगी आसान बनती है, परंतु अगर जिंदगी को सीरियसली लेंगे, हर बात को सीरियसली लेंगे तो कठिन हो जाएगी जिंदगी, है कि नहीं। और जिंदगी में उतार चढ़ाव होता रहता है, कभी हम खुश होते हैं कभी निराश हो जाते हैं, ये सब तो चलता रहता है। बी करेजस, बी ब्रेव, बी बोल्ड एंड एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज। ऑलराइट,

जिंदगी गम का सागर है उस पार जाना पड़ेगा जी हां अगर किसी का साथ मिल जाए तो उस पार भी जा सकता है है कि नहीं यस और कहते हैं कि जब एक छोटा सा बच्चा घर में आता है तो भगवान का वो रूप होता है भगवान कंश होता है कि नहीं और एक नन्हा सा फरिश्ता बनके जब आपके घर में आता है तो उसका स्वागत करना चाहिए चाहे वो बाल गोपाल हो या लक्ष्मी घर में जब एक प्यारा सा बच्चा आता है तो सब कुछ बदल जाता है जिंदगी जो है खूबसूरत बन जाती है सो जितने घरों में आजकल नन्हे मुन्ने बच्चे आए हैं जितने लोग पहली बार के लिए या दूसरी बार के तीसरी बार के लिए मम्मी पापा बने हैं सो

ये तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि हमने कहा कि नन्हा सा बच्चा वो भगवान का रूप होता है, और भगवान का रूप अगर आपके घर में है तो उस भगवान के रूप का ख्याल रखिएगा। चलिए इसी में सुनते हैं एक भाव भरा गीत, फिल्म का नाम है एक फूल दो माली, ओ नन्हे से फरिश्ते।

माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं। माँ बाप जितना अपने बच्चों के लिए करता है करते हैं, कोई भी उतना नहीं करेगा। बाप दिन रात मेहनत करता है, माँ भी मेहनत करती है बच्चों की लालन पालन में। बच्चों को शिक्षा देती है, संस्कार देती है, बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताती है। अफसोस वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो अपने माँ बाप को भूल जाता है। बहुत दुख की बात है। कितनी उम्मीदें रखते हैं माँ बाप अपने बच्चों से, पर कुछ बच्चे जब बड़े होते हैं तो माँ बाप को भूल जाते हैं, माँ बाप को घर से बाहर कर देते हैं। अरे भाई, जिसने आपको जन्म दिया, जो आपका बागबान बना, अगर आप उसे ही भूल जाएंगे तो कल को आप ही माँ बाप बनेंगे। अगर कल को आपके बच्चे आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? ज़रा सोचिएगा, ज़रा चिंतन मनन कीजिएगा इस बात पर।

बाघ को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

0: Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Dilon ki awaaz, ki awaaz, dilon ki awaaz.
3: दिनों की आवाज़ प्रोग्राम में सभी का हम स्वागत करते हैं। एक बार फिर स्वीकार कीजिए और जय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। रात के 7:03 हो रहे हैं, अभी से लेकर रात के 9 तक दिनों की आवाज़। योर फोन कॉल्स इन 402-8070-4790 पर आप फोन कर सकते हैं और अपनों के नाम गीत मांग सकते हैं। ये पहला गाना फ्रॉम द मूवी इट्स एन एल्बम और राइट सुजान की आवाज़ में। गीत का टाइटल है माहिया। सो दिस गाना विल बी फॉर खेमराज गिरी, फिर नीरम के नाम, सुप्रा के नाम भी, और जितने भी लोग मुझे टिकटॉक पेज पर देख रहे हैं और रेडियो मनोरंजन पर मुझे सुन रहे हैं। सो यह गीत आपके नाम, प्यारा सा गीत संजय की और उनकी पत्नी सुरेखा, बेटा कुशल, बहू, बेटी रिंकू, दामाद और सब उनके परिवार वालों के लिए। सुमिला नंदलाल, यह गीत आपके नाम, आपके पूरे परिवार के लिए। यस, एंड टू ऑल माय लिसनर्स एंड व्यूअर्स हु आर वाचिंग एंड लिसनिंग टू मी, वाचिंग मी ऑन टिकटॉक एंड लिसनिंग टू मी ऑन रेडियो मनोरंजन माहिया। चलिए इस गीत को सुनते हैं।

यू आर माई माइंड ब्लोइंग माहिया, क्या गाना था। हम तो नाचने लगे। आप हमारे साथ नाच रहे हैं, टिकटॉक पे चल हमें फॉलो कर रहे हैं, रेडियो पर सुन रहे, क्या बात है। अगला गाना नशे से चल गए, ओए नशे से चल गए, अरिजीत सिंह और साथियों की आवाज में, फ्रॉम द मूवी बेफिक्रे। यस, दिस गाना विल बी फॉर एंजल रोशिका एंड ये गीत आपके नाम दौलत तरान। यस, और ओके फिरोज जी, गीत आपके नाम, और साथ में ये गीत हम चलाएंगे सैतोबा एसएसएस के मेरे सभी स्टूडेंट्स दोस्तों के नाम, एस्पेशली नतराज राम कुरन के नाम एंड ग्रेड 13 राइट के सभी स्टूडेंट्स दोस्तों के लिए। एंजॉय दिस गाना, इट्स फ्रॉम द मूवी बेफिक्रे। आई एम वेटिंग फॉर फोन कॉल्स एंड 402-8070।

0: नशे से चल गई, ओए नशे से चल गई। और अब सुनवाते हैं डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, गाना चला दे। रात के 7:13 हम तो आपका गाना चला ही रही है। फोन कीजिएगा जरूर 402-4070 पर, 4028070 पर। अनीता जी फ्री कॉम्प्लेक्स से नेक्स्ट गाना फॉर यू, और फिर सुनन चेतन के ये गाना आपके नाम चलाएंगे। रंभा, रंभा जी स्विट्जरलैंड से है, गीत आपके नाम भी। ओके अश्विन नाना, गीत आपके नाम। जय श्री राम, वीना अमृत, ये गाना आपके नाम भी हम चलाएंगे। यूजर 24-12-00, ये गीत आपके नाम भी। और उषा तनाकुर भी हमें फॉलो कर रही है टिकटॉक पेज पर और रेडियो मनोरंजन सुन रही है बहुत प्यार से। सो वीना अमृत, उषा तनाकुर, प्रेमा प्रेमा, ये गीत आपके नाम। सूद भाई, यह गीत आपके नाम भी। और यही गाना नो आई एम फ्रॉम मॉरिशस, जी हाँ मैं मॉरिशस से। हाँ दौलत तरन ने लिखा है, आर यू फ्रॉम बीबीसी? नो आई एम नॉट फ्रॉम बीबीसी, आई एम फ्रॉम रेडियो मनोरंजन, एमबीसी रेडियो, और एम फ्री रेडियो मनोरंजन भी लाइव चल रहा है हमारा प्रोग्राम। सूद फ्रांस में है और हमें देख रहे हैं। हेलो भाई सूद, दिस नेक्स्ट सॉन्ग फॉर यू, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे। फ्रांस में जितने लोग मुझे देख रहे हैं, हेलो स्पेशल हाय टू यू। एंड और अजय ओ ओ ही बर्न, वो भी हमारा साथ दे रही है, वो तो उनके नाम भी अगला गीत करेंगे। एंड लेट मी चेक द कॉल, एक कॉल है यहाँ पर। हेलो हेलो हेलो जी,
1: नमस्ते
0: नमस्ते, आपका नाम?
1: अनीता, अभी अभी आपने हमारे मैसेज,
0: हाँ अभी आपने फोन किया। कैसी अनीता जी?
1: हम ठीक है, और आप?
0: बिल्कुल ठीक ठाक, आपके आशीर्वाद से।
1: बहुत प्यारी गाने चला रहे हैं शुरू से, शुरुआत।
0: हाँ अभी कुछ फॉर्स म्यूजिक चलेगा, 7 से कुछ फॉर्स म्यूजिक चलाएंगे,
1: हमें बहुत अच्छी लगती है।
0: हाँ, और आपने तो भोजन तैयार कर लिया डिनर के लिए? क्या क्या बनना है आपने आज डिनर में?
1: वेज खा रहे हैं।
0: चलिए अच्छी बात है,
1: और लौकी।
0: क्या बात है। और अगला गीत आप किसके नाम करना चाहेंगे?
1: हमारी सभी मम्मी के लिए, जो
0: मदर्स डे मनाएंगे इस वीकेंड को ना। आपकी मामा?
1: मामा नहीं है, हमारे
0: पापा है। आप अब तो आप मामा है ना आप आजकल?
1: हमारी भाई प्रताप जी है ना।
0: हाँ जी।
1: तो मामा नहीं है, मामा
0: दुख की बात है कि मम्मी पापा जब नहीं होते हैं ना। हाँ पर
1: खाली दिल खाली खाली लगती है।
0: हाँ पर ये तो जिंदगी का रीत है ना।
1: लेकिन मामा बहुत बीमार थी, इसीलिए हमने भगवान से प्रे किया कि हमारी मामा के अपने चरणों में जगह दे दे। हाँ क्या करे, जिंदगी है ना।
0: हाँ मम्मी की क्या उम्र थी उस समय जब मामा दुनिया से?
1: 85।
0: ओके फिर भी माँ का आशीर्वाद आपके साथ है, हमारा भी प्यार आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। हाँ भी

0: मदर्स डे
1: दीजिएगा मम्मा के लिए, सभी
0: मम्मा
1: के लिए.
0: ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने. ओके ओके, सो स्वीट.
1: आपको मुकुकाज भाई,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपने फोन किया. ओके अनीता जी, ये थी पिको फ्लैक्स. ऑलराइट, थैंक्स फॉर कॉलिंग. यस, 4028070 पर. और जिनकी मम्मी पापा नहीं है, यू नो दे जस्ट को याद आती है, नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं. पर संसार का ये नियम है ना दोस्तों, कि जो भी आएगा संसार में एक दिन उसे जाना पड़ेगा. यस, दिस इज अ रूल, दिस इज अ नेचर, सो वी कांट चेंज नेचर. ओके, चलिए अगला गीत सुनते हैं. अजय ओहिबन के नाम और प्रिंसेस जी, यह गीत आपके नाम भी. सत्यानंद मोनी, आप भी हमें देख रहे हैं. दौलत तरन, यस, यह गीत आपके नाम और आपके पूरे परिवार के लिए. All right, Radio Masti. This is Radio Manoranjan. Koi baat nahi. Saira Dahu, good evening. Ji, please play a song for Abdul and Saira Banu. All right, the agla gana Saira Banu aur Abdul ke naam. Jai, Randeep, Varna and Sushil. Ye geet aapke naam. Chal ek saath sunte hain. Diji wale babu mera gana chala do. Diji wale babu mera gana chala do. Gana chala do.
2: Diji wale babu mera gana chala do. Diji wale babu mera gana chala do. Diji wale babu mera gana chala do. Gana chala do. Gana chala do.

0: बजा दूं, गाना बजा दूं।
1: गीत इतना जबरदस्त था, इतना हम नाच रहे थे कि भूल गए कि गाना समाप्त होने को आया है। राते के सालों के 20 मिनट, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड एंजॉय लाइफ। जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, सो जो जो जो बातें आपको छुपती है उन बातों को ना सोचे। कियाना, हेलो जी, नमस्ते, नितीश, निहारिका, ऑलराइट, नेक्स्ट गाना विल बी फॉर यू गाइस, लैला मिलेला, फिल्म रईस का गाना है। यस, ये गीत आप सुनेंगे पवनी पांडे, कल्याण जी, आनंद जी, राम संपत की आवाजों में। फिल्म का नाम रईस, लैला मिलेला। अरे मैं लैला नहीं, मैं लैला का दोस्त हूँ, और जय प्रताप सिंह।

0: ना भोला हेलो दिस गाना फॉर यू कियाना गीत आपके नाम भी अंचल इरीना गीत आपके नाम भी हम करेंगे और यू कैन कॉल अस ऑन 4027080070 ये गाना माफ कीजिए गाना क्या कर रहा हूँ ये गाना हम चलाएंगे आपके नाम डॉक्टर पूनम पापा सीधा भी खुला सुवर्णा सिंह हेलो जी वीरा आई इंदिरा दुर्गन ये गीत आपके नाम भी सुवर्णा सिंह ये गीत आपके नाम और ये गाना हम चलाएंगे एरोया के नाम उमा जगन्नायक लिस्कारिये से है उनके दामाद बहादुर फिर बेटी दृष्टि फिर प्याली सी नातिन नाती के नाम भी और अभी एक कॉल है इस कॉल को लेते हैं देखते हैं कौन है हेलो ललिता जी नमस्ते हाँ ललिता जी
1: नमस्ते नमस्ते बेटा
0: नमस्ते चाची कैसी हैं आप
1: ठीक हूँ बेटा कैसे हो
0: हम ठीक हैं और प्रोग्राम कर रहे हैं अगला गाना किसके लिए
1: एक माँ के गाना चला देना बेटा
0: ओके
1: बहन सुदेवी
0: हाँ
1: देवीना ज्ञानी
0: हाँ
1: छोटी दीदी दादी
0: पारभावती ओके
1: और हरीश भैया आत्माराम भैया और सुखलाल मौसी के लिए
0: हाँ
1: बहुत और आपके भी
0: ओके जी चलाएंगे प्यार संगीत ठीक है
1: अच्छा ठीक है
0: बहुत धन्यवाद आपने हमें फोन किया शुभ रात्रि चाची चाची ललिता ये थी ट्रियोलेसी ऑलराइट सो अगला गीत यस बहुत से लोग माँ पर गीत मांग रहे हैं ऑलराइट सो ये जो लैला में लैला हूँ यह गाना मैं थोड़ी देर बाद चलाऊंगा अभी पहले सभी लोग अपने मदर्स को विश करते हैं हैप्पी मदर्स डे अभी से ही कोई बात नहीं तो चलिए प्यारा सा गीत सुनते हैं इस गीत के बोल पर ध्यान दीजिएगा कि गीत में क्या कहा जा रहा हर एक शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है सागरिका ने इस गीत को गाया है हम जानते हैं कि इस गीत को सुनकर आप बहुत से लोगों की आंखें भर आएंगी पर मदर्स डे जो है बहुत स्पेशल है जो माँ होती है ना वो जननी है जन्म देने वाली है जन्म देती है पालन करती है माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं यू एग्री विद मी ऑलराइट सो इस वीकेंड को मदर्स डे मना रहे हैं तो हम कहेंगे कि माँ और बेटे का जो बॉन्ड है माँ और बेटी का जो प्यार है वो प्यार हमेशा बरकरार होना चाहिए माँ चाहे कितनी भी उम्र क्यों ना हो जाए उसके लिए उसका बच्चा बच्चा ही रहता है आप डॉक्टर बन सकते हैं टीचर बन सकते हैं औजे बन सकते हैं पर आपके माँ के लिए आप हमेशा वही उनके कलेजे का टुकड़ा रहेंगे सो डोंट डिसरिस्पेक्ट योर मदर ऑलवेज लव योर मदर एंड पे रिस्पेक्ट टू हर गिव लव एंड अफेक्शन टू हर सभी माताओं को हैप्पी मदर्स डे और ये प्यारा सा गीत सभी माताओं के नाम माँ सागरिका की आवाज़ में

उत्तशी अनाता है हो उत्तशी अनाता। हालांकि हम गीत के बोल क्या मतलब नहीं समझे पर छू रहे है कि नहीं। सो वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये है रेडियो मनोरंजन और इन फ्री 94.5 MHz। एंड आप हमें टिकटॉक पर भी टिकटॉक पेज पर देख रहे हैं, थैंक यू। नेक्स्ट गाना बेबो मैं बेबो। जी हाँ, बहुत ही जोशीला तराना। प्रकाश जी ये गीत आपके नाम, नमस्ते प्रकाश जी, दिस गाना फॉर यू। चाया लक्ष्मण जी ये गीत आपके नाम, हेलो सांड्रा ये गीत आपके नाम भी। एंड फैसल कुदीर वो भी हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं। सो नेक्स्ट गाना विल बी फॉर यू एज वेल। और देश विदेश में भी लोग हमारी आवाज़ का स्वागत कर रहे हैं अपने घरों में, थैंक यू जी। अगर आप नौकरी पर है, काम करें तो बुक वॉश, घर पे है रिलैक्स करें, जस्ट चिल एंड रिलैक्स। रात तो चूसती है, अभी तो पूरा सप्ताह बाकी है कि नहीं। ऑलराइट, सरिता नोमचंद जी, लीला जी यह गीत आपके नाम भी, और यही गीत चलाएंगे सभी दोस्तों के नाम जो हमें सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन पर और जो हमें

बेबो मैं बेबो, हाँ क्या गाना था। ओए होए हम तो नाचने लगे झूमने लगे। ओए होए होए होए अगला गाना इट्स पार्टी ऑन माय माइंड। यस मेरे माइंड में तो बस पार्टी पार्टी चलती है। के शेफ अली अल्वारेस, हनी सिंह, डीजे डबी, इट्स टेकन फ्रॉम द मूवी रेस टू, इट्स पार्टी ऑन माय माइंड। यस सो ये गीत हम चलाएंगे तरुण राम जी के नाम, इंडियन आर्मी, जो हमें फ्लोरिडा से देख रहे हैं। एंड यस ओके, यचना वो भी हमें देख रही है।

और सुन रही है यजना बड़े प्यार से, क्या बात है यजना। प्रीतिश प्रीत, ये अगला गाना आपके नाम भी, पार्टी ऑन माय माइंड। यस एंड ओके, इफ यू वांट टू ऐड मी एज फ्रेंड, आप जा सकते हैं फेसबुक पर प्रताप सिंह और जय प्रताप सिंह पर क्लिक करें और मैं ऐड करें और आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जैसे जो जो प्रोग्राम होते हैं हम एक दिन एक दो दिन पहले हम डाल सकते हैं वहां पर। ओके अभिषेक शर्मा, ऑलराइट इंडियन आर्मी, ओके आई ऐड यू एज फ्रेंड, डोंट वरी अभिषेक शर्मा, आई विल डू द नेसेसरी। ऑलराइट सो अभी यहां पर रात का समय है, रात के 7:50, आई नो इफ यू अगर इसमें भोजन करें तो बोन अपेटी, सुरुचि, शुभाहार, एंजॉय योर मील एंड एंजॉय दिस लवली गीत, इट्स पार्टी ऑन माय माइंड।

रो की आवाज प्रोग्राम रेडियो मनोरंजन आर एम फ्री पर और टिकटॉक पेज पर भी। और अगला गीत टच मी। अरे भाई ये मैं नहीं करा, ये अलीशा चुनाव कह रही है फ्रॉम द मूवी धूम 2। राविश मंदू, ये गाना फॉर यू, फॉर योर मामा, योर पापा एंड फॉर योर स्वीट एंड लवली फैमिली। जी हाँ, बहुत प्यारा सा गीत है राविश मंदू के लिए। जो रहते हैं मौत दबा, क्या बात है। यस इंडियन आर्मी, यस दिस सॉन्ग फॉर यू ऑल्सो, बहुत प्यार से। और आप कहते हैं कि आपका होमलैंड है गाजियाबाद में, थैंक यू। सो व्हेन यू कम टू मॉरिशस वी विल श्योरली मीट एंड वी विल डू पार्टी, यस पार्टी होल नाइट। एट अरविश, सो स्वीट ऑफ यू। एंड नेक्स्ट गाना फॉर सूरज, हाय सूरज। सूरज अभी नहीं मेंशन किया कहाँ से है। फिर मुजफ्फरा उमा जी हमें देख रही है और सुन रही है, उमा जी सो स्वीट ऑफ यू। एंड संगीता मिरन है लाहौजा से। फिर रीता सीतालू मोहताबा से, दाशिनी गोविंद वो भी हमें देख रही है और सुन रही है। एंड कासम खास, ये प्यारा सा गीत राविश मंदू के लिए। यस राविश, कम ऑन लेट्स डांस टुगेदर। अलीशा चुनॉय की आवाज़, टच मी, ओ टच मी। फिल्म का नाम है धूम 2।

गीत के बोल कितने प्यारे हैं, कभी कहते कभी कहता है टच मी, कभी कहता है डोंट टच मी। क्या गाना है ये। सो नेक्स्ट गाना शेला की जवानी। यस, विशाल ददलानी और सुनी चौहान की आवाज है। बीना बैरव मोहतबा से ये गाना, उसके पति और दो बच्चों, सब बैरव परिवार के नाम। एंड अश्किंग ऑल्सो इज वॉचिंग मी, नाम तेसी चुमी, नेक्सस राजीव, अनिष्टा, जयान, समरे, ऑलराइट, ये गीत आप लोगों के नाम। एंड यस, आई एम ए रेडियो जॉके, आई वर्क एट एमबीसी रेडियो एंड आई एम फ्रेंच टीचर एज वेल। ये किसी ने पूछा हमसे टिकटॉक पेज पर, यस जू हेलो संजय यादव, यस इज गाना फॉर यू ऑल्सो, रमरीता, मिंटा, कविता भिनिक, ऑलराइट, विक्रम और स्वीटिना आपके नाम भी यह गीत हम करेंगे, प्रेमिला जादू, ऑलराइट, लव किस्त मोहन जी, ओके, यूजर 4685, माय नेम इज अजय प्रताप सिंह, यस, स्वीट प्रीश, विशाल निरपत्य, गीत आपके नाम भी, मिंटा भी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर रहे हैं, थैंक यू जी। एंड पीपल से आप गोच ए नाइस वॉइस, सो स्वीट ऑफ यू, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है। दूषण जी शुभ नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। सो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं टिकटॉक पेज पर रेडियो मनोरंजन के और रेडियो मनोरंजन पर हमें सुन रहे हैं, सो ये गीत आपके नाम। इफ यू ड्राइविंग, ड्राइव स्लोली एंड केयरफुली एंड एन्जॉय दिस सॉन्ग फ्रॉम द मूवी टी स्मार्ट खान, टी स्मार्ट खान।

बजरों की आवाज प्रोग्राम अजय प्रताप सिंह के साथ लाइव ऑन राइट मनोरंजन एंड टिकटॉक पेज हरिलाल दिनू जी मातबा से है हेलो दोस्त ये गाना अगला गाना आपके नाम ओ ला ला रे ला ला ला ला रे इट्स टेकन फ्रॉम द मूवी चार्ल्स एंड द वंडर कार हरिलाल दिनू मातबा से है उनके पूरे परिवार के लिए उनकी बहन और होल फैमिली दिनू फैमिली एंड हरिलाल दिनू लव्स फास्ट म्यूजिक है ना दोस्त सो अगला गाना आपके नाम करेंगे ओके जी रीता बिहारी जी एंजल अनु विराज रामपारी ऑलराइट दिनू मोहिन मोहिंदी ऑलराइट रीता बिहारी भी हमारा साथ दे रही है मुन्ना

And Nilamba Nara, आप भी हमें फॉलो करिए फेसबुक पेज पर. एंड संध्या जी भी, हमारा कुलसुम भी साथ दे रही है, उमा जी भी है. सो दीनू हरिदाल भाई, ये गाना खासम खास आपके नाम जेड से है. आपको डांस करना है हमारे साथ, ठीक है? चलिए एक साथ.

जांच की रात हम कुछ हॉस म्यूजिक चला रहे हैं दिलों की आवाज प्रोग्राम में आप ही ने इस प्लेलिस्ट को तैयार किया है प्यार से मिसेस अनामिका नेक्स्ट सॉन्ग फॉर यू देवीना मंगर ये गीत आपके नाम भी अगला गीत है इश्क दी गली बोले नो एंट्री नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो नो एंट्री Okay, and next Ghana, Aslan Kinam, yes, and Nisha, all right. Okay, Nisha, Aslan, Ashiks, Rosita Tagore, bhi hume dekhe Devina Mangar, wo humara saade Jevin Gokul. Hi, Jevin. Jevin, you're from? Aapne nahi likha kahan se hai? Jevin Gokul, all right, and यही प्यारा सा गाना हम चलाएंगे पद्मिनी के नाम पद्मिनी की ओर से उनके बेटे उनके पति और सभी परिवार के लिए विवेका के नाम भी यह गीत जाएगा and all those people who are listening to me right now on Radio Manoranjan and watching me on TikTok page यह गीत आपके नाम भी इश्क दी गली बोले no entry Nishti Nish bhi humara saath de rahi hai aur Erwin Ganga hai New Grove se unki patni unke papa unki mama aur sab Ganga parivar ke naam and Debi yes Debi hai New Grove se unki patni aur unki do betiyon ke naam hello Dush this is Ghana for you Meera alright ye geet aapki beti Tavishi ke liye Soma Devi bhi hame sun rahi hai Nitish Kasnia, this is Ghana for you. Radha Krishna, ye geet aapke naam bhi. Kunal Hiridal bhi hame sun rahi hai aur dekh rahi hai. And Kunal Hiridal is a great Bhojpuri singer, I must say. To chaliye ek saath sunte hai ye pyara sa gana. Ishq di gali bole kar entry. I will say no entry.

0: 94.5 और 96.2 MHz पर आप सुन रहे हैं ऑल इन प्री रेडियो मनोरंजन. यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑनलाइन ऑन बाय क्लिकिंग www.mbcradio.tv, फिर क्लिक करें लिसन ऑल इन प्री रेडियो मनोरंजन, या फिर आप हमें टिकटॉक पेज पर देख सकते हैं. आपको आपको जाना है रेडियो मनोरंजन पर और टिकटॉक पेज पर क्लिक करें सो आप देख सकते हैं. उत्तम जी कह रहे हैं कि अभी भी उसने भोजन किया है. सुरुचि भाई अकेले अकेले भोजन कर रहे, आपने और जी को याद नहीं किया. आई एम जस्ट किडिंग. ओके उत्तम, सो नेक्स्ट गाना विल बी फॉर यू. कुछ मिलते से आप अमृत रघुनाना, दिस गाना विल बी फॉर यू. ये सब कौन सा गाना आएगा, आएगा एक प्यारा सा गाना, हमेशा तेरे साथ रहूंगा. फिल्म का नाम कृष्णा कॉटेज. लेडी नूश, दिस गाना फॉर यू. जर्वीस जर्वीस, कौशिक रघु, सरिमा, यस हिजाबी, वर्षा. ओके और एक दो से नाइन पर्सन से मिलेंगे. यस वी टेक द कॉल ऑनलाइन. हेलो हेलो हेलो हेलो, बात कीजिए, हम आपको सुन रहे हैं.
1: जी हाँ, नमस्ते.
0: नमस्ते, आप क्यों बात नहीं कर रही है?
1: हाँ बोलो, मैं एक गाना सुनना चाहती हूँ. देखो गाना है, पंकज राज ने गाया है.
0: अभी हम चला रहे हैं फर्स्ट म्यूजिक पर गाना, बोलिए कौन सा गाना. अगर फर्स्ट म्यूजिक होगा तो जरूर चलाएंगे.
1: ये नहीं चलाएंगे.
0: अगर फर्स्ट म्यूजिक पर ढला होगा तो जरूर चलाएंगे. आज रात को हम चला रहे फर्स्ट म्यूजिक, ठीक है.

0: नहीं, मेरी माँ के बारे में है।
1: माँ के बारे में तो हमने गीत चला दिया।
0: नहीं, ये मैं ही मांगती हूँ।
1: फर्स्ट म्यूजिक है, फर्स्ट म्यूजिक पर ढला है।
0: नहीं देखो ना, ये गाना ये है, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
1: ओके, कोई बात नहीं, आप अपनी मम्मी को बहुत प्यार करती हैं। हैप्पी मदर्स डे आपको।
0: जी,
1: अब आप मदर्स डे करेंगे, हम ढूंढेंगे ढूंढेंगे, अभी फर्स्ट म्यूजिक से हम ढूंढेंगे, पर आपको
0: हाँ, देखो पंकज राज ने गया है।
1: ओके ओके जी, गीत के बोल कैसे हैं?
0: मेरी माँ के बराबर
1: कोई नहीं। ओके जी, हम ढूंढेंगे, आपको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद है, ठीक है?
0: ओके, बहुत धन्यवाद।
1: ओके जी, सो फ्रेंड्स, शायद आपने प्रोग्राम सुना नहीं, शुरुआत से हम कह रहे वी आर प्लेइंग सम फर्स्ट म्यूजिक टुनाइट। रोज होते हैं दिलों की आवाज़, तो सभी का अपना स्टाइल होता है, हमारा कुछ स्टाइल कुछ अलग है। सो वी आर प्लेइंग सम फास्ट म्यूजिक, जो डिस्को टाइप गाने होते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हुए हैं, सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट। ओके, सो नेक्स्ट गाना, हमेशा तेरे साथ रहूँगा, फिल्म का नाम है कृष्णा कोतेज, कस्टल ग्रेस, ये गीत आपके नाम मेहरीन। उत्तम जी भी कई समय से हमारे साथ जुड़े हुए है। सकीना, यस सकीना, ये गीत आपके नाम भी, और यही गीत हम चलाएंगे विमला दुखन के नाम, और यही गीत फातमा जी के नाम, न्यूग्रोव से अकमेज आफेज, आफेज है सैम्पिया से, बहुत बहुत प्यार के साथ, कमला दी न्यू मोहताबा से है। ऑलराइट, एंड अजमल, अजमल जी भी हमारा साथ दे रहे। चलिए एक साथ सुनते हैं कि प्यारा सा गीत, हमेशा तेरे साथ रहूंगा, विशाल की आवाज में, फ्रॉम द मूवी कृष्णा कोतेज।

सभी लोग कहते हैं कि हमेशा तेरे साथ रहूंगा, पर जब समय आता है तो सभी लोग साथ छोड़ देते हैं। जब तक इंसान के पास पैसा है, रुतबा है, स्टेटस है, सभी लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं, पर जिस दिन इंसान के पास पैसा खत्म हो जाता है उसे कोई नहीं पूछता। दिस इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। रात के 8:30 बज रहे हैं, 9 बजे तक चले गए प्रोग्राम। प्रोग्राम का नाम है दिलों की आवाज और जय प्रताप सिंह के साथ। अगला गीत अक्सर इस दुनिया में लोग मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं, पर कुछ लोग हमेशा याद आते हैं। ये गाना लकी के नाम आदि शराज भरत, ये गीत आपके नाम पृथ्वी शाह नीतीश बलंत, ये गीत आपके नाम शिखा, ये गीत आपके नाम भी, और यही प्यासा गाना माधवी डोमर के नाम। आप हमसे सहमत है कि जब तक इंसान के पास पैसा है, रुतबा है, सब लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं, पर जिस दिन पैसा समाप्त हुआ सभी लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। कम लोग होते हैं जो साथ देते हैं, कभी कभी अपना परिवार भी अपना साथ छोड़ देता है। क्या जमाना आ गया। इसी को कलयुग कहते हैं ना। हेलो मायरा, दिस गाना फॉर यू शीरा, ये गीत आपके नाम भी। और बेशक जो लोग मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, या जो लोग डिप्रेशन में हैं, जो लोग उदास है, अगर किसी का दिल टूटा हुआ है, किसी ने आपको कुछ भला बुरा कह दिया है और आप उदास है, तो हम कहेंगे मैं आपके साथ हूँ। डोंट वरी, होता है कभी कभी ज़िंदगी में हमारे अपने ही हमें चोट पहुँचाते हैं, जिसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं ना, वही हमें चोट पहुंचाते हैं। सो डोंट वरी, ऐसा ये सब तो चलता रहता है, दुनिया की ऐसी ही जो है रीत है। सो माधवी डोमर की ओर से ये गीत केयान और सियान डोमर के नाम। और

राइट परियान सावित्री, ये गीत आपके नाम भी, चलिए एक साथ सुनते हैं प्यार से। और ये गीत उत्तम के नाम भी, उत्तम कौच मिलते हैं ऐसे उनके पूरे परिवार के लिए। अक्सर इस दुनिया में कुछ लोग मिलते हैं, कुछ लोग बिछड़ जाते हैं।

अक्सर इस दुनिया में लोग आते हैं जाते हैं फिर मिलते हैं बिछड़ते हैं कुछ बिछड़ के फिर मिल जाते हैं कुछ बिछड़ जाते हैं और हमेशा याद आते हैं और कभी-कभी जो हमारे अपने होते हैं जो दोस्त होते हैं वही हमको धोखा दे जाते हैं ऐसा होता है जिंदगी में रात के 8:40 एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो मनोरंजन आर एन फ्री 94.5 MHz और आप हमें देख रहे हैं टिकटॉक पेज पर थैंक यू जी और अगला गाना हम चलाएंगे ओ सनम जिम प्रोडक्शन ये गीत आपके नाम आपके पत्नी और बच्चों के नाम ओ सनम लकी अली की आवाज़ में ये गीत बिस्वानी जुमू साई कैदू शांति दुधी रुमिता गुजा समीला एंड सरिता नोम चन ये गीत आपके नाम भी आपके पूरे परिवार के लिए हिना जी भी हमारा साथ दे रही है बहुत प्यार से हमें सुन रही है तो चलिए सुनते हैं ये प्यार सा गाना और खासकर जिम प्रोडक्शन उनकी पत्नी और बच्चों के नाम नीतू प्रतिमा ऑलराइट दिस गाना फॉर यू ओ सनम लकी अली की आवाज़ में

The Grand Master के बाद Jimmy Dukia भी हमें follow कर रहे हैं और अगला गीत दिल टोटे टोटे हो गया दिल टोटे टोटे हो गया बहुत ही प्यारा गाना from the movie बिच्छुई गीत श्यामा महराली के नाम संजना यति के लिए भी बहुत प्यार के साथ अस्मिल धकाल ये गीत आपके नाम भी Jimmy जी hello आश लीलू next song for you रूमा आपके नाम भी अगला गीत मिला ये गीत हम आपके नाम करेंगे और विंदु विंदु भी हमें फॉलो कर रही है टिकटॉक पेज पर थैंक यू सो मच और बहुत से लोग जो है कोशिश कर रहे हैं आपको लाइन नहीं मिल रही कोई बात नहीं तो आप टिकटॉक पेज पर मैसेज कर सकते हैं वी आर डू दिस गाना फॉर यू फिर अरियान है नजीम रमीम है प्रीति बोयधु अंश रूप नारायण स्वस्तिक विवेन और हेमा धनु वो भी हमें सुन रही है रेडियो पर तो चलिए उनके नाम करते ये प्यारा सा गाना कृष्णी दमु ये गीत आपके हेमा धनु और कृष्णी डुमोरो सुभाष ही के नाम भी ये गीत चलेगा दिल टोटे टोटे हो गया दिल टोटे टोटे हो गया

शकलाका बेबी इस गीत के साथ ही दिलों की आवाज प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होने जा रहा है। 9 बजे यह प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा और दूसरा प्रोग्राम शुरू होगा भोजपुरी तड़का जो रेडियो मॉरिशस और रेडियो मधुबन दोनों पर आएगा रात की 11 बजे तक। शाम के 6:30 बजे से अभी तक हमारा साथ देने शुक्रिया। टिकटॉक पेज पर हमें देखने के लिए, हमें फॉलो करने के लिए, रेडियो मनोरंजन पर हमें सुनने के लिए शुक्रिया। I'll meet you once again at 9 p.m. on Radio Mauritius and Radio Manoranjan Bhojpuri Tadka program. Sunte rahiye pyar se NBC Radio. Stay tuned, stay connected.

0: Continuous music.
1: सब संगत यालो के अजय प्रताप सिंह के प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह था मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन। अभी से लेकर रात के 11 बजे रही प्रस्तुत बातों के पसंदीदा प्रोग्राम भोजपुरी तड़का। जी हाँ, थोड़ा मन करता कोनो भी भोजपुरी गीत सुने के तो नंबर वा घुमा यह का जगो दे विद जगो से जगो पर का जगो दे विद जगो विद सैंक पर 4028085 पर सक बजा टेलीफोनी करी और मनपसंदीदा भोजपुरी गीत मांगी। आज मंगलवार की रात, मंगलवार 26 मई साल 2026, तो चला भोजपुरी कार्यक्रम की शुरू करब सा बसंत सुपुर गावल गीत के साथ। गीत के बोल है हंगामा।

मॉन्चेस्टर का प्रोग्राम चलाता है रेडियो मॉन्चेस्टर, रेडियो मनोरंजन पर। अगला गीत चमेली भेदी कृषि गीत अगेलेवन बनते ऐसे जानवी के लिए गीत चलावती सर। और अभी को संगत्या बालाइन पे कर से मिलव जा। हेलो,

0: क्या है इतना लिटल हो तो हुकअप से तोरा इंतजार करत है
1: हम अभी से
0: तोर
1: इंतजार
0: करत है नहीं तो अभी वहां रही सदस्य राज्य में दूसरा राज्य में रही सर अली बोला कौन गीत सुन बा
1: अभिदान चंपा फूल सजावेला चमेली फूल
0: सजावे गीतवा के गई
1: माफ करो
0: गीतवा के गई लगभग
1: अभिदानन
0: अभिदान अभिदान अब तने युवा में डाल थी सर आप अभिदानन बीजन गीतवा के बोल कौन सी चंपा फूल सजावेला के कर खाती गीतवा मांगते हुआ
1: जितना कोई सुना
0: था
1: आपके
0: हवा हम है अजय प्रताप सिंह
1: अच्छा बहुत धन्यवाद
0: ओके तो हर गीत छड़ी थोड़ी समय में ठीक बा
1: भूलना मत डाल देना
0: हाँ चला दो अब सर ओके बाय बाय तो ये रहल हमने की संगतिया और बिशप गीत मांगा था

रात की 9:00 के 9 मिनट हुआ था और जब भी गीत मंगवा टेलीफोनिक अलबर्त जब गीत चला था गीतवा के पूरा चली दिया गीतवा जब पूरा हो गया फिर से गीतवा समाप्त हो गया तब सोने के लिए कहे कि काक करे रहसा तो लोग बीचवा के गीत में सोने करे रहसा और जब बीच में सोने करे रहसा तब भी फोन नहीं सकी रहसा ले कहे कि गीतवा फिर कोई सुना था गीतवा के जहाँ पूरा बचा दे के तब फोन कॉल ले जा कहे कि अब बीच में सोने कर बने सकब चले भी जी गीतवा समाप्त हुआ था तब टेलीफोन नहीं करा था तब ले सर तब गीतवा पूरा चला सर अब नहीं कि टेलीफोन करके टेलीफोन काट दे वाला सर ये बहुत बुरी बात बा ठीक बा कोनो भी काम होला अनुशासन से डिसिप्लिन से तो हम और जब भी टेलीफोन कर अपन राजू के वॉल्यूम कमती कर दिया तो फिर कभी कुछ अच्छी मंगलक अभिधानन बिजन के गीत चंपा फूलेगा तो चलो एक साथ सुने यही गीतवा

रात के 9:14 हुआ था तू सुना था भोजपुरी का प्रोग्राम रेडियो मॉन्शेस्टर लाइव रेडियो मनोरंजन पर भी। और जैसे कि जानी रहा था कि अब ठंडा के मौसम शुरू हो बा तो ढेर सावधानी छा बढ़ते कि कह के दिख रही से एक घर में जब एक परिवार के सदस्य के लाफिए लगाता था धीरे धीरे सब कोई के लाफिए लगाता जी बाप के लगाता तब बेटी के लग जाए बेटी के लाफिए हुए तब माँ के लग जाए भाई बहन के हो जाए तो एक खातिर जैसे थोड़ा लाफिए लगी तो डॉक्टर लग जाइए पिकिया उकिया करा लिया दवाई सब कर दिया ताकि है लाफिए हुआ तो हॉस्पिट नहीं हुई कहे कि वायरस है ये एगो शरीर से दूसरे शरीर में जाला जब जब छिकत हुआ खोकत हुआ है बच्चा था तो ड्रॉपलेट्स मुँह में से निकले ना ये खातिर बही जा सकी जब भी आजकल सर्दी खांसी जुकाम के महीना बाद बेशक जब एक जना बीमार रही तो चल जाए डॉक्टर लगे वरना नहीं जे बात है मतलब जैसे सब कोई किफानी करे घर में माँ बाप लेकर सब कोई सखी मरा दो जाए तो सर्दी जुकाम से बच्चे खातिर डॉक्टर लगे जाइए डॉक्टर से चिकित्सा कराइए और अपन दवाई समय पर पिए और समय और ये दवाई जो है चेहरा समय पर पिए के है कोनो कासे कि कैसे खाए से आगे पिए के या खाए के बाद तो ये सब छा ध्यान दे कि नहीं सब खाए के आगे के कासे हुआ खाए के बाद पिए या खाए के बाद कासे आगे पिए कहे के ओकर एगो डिसिप्लिन रहेला और बेशक जितना दवाई डॉक्टर देवेला सब चेहरा पिए के नहीं कि आधा दवाई किन और आधा दवाई नहीं किन नहीं ऐसे काम नहीं होला डॉक्टर लगे जेबर डॉक्टर इंजेक्शन दे दवाई दी तब पूरा दवाई चले कि कंजूस नहीं करिया कंजूस कर बता तोहरी प्रॉब्लम हुई स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दिया स्वास्थ्य बात सब कुछ बफैया लासौती नहीं अच्छा बात तो कुछ नहीं अच्छा बा चलो ऐसे में कुणाल ही लाल के गीत सुनब स जल्द साखी रात बा सब भोजपुरी प्रेमी के नाम और जितना कोई अभी उनकी सुना था रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर है गीत तो लोग के नाम भी कासम खास रतन निहाल के नाम गाँव से हवन और कुलपत्नी करुणा पापा विजय और सब ओकर परिवार के नाम

पानी भरे ना जाइए ना जाइए। अभी के मैडम लोग कहाँ जरा पानी भरे हो, पहले के जमाना में गमेल में पानी भर के आना तरीसा, नदी से डोंपी में से लाफोंटेन से पानी भर के माता जी लोग चाची लोग कपार में गमेल में पानी ले के आवत रहन सा। अभी तो हर सुख सुविधा अभी के जरा पानी भर के आने कोई नहीं जा रहा, बड़ी बारिश। रात के 9:26 होता हाँ था आगे के हमने की दादी नानी लोग ढेर मेहनत कर ले रहे हमने की नानी लोग जन बहुत सादगी से लुगा पहन दिलन सा कपार पर होड़नी गेहूँ भी दिलन सा तो कपार पर होड़नी छना डाले के। और आगे के जमाना में जब पति लोग खाता तब पत्नी बैठ के इंतजार करे, जब पति खा ले तब पत्नी लोग खातल। अभी भाई जमाना अभी तो सब उल्टा होता भैया, कोई के दोष नहीं देवा तो इसे कहे कि समय के साथ छाना चले के ना। अभी तो मॉडर्न जमाना बस सब कोई मोदनीति खोजेरा पर मोदनीति के उपयोग रहना पे करे कि कबो कबो कबो कबो ढेर पारेश्वर बता नहीं छापा समझदार के इशारा काफी बा। अगला गीत हमरो बलमुआ के उजर उजर पालतू है गीतवा खुदो के मेबिल की ओर से बोनतिया के करे को खास संगतिया जानवी के नाम। चलो एक साथ सुने हम रो बलमुआ के उजर उजर पालतू है ये गीत चली शांति के नाम। आप रहे लन तेरोज़

आपके अपन दुलिन छोड़ के दूसर के दुलिन लेके जा रहा हो ऐसा नदमी। रात के 9:32 और आगे के जमाना में ढेर कोई मुर्गा मुर्गी पोसत है। हम जानी रहा आगे पुलाई में मुर्गा मुर्गी रोके डाल दी बा तो मुर्गी रोज के अंडा दे पक पक पक पक पक पक पक पक करके अंडा दे बतल हाँ कि नहीं। आजकल ये सब देखे कहाँ मिले आजकल के लड़का लोग बोलबा मुर्गा मुर्गी तो बोलने से नुपा को ने कहाँ को नहीं करी तो लड़का को वो देख रख नहीं बा मुर्गा मुर्गी। तो आगे के जमाना में हमने की पुरानिया लोग पूछा था आगे आदमी के 9-10 को लेकर रहे फिर भी लेकर के पोस दे पोस की बड़ा कर दे बदल से कहे कि ढेर चीज किने के नहीं पड़ा था। अब मुर्गा मुर्गी पोस पर मुर्गा के गोश्त खेब या मुर्गी के गोश्त या अंडा अंडा पका के खा ले ना हो कि नहीं। आजकल तो सब कुछ पड़े रहा किने के आजकल के पोसेला हो के लेता बा पोसे के सिर्फ वो आसान बात है अगर तुखो तो पैसा बचाए के अगर तो आंगन घर के आंगन में जगह बा तो को पुलाई बना दे बकर में एक दो मुर्गी को मुर्गा डाल दे तो मुर्गिया रोज के अंडा दे। अब लापोता से अंडा के कौन ची उस अकेला अंडा दे रोज के वो अंडा सकबा खाए या बेचे या अंडा पर मुर्गिया के सकबा बैठाए या मुर्गिया बैठी तो कर में अंडा बच्चा हो या बच्चा हो बड़ा हो तो सकबा बेचे। मुर्गा मुर्गी के दाम बहुत महंगा बा आजकल है खोज तटका है जो के फूल खेने बैया सा तो ई बा थे मना गाँव में आदमी तो पोसेला पर ढेर मांगा कहूँ पर 800 रुपया को मुर्गी मुर्गा के तो दाम 1500 से ऊपर। कहा बोले तो भैया महंगाई के जमाना बा पर थोड़ा सुन साकबीज कर पोसब तो थोड़ो लगी भी सकी मुर्गा मुर्गी रहे तो चला मुर्गा पर गीत सुनब सा लाल लाल मुर्गा के लंबा लंबा थोर बा तो मुर्गी के बड़ी थोर से मारेला बाप रे बाप सुना नहीं का सोच के गेसन गीत बने लग कि गीतवा सुपर हिट से सुपर हिट हो गल। ललका मुर्गा है गीतवा चलावती से खासम खास विद्या की ओर से घर वाला सब परिवार खातिर और संगीता मिरन गीत और खातिर तोहर माता जी चुन रही कस्तल तोर दुगो भाई दान आजी तोहर बहिन हेमा शांति और सब अमीरन परिवार के नाम और मोहन परिवार के नाम ललका ललका मुर्गा।

दो मनुष्य के जन्म से लेके को मृत्यु ले ओकरा धे मना संस्कार परिवार करे के और एगो संस्कार विवाह संस्कार यानी कि शादी करे के संस्कार त जब गृहस्थ आश्रम में को इंसान प्रवेश करेला 25 साल से ऊपर त परिवार को छोकरी देके को शादी करे के अब शादी करले को रिस्पांसिबिलिटी को उत्तरदायित्व कहे के एगो छोकरा एगो छोकरी दुगो परिवार से अलग अलग व्यक्ति एक साथ मिलेला शादी के साथ फेरे वचन निभावे रंस और परिवार जिंदगी भर निभाए के यानी कि दुगो ठाँ से मिलेला और आगे के जमाना में जो जस्ती जो रहल लव नहीं रहल कैसे कि अरेंज मैरिज यानी कि छोकरा के परिवार लोग अगुआ के दिखेंस तो वो लेके जाए छोकरिया लगे अब अगुआ बतियाए अब छोकरा छोकरी के माँ बाप छोकरा छोकरी के माँ बाप जो ना एक दूसरे से बतियाइए सर तब शादी होता है अभी आगे के ज़माने में ढेर कोई शादी से पहले मिलत नहीं रहल आई फाइ कहते कई सब तेज से तो बाद में आल बा अब के ज़माना में तो छोकरा छोकरी फेसबुक पर मिले रहन सर या कोनो साइट पर मैट्रिमोनियल साइट पर मिले रहन सर बतिया लन सर जब पसंद पड़ी तब माँ बाप दिखे चला आगे के ज़माने में सब नहीं रहल और सब रीति रिवाज से शादी होता है सुख के गीत के गवाही होता है सुख के रात के सामने के दिन के तिलक रसान के हरदी फिर दिमाग के शादी और लेंजी के चौथारी और आगे जब शादी होता है तब सब कोई आवतल हाथ बटाए पूड़ी पकाए के पूड़ी बेले के तगारी पकाए के भुइयाई पकाए के सब आजकल तो सब कीचरिंग करेला भैया आजकल पैसा फेंका तमाशा दिखा का कर भैया समय के साथ साथ ना अभी सब कोई शादी में समय पर आवेला जुरी जुरी साड़ी पहन के भौजी लोग सब आवेला अभी कोई बर्तन तो नहीं खोजला मान जी के शादी में सब पिए होला भैया तकारी पकाई के कड़ाही धोई के सब कुछ पिए होला आजकल का कर बह पिए के जमाने चल बह तो चल ऐसा गीत सब जब दुल्हा शादी करे जाला बसंत सुपौल गीत अगले वन तो जितना कोई के शादी हो गल बा या हाई वीकेंड के शादी हो तहगी तो तुलो के नाम और बोले सर शादी के लड्डू जो खा लाओ भी पछता लो जो नहीं भी खा लाओ भी पछता ला का कर भैया ये सब दुनिया के रीत है चेहरा निभाई की और रही की चाहते से अनुपम के और शकर पत्नी और दुगो बेटा खाते हैं साथ में बिना को पसामी में व्यक्ति हुआ सुलमान दुखी हुआ से हुआ और विश्वानी बाबूलाल लाखोजा से कोई घर वाला कोई लड़का और सब बाबूलाल परिवार के नाम दुल्हा शादी करे जा रहा चले एक साथ गीत सुने

दुनिया में जो हमने जिया थे इससे दुनिया काफी पुरानी बात जाने रही दुनिया कैसे बना रहल तो हमने की हिंदू धर्म ग्रंथ में ऋग्वेद के अनुसार एगो एगो एगो पुस्तक है जिसका नाम नासा दिया सूक्त ऋग्वेद में पावल जला तो संसार के उत्पत्ति के बारे में दार्शनिक रूप से बोले ला कि पहले कुछ नहीं रहल चारों ओर अंधेरा रहल त सूक्त के अनुसार न अस्तित्व रहल न अनस्तित्व रहल न आकाश रहल न पृथ्वी रहल न दिन रहल न रात रहल चारों ओर केवल अंधेरा ही अंधेरा और शून्यता रहल अर्थात उस समय भी स्पष्ट रूप में मौजूद कुछ भी ना रहल सूक्त बोलेला तब न मृत्यु थी न अमरता न मृत्यु रहल न अमर वत्वा रहल संपूर्ण ब्रह्मांड मानो एगो अदृश्य शांत और रहस्यमय अवस्था में रहल केवल एक तत्व या एक शक्ति रहल जलवन शक्ति से विद्यमान रहल नासा देव सुख में कहल गलबा की सबसे पहले काम अर्थात इच्छा उत्पन्न होल और इच्छा सृष्टि बनेलक ये विचार दार्शनिक है ऋषि लोग जब ध्यान करलन से तब बोलते जो शून्य रहल ओकर में से एगो बीज निकल एगो बिया निकलल और उस सृष्टि के बिया रहल और अस्तित्व कैसे उत्पन्न हो शून्य से सृष्टि बनल और जब प्रभु जो है वो अपन मन में दल्लक की दुनिया बनाए तो इच्छा जागृत होल और दुनिया शुरू होल बने की और जब दुनिया बनल तो सब कुछ बनल कर में मनुष्य बनल जनावर बनल फल सब्जी सब बनल तो भगवान जानेला कैसे कर के नासदीय सुख के अनुसार उस संसार की रचना कर लगता है जबकि संसार इतना सुंदर रहल पर पहले पहले कुछ भी ना रहल चारों अंधेरा रहल शून्यता रहल वही में से प्रभु के नाभि में जो विष्णु भगवान की नाभि है उनका नाभि में से सब कुछ निकल बा तो जब संसार के दिखबा और जब सोचबा कैसे बनल बा ढेर कोई नहीं मानी एगो एगो दार्शनिक विचार फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू बुला ला अगर तोरा मौका मिली तो पुस्तक का पढ़िए जिकर नाम है नासदीय सुक्ता NASADIYA सुक्ता SUKTA नासदीय सुक्ता टाइप करिए यूट्यूब पर तो तोरा बोली कैसे दुनिया की उत्पत्ति होल बा अब जब दुनिया की बात करते हैं तो चल दुनिया पर गीत सुनब जा अमराज मधु और शालिनी पोपिया की आवाज में ये दुनिया कैसे चली एक गीत चलावते ही सर भाई अमर खातिर और पत्नी और दू को लड़का खातिर साथ में ही गीत चली रघु विश्वानंद खातिर और पत्नी और चार को बेटा खातिर चल एक साथ सुने अमराज मधु और शालिनी पोपिया की

अब हमें थोड़ा सुनाओ सर श्रवण कुमार की कहानी के रहली श्रवण कुमार तो श्रवण कुमार जो है वो बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र रहल और सेवा भावी पुत्र रहल ओकर माता पिता वृद्ध और नेत्रहीन यानी कि माता पिता दोनों अंधार रहलन से श्रवण कुमार अपन पूरा जीवन लोग के सेवा में लगा दिलक वन माता पिता से बहुत प्रेम करत रहल और लोग के हर इच्छा पूरी करत रहल एक दिन अपन माता पिता के कहला पर तीर्थ यात्रा में लोग के लेके गल तो श्रवण कुमार गरीब रहल ये खातिर ओकर पास रथ या घोड़ा नहीं रहल तो का करलक एगो मजबूत कांवर बनेलक एक बगल बाप के बैठेलक एक बगल माँ के और स्वयं कांधा पर दोनों के लेके तीर्थ यात्रा पर निकल गल सोचा एगो बेटा है एगो लड़का पर माँ बाप के कांवर में ढोत अपन कंधा में कौन लड़का पर माँ बाप के ढोई कांवर में और यात्रा के दौरान एगो घना जंगल में पहुँचलन और माता पिता के ढेर प्यास सगल और लोग बोलन से श्रवण कुमार से बेटा ढेर प्यास सगल बा थोड़ा पानी आंदा पिए के तो उस समय राजा दशरथ शिकार करत हल तो उस शब्द भेदी बाण चलैलक जब उ चलैलक बाण उ सोचलक राजा दशरथ लहसास करत हल तो उ जब सोचलक कि उसे तक हरिंग पानी पिया था जबकि हरिंग पानी नहीं पिया था यहाँ पर श्रवण कुमार एगो लोटा में पानी भरत हल पर माँ बाप के पियाई खातिर तो सोचलक हरिंग पानी पियाता तो बाँध चलेलक जब बाँध चलेलक तो श्रवण किना श्रवण कुमार के सीना आर पार कर दिलक और बेशक श्रवण कुमार घायल हो गल दर्द से रोवे लगल तब राजा दशरथ जब पास में गल तब बोला ओ हो हमर से कौन पाप हो गल हम सोची हरिंग है ओके मरली तीर से यहाँ पर एगो इंसान के जान ले ली तो श्रवण कुमार मरते मरते दशरथ के बोलक हमार माता पिता कांवर में लोग ने उनकी प्यास से गलबा हम नहीं सकब जाए पानी दे मर प्राण जाता कृपया लोग के प्यास बुझा दे पनिया से दशरथ बड़ी दुखी होल और पानी लेके श्रवण कुमार के माता पिता के आसपास गल तो अंधा माता पिता वो लोग के चाहे लोग अंधार लन से पर वो लोग के एहसास हो गल कि लोग के बेटा नहीं आल पानी लेके दूसर कोई पानी लेके आल बा तो वो लोग पूछलक कैसे तू के हवा तब बोलक हम राजा दशरथ है हमार हाथों तोहर लड़का के खून उगल बा माफ़ी चाहता है पर पानी नहीं पिए के तभी राजा दशरथ के श्राप मिलेला श्रवण कुमार के माँ बाप बोलेला जिससे हमने अपन पुत्र के वियोग में हमने के मरनी हुआ था ऐसे ही तू भी एक दिन अपन पुत्र के वियोग में तरप तरप के मरबा तो यही कहानी जो है रामायण में दर्शाला जब राम भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास जाला तो राजा दशरथ जो है वो बिस्तर पर लेटल लेटल ओकर प्राण जाला जो दुख से ओकर प्राण जाला तो एगो श्राप रहल जैसे कि श्रवण कुमार के माँ बाप राजा दशरथ के श्राप देने रहल तो श्राप के कारण ओकर प्राण ऐसे निकलल अपन बेटा के वियोग में इस खातिर बोलला से कि कोनो भी काम करबा तो सोच समझ के करिए और कोई की श्राप कोई की मालेदिक्षों कोई के बद्दुआ कबो नहीं दिया ठीक बा चला अब यो गीत सुनब जा कृषि भाई संगी गावत होवन आव भैया गीत चलावती से बुनमाली शास्त्री बुनमाली खातिर ओकर पत्नी ओकर बेटा ओकर बेटी दामाद और सब बुनमाली परिवार के नाम आव भैया

0: भोजपुरी तड़का।
1: एक से एक जोली भोजपुरी की प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर। कमट, धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी।

संगचालक पूर्णिमा फकीरा के गावल गीत हे गंगा मैया ये गीत के संगे भोजपुरी तरकर प्रोग्राम ये बड़ी समाप्त हुआ था। रात के शाम के 6:30 से अभिनय के साथ दिला जा बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया करम मेहरबानी। हमारे बाद सुनहरे पल प्रोग्राम सुनबा नीतू शाह के साथ रात की 11 से 12 ले और रात की 12 से काल फजर के 6 सुनबा नॉन स्टॉप फिल्मी तराने। हमने की तलों की मुलाकात हुई कल बुधवार के रात के 9 से 11 ले भोजपुरी तड़का प्रोग्राम में रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस पर। तब तक हमने की इजाज़त दें अजय प्रताप सिंह सीतालू की ओर से सबको की प्यार भरा नमस्ते सलाम शुभ रात्रि लव यू ऑल नमस्ते बाय बाय टेक केयर गॉड ब्लेस।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। सर्दीली रात के इस खूबसूरत रात में आप सबका स्वागत करते हुए स्वीकार करें नीतुषा का करजोर प्रणाम श्रोताओं। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो एक और श्रृंखला सुनहरे पल कार्यक्रम का, और आज का ये सफर एक ऐसी एक्ट्रेस के नाम नजर करते हैं जो भले ही ना रही हो लेकिन उनकी यादें हमेशा आती हैं। आप थी मधुबाला।

मधुबाला हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत और लेजेंडरी एक्ट्रेसेस में से एक मानी जाती हैं। उनका असली नाम मुमताज जहान बेगम दहलवी था, लेकिन पूरी दुनिया उन्हें मधुबाला के नाम से जानती थी। उनकी मुस्कान में एक अजब सा जादू था, आंखों में मासूमियत थी और उनकी अदाएं इतनी दिलकश थी कि लोग उन्हें वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा तक कहने लगे थे। 1950s और 60s के दौर में जब बॉलीवुड अपने गोल्डन एरा में था, तब मधुबाला का नाम हर दिल पर राज करता था। वैसे आज भी उनकी फिल्में और उनका अंदाज लोग बड़े प्यार से

मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता अतौला खान काफी स्ट्रिक्ट नेचर के थे और घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। इसी वजह से उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया था। बचपन से ही मधुबाला बहुत खूबसूरत थी और कैमरा उन्हें बहुत पसंद करता था। बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में भी उनकी पहली पहचान फिल्म बसंत से बनी। फिर धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री को एहसास हुआ कि ये लड़की तो सिर्फ सुंदर ही नहीं थी बल्कि बहुत टैलेंटेड भी है।

0: मधुबाला की एक्टिंग स्टाइल बहुत नेचुरल थी। उस जमाने में जब एक्टिंग थोड़ी थिएट्रिकल हुआ करती थी, तब मधुबाला हर इमोशन को बहुत सिंप्लिसिटी और ग्रेस के साथ स्क्रीन पर लाती थी। उनकी आंखें ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह जाती थी। रोमांस हो, कॉमेडी हो या इमोशनल सीन, हर जगह उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। फिल्म मुगले आजम में उनका अनारकली का रोल आज भी अमर माना जाता है। प्यार किया तो डरना क्या, गाने में उनकी खूबसूरती और रोल अंदाज ने लोगों को दीवाना बना दिया था। इतने भारी कॉस्ट्यूम्स और मुश्किल शूटिंग कंडीशंस के बावजूद उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में कभी कमी आनी नहीं।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

खूबसूरत तो थी लेकिन उनके रिश्ते भी काफी चर्चे में थी। दिलीप कुमार के साथ उनका रिलेशनशिप बॉलीवुड की सबसे फेमस लव स्टोरीज में से एक माना जाता है। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और उनकी केमिस्ट्री स्क्रीन पर साफ नजर आती थी। फैंस चाहते थे कि दोनों असल जिंदगी में भी एक हो जाएं, लेकिन फैमिली इश्यूज और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से उनका रिश्ता टूट गया। कहते हैं कि इस जुदाई ने मधुबाला को अंदर से बहुत दुखी कर दिया था। उनके दिल में दिलीप कुमार के लिए प्यार जिंदगी भर रहा। बाद में मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी की। किशोर कुमार अपनी मस्ती और हंसी मजाक के लिए मशहूर थे, जबकि मधुबाला उस वक्त अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रही थी। उन्हें दिल की एक सीरियस बीमारी थी जो उस जमाने में ठीक करना मुश्किल था। किशोर कुमार ने उनका बहुत साथ दिया, लेकिन धीरे धीरे मधुबाला की तबीयत और खराब होती गई। कई बार उन्हें बहुत दर्द और तकलीफ भी सहनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अपनी मुस्कान नहीं छोड़ी।

0: हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ लेने
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे
0: हाँ समझे।

0: किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,

वैसे मधुबाला की ड्रेसिंग स्टाइल और पर्सनालिटी बहुत एलिगेंट थी। उनका चेहरा इतना फोटोजेनिक था कि ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर भी वो किसी परी जैसी लगती थी। उनकी स्माइल को बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत स्माइल्स में से एक माना जाता है। सिर्फ भारत में नहीं बल्कि फॉरेन मैगजीन्स में भी उनकी ब्यूटी की चर्चा होती थी। कहते हैं कि हॉलीवुड तक में उनके लुक्स के फैंस थे, लेकिन इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद वो बहुत ही हम्बल और सिंपल नेचर की थी।

0: जैसे चलती का नाम गाड़ी, हौरा ब्रिज, तराना, काला पानी, मिस्टर एंड मिसेस 55 जैसे सुपरहिट फिल्मों में काम किया। कॉमेडी टाइमिंग हो या रोमांटिक एक्सप्रेशंस, हर जगह उन्होंने कमाल कर दिया। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी पावरफुल थी कि जब वो स्क्रीन पर आती थी तो नजरें उन पर ही टिक जाती थी।
1: Hi.

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: बहुत दुख की बात है कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस की जिंदगी बहुत छोटी रही। सिर्फ 36 साल की उम्र में 23 फरवरी 1969 को उनका देहांत हो गया। लेकिन आज भी मधुबाला सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि बॉलीवुड की एक अमर याद है। जब भी हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा की बात होती है, मधुबाला का नाम बहुत इज्जत और मोहब्बत के साथ लिया जाता है। उनकी खूबसूरती, उनकी अदाएं, उनका दर्द और उनकी फिल्में आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी। प्रणाम, शुभ रात्रि।

0: मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: She likes to drop it low, man.

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस,
0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।